आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक, सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
2: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
1: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
2: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
1: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
2: बस एक कदम
1: और सपनों को नई रफ्तार।

0: रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
1: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी। गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में पांचवीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस, इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड, इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अनाउंस इट्स बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू दिस मॉर्निंग। Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
7: According to reports, the Indian-flagged tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian-flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
6: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
8: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression, and now seeks to manufacture legitimacy.
6: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussion on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers' meeting. Here is a report from our correspondent.
9: Bhopal is hosting a major BRICS cultural meeting from today. The four-day event being held under India's BRICS presidency will continue till the 8th of August. It includes meetings of the BRICS Culture Working Group and BRICS Culture Ministers. The city has been specially decorated for the event. VIP Road and Bhot Setu have been beautified with fresh paint and murals. The first 2 days are for discussions among senior officials. The last 2 days will have the meetings of culture ministers.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई प्यारी सी सुबह में। आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आप सभी को यहाँ पर हम कहना चाहते हैं वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है जी। एक सुपर डुपर वाला प्यारा वाला गुड मॉर्निंग नमस्कारम। कैसे हालचाल? सब बढ़िया है ना? सब कुछ फर्स्ट क्लास है ना जीवन में? चलिए यार, सब कुछ फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। आप सुन रहे हैं आनंद को। कैसे हालचाल है आप सभी के? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे और अपनी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। श्रोताओं, इस वक्त स्टेशन की घड़ी में टाइम हुआ है 8:24। आज तारीख है 5 और 5 अगस्त की तारीख है। आज दिन बहुत खूबसूरत है, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। ऐसे में ऑफकोर्स अच्छी अच्छी गाने और अच्छी अच्छी बातें तो बनती हैं आज की सुबह, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, बड़ी प्यारी बात मैंने पढ़ी कि जैसे लोग वैसी सोच। अगर अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सोचोगे, और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही जाएगी। ना चाहते हुए भी आपके अंदर वो नेगेटिविटी, वो एनर्जीज एंटर होने लगती हैं। तो इसीलिए अपना ऑरा अच्छा रखिए, अपने आसपास के लोगों का जो है ना पॉजिटिव ऑरा रखिए, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखिए जो आपको हमेशा प्रेरित करें अच्छे काम के लिए, जो आपके काम को अप्रिशिएट करें, जो आपकी तारीफ करें ना करें लेकिन आपको सही और गलत का फर्क ज़रूर समझाएं। अगर ऐसे दोस्त आपकी ज़िंदगी में हैं, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आपकी लाइफ की हो जाएगी बल्ले बल्ले। श्रोताओं, आज की सुबह बहुत प्यारी है, इस पर हम ढेर सारी बातचीत करेंगे आपके साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 पे आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आज की सुबह। इस गाने से करेंगे अपने सफ़र की शुरुआत। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण जी की आवाजों में इस ट्रैक को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है आज का वेदर, आज का मौसम? लौट कर आएंगे तो बात करेंगे ना आज के मौसम में भी। क्या ताजगी है सुबह सुबह आज के मौसम में, क्या मतलब एक देखेंगे ना आप, मन खुश हो जाएगा। इतना प्यारा वेदर हो रहा है सुबह सुबह, इतनी अच्छी सुबह हुई है आज की, मैं आपको क्या बताऊँ यार। चलिए, गाना निकल गया है, वॉल्यूम बढ़ाइए और आनंद का साथ 10 बजे तक ऐसे ही निभाते रहिए। 8:25 हो गए, गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: कैसे हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे। 8:44 हो गया है स्टेशन की घड़ी में, 8:44 का समय हो गया है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आरजे आनंद को प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना फेवरेट बिंदास मॉर्निंग, और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे इतना कहना चाहते हैं अगर आज की सुबह आपके मन में कोई अच्छी थॉट है, अगर आपके पास कोई अच्छे विचार हैं, तो आप उन तक अपने तक ही ना रखें, आप उन विचारों को उन बातों को मुझ तक जरूर पहुंचाएं। श्रोताओं, सुबह सुबह अच्छी वाइब के साथ अगर अच्छे गाने सुनने को मिल जाते हैं तो मौसम और ये जो फीलिंग्स हैं वो दोनों और अच्छी हो जाती है ना। देखो, मौसम तो है ही ऑसम, लेकिन हमारे अंदर की जो एक फील है वो और भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से भर जाती है, क्योंकि जब अच्छे गाने सुनते हैं, अच्छा एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है, तो अपने आप ही मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है और हम सही दिशा में काम करते हैं। क्योंकि अगर हमारा मन अच्छा होता है ना, तो फिर हम हर चीज़ करने के लिए बड़ी प्रोडक्टिविटी के साथ, बड़ी एक्टिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं। राइट,
1: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें, और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
5: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
0: मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है आप सभी का, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। और यहाँ पर ढेर सारे हमारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं आज की सुबह।

एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास आया है श्रुति झा का। इन्होंने लिखा है एवरी पेन गिव्स अ लर्निंग एंड साथ में लिखते हैं एंड एवरी लेसन चेंज अ पर्सन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई जो भी तकलीफ होती है जो भी दर्द आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं आपको एक सीख देकर जाता है एंड और जो ये सीख होती है ना ये आपकी ज़िंदगी को बहुत चेंज कर देती है और हर इंसान की पर्सनालिटी को चेंज कर देती है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आप किसी तकलीफ में होते हैं ना जब आप अपनी लाइफ में एक ऐसा फेज देखते हैं जहां आप लो अप डाउन आप कर रहे होते हो बहुत लो फील करते हो तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार। एक मैसेज आया है गुड मॉर्निंग आनंद आप कैसे हैं। हाय माय नेम इज प्रेम। हाय प्रेम गुड मॉर्निंग। ये लिखते हैं डोंट रिएक्ट कंट्रोल योर इमोशन स्टे कूल। हो माय गॉड सुबह सुबह पाजी क्या हो रहा है आज। एक और ब्यूटीफुल मैसेज मेरे पास पहुंचा है ज्योति जी का। इन्होंने लिखा है आनंद जी सुप्रभात कैसे हैं आप। अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आपको अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलना होगा। जब आप अपनी आदतों को बदलेंगे तो आपका जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। चलिए बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इन्होंने एक चीज़ और लिख दी है बड़ी प्यारी सी। कौन है ये भाई साहब। ये लिखते हैं कि अगर खुद पे भरोसा हो तो ज़िंदगी में आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। आई अग्री मेरे भाई लेकिन अपना नाम भी लिख के बताना था आप जो भी सुन रहे हैं मुझे। वेल थैंक यू वेरी मच सच अमेजिंग मैसेजेस आज

सुबह बहुत ही पॉजिटिव और प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। जुल्फी भाई का मैसेज पहुंचा है, लिखते हैं, आनंद जी सुप्रभात, कैसे हैं आप? सुबह सुबह आपके गाने सुन के मन झूम उठता है। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के लिए जोरदार डाले। इतनी प्यारी बातें अगर कोई करता है तो सिर्फ आप ही हो सकते हो यार। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं आज 5 अगस्त की सुबह क्यों खास है। 5 अगस्त का इतिहास, इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं।

तो श्रोताओं, 5 अगस्त को बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आज के दिन को बहुत खास बना रही हैं, लेकिन उनमें से सबसे स्पेशल चीज आज ही के दिन हुई थी। 5 अगस्त 2013 को भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने जर्मनी में संपन्न हुए विश्व कप में इंग्लैंड को 3-2 से हराकर ये जो पदक था वो अपने नाम कर लिया था। और आपको बताते चलिए, आज ही के दिन आचार्य प्यारे मोहन ओडिशा के प्रमुख राष्ट्रवादी, इनका आज जन्म हुआ था सन 1852 को श्रोताओं। एंड एक और नाम आज के दिन को जो और भी खास बनाता है, उनका नाम डेफिनेटली मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। 1975 में जन्म हुआ काजोल मुखर्जी का, जो एक भारतीय अभिनेत्री हैं। कोर्स अगर आप जानना चाहेंगे काजोल मुखर्जी के बारे में तो मैं आपको थोड़ी देर में डेफिनेटली बताऊंगा। ये कुछ ऐसी खास चीज़ें जो हमारे दिन को बहुत स्पेशल बनाती हैं, और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ स्पेशल किया है हमारे देश के नाम, हमारे आसपास में अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसकी वजह से ये देश और ये समाज और भी खूबसूरत बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ी मशक्कत करनी होगी, थोड़ी मेहनत करनी होगी। और कल से बेटर आज का है दिन है, जो आपको करना है वो सिर्फ आज करना है, क्योंकि आज जो आपको ये दिन मिला है ना, वो शायद आपको कल मिलने ना मिले, है ना। आई मीन जो आज का टाइम है ये बहुत पॉजिटिव है ना, हर दिन सेम नहीं होता है ना, लेकिन अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो आपको हर दिन बेहतर से बेहतरीन लगने लगेगा। आपको बता दें, आशु मलिक का जन्म हुआ, जो भारत की महिला पहलवानों में से एक हैं आज ही के दिन, और सन 2001 में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको ऐसी तमाम जानकारियां जो हैं पूरे दिन मिलती रहती हैं हमारे स्टेशन पे, कुछ ना कुछ स्पेशल चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहते हैं हर सुबह इसी स्टेशन पर, जहां आप ढेर सारी बातचीत के साथ अच्छी गाने भी सुनते हैं और अच्छी बातें आपको ऑफकोर्स पता लगती हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। बाकी अगर आप हमें कोई अपडेट देना चाहते हैं, कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। 9837896896 पे आप हमें डेफिनेटली बता सकते हैं आज की सुबह, अगर आपके पास भी कुछ अच्छी चीज़ है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके व्हाट्सएप लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, ऑफ कोर्स हम इनको ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन अभी बाहर का मौसम कैसा हो रहा है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन गाने जो अच्छे आने वाले हैं उसका आइडिया मुझे डेफिनेटली है। आठ बज के 52 मिनट का समय हो रहा है, आप सुन रहे हैं एफ एम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को, ये है बिंदास मॉर्निंग। तमाम सारी और ऐसी जानकारियां हैं जो भी आप तक पहुंचानी है, 10 बजे तक आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे हम तो रहेंगे बरकरार, आपका भी प्यार और आपका साथ भी रहना चाहिए ऐसे ही मेरे यार। कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे फटाक से मैसेज करो, अभी आने वाला गाना एंजॉय करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाओ और सुनते रहो आरजे आनंद को। आप जहां भी निकल रहे हैं, ऑल द बेस्ट, आई विल बी राइट बैक।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
5: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
8: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग, दिस इज माय लास्ट आवर लेडीज एंड जेंटलमैन। वेंसडे की सुबह 5 अगस्त की तारीख 9:07 हो गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना जिंदगी में? चलो यार, बढ़िया चलना चाहिए। पहले तो यार आपके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार, इतने सारे मैसेजेस आप करते हैं, थैंक यू सो मच एवरीबडी, इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए। अब आप जहां भी हैं, जिधर भी जा रहे हैं, बस आप जरा रुक जाइए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ स्पेशल यहां पर करने वाला हूं। एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस का बर्थडे, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी उनके बारे में, उनके कुछ गाने प्ले कर रहा हूं यहां पर एंड आपको उनके गाने आइडेंटिफाई करने हैं। गाने तो आइडेंटिफाई नहीं करने, बस आपको ये एक्ट्रेस मेरे को बतानी है जी कौन है ये एक्ट्रेस, के ऊपर फिल्माए गाने में बेसिकली प्ले कर रहा हूं यहां पर, कुछ गाने लगा रहा हूं, आप बस इन गानों को सुनिए और अंदाजा लगाइए कौन सी हीरोइन के ऊपर ही गाने जो हैं आज पिक्चराइजेशन है। अगर आप समझदार तो आप खैर हैं ही, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए 3-2-1 गो स्टार्ट। दुखी ना यार, कुछ गाने बजा रहा हूँ, अगला वाला सुनो। आज इनका बर्थडे है यार। शी इज वेरी वेरी आइकॉनिक एक्ट्रेस। अब तो आप पक्का पकड़ लोगे यार, मैं आपको बता रहा हूँ। एक और प्ले करो यार, बिल्कुल ना बदला, एक और चला दो भाई साहब। एक और चलाओ यार, हाय हाय।
1: सूरज हुआ मध्यम,
0: ओह माय गॉड,
1: चांद जलने लगा।
0: कौन सी अभिनेत्री है भाई?
2: तेरे हाथ में तेरा हाथ हो।
0: चलो अभी आपको क्या करना है ना, अभी आपको मेरे को मैसेज करना है इमीडिएटली, देखता हूँ कितने लोग अभी लाइव सुन रहे हैं और कितने लोगों को पता है ये जो गाने चल रहे हैं वो कौन सी बॉलीवुड एक्टर के ऊपर फिल्म है, कौन सी अभिनेत्री है, कौन सी एक्ट्रेस है, मुझे कौन सी अभिनेत्री है जिनके ऊपर पिक्चराइजेशन में गाने प्ले कर रहा हूँ अभी। आज उनका बर्थडे होता है 5 अगस्त की सुबह एंड शी इज वेरी वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस। और इनकी मूवीज देखते देखते ना इतने बड़े हो गए हैं, इनके गाने सुनते सुनते इतने बड़े हो गए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने, इतनी अच्छी अच्छी सुपर हिट फिल्में दी है मैम ने एंड बहुत ही प्यारी सी है और बहुत ही प्यारी इनकी एक्टिंग है यार, जबरदस्त एक्टिंग करती है और हर तरह का रोल इन्होंने किया हुआ यार, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस है।
2: जल्दी है क्या,
0: कौन सी अभिनेत्री के ऊपर पिक्चराइजेशन है ये गाने? क्या लगी थी इस गाने में आ रही है मैडम? अच्छा ये वाला सुनो आप, अब आप मुझे मैसेज करके बताओ जरा कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप समझदार हैं तो आप मुझे बताई देंगे, समझदार तो आप हैं यार। ओए होए, मुझे
1: ओए होए, ये तो वही दी, जरा सा झूम लूं मैं,
2: अरे नारे नारे ना,
1: जरा सा घूम लूं।
0: अच्छा एक चीज करते हैं, इनमें से कोई एक गाना आप मुझे सजेस्ट करो, आज इनका बर्थडे है, इनका नाम तो बताई ही रहे हो आप मुझे, ये भी बताओ जो गाने चल रहे हैं इनमें से कौन सा एक गाना है जो आपको लगता है कि सुबह सुबह रेडियो पे जरूर बजना चाहिए। चलो फिर से सुना रहा
1: हूँ,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे इनमें से आप? उस गाने का नाम और गाना कौन सा ये बता देना मुझे, थोड़ी देर में बजेगा इनके बर्थडे स्पेशल।

0: कुछ गाने प्ले कर रहा हूँ। पहला तो आपको ये बताना है कि कौन सी एक्ट्रेस हैं। दूसरा, ये जो आप गाने सुन रहे हैं इनमें से कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं आज की सुबह के बुद्धि पर।
1: ये तो वही जरा सा झूम

बॉलीवुड की बहुत ही कमाल की अभिनेत्री हैं जिनका आज हम बर्थडे मना रहे हैं। और आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कौन से अभिनेत्री पर है ये गाने पिक्चराइजेशन जो भी आप सुन रहे थे। अगर आप समझ गए हैं तो आप मुझे मैसेज करेंगे 9837896896 पर, और कौन सा गाना उनके बर्थडे पर आप सुनना चाहते हैं बताओ ना मुझे 9837896896 पर। आई बी राइट बैक। आनंद को सुन रहे हैं आप, यह है एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। सुनते जाइए बिंदास मॉर्निंग, और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।
2: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
6: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
1: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
6: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
7: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
8: Koi mil gaya,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका कड़क वाला रेडियो स्टेशन, जहां कड़क बातें होते हैं और कड़क वाले गाने भी होते हैं। हाँ जी, फिलहाल मैं कह रहा हूँ ये वेंसडे की सुबह है। अगर आप भी मेरे साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई अपडेट देना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9837896896 पर।

0: कुक स्टूडियो से भी आप एंजॉय कर रहे थे, एक बहुत ही फैबुलियस गाना है, इसको सुनते हुए आगे बढ़ चुके हैं मैं और आप आज की सुबह। गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हाल चाल है जी? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना यार? बढ़िया चलना चाहिए, वेंसडे की सुबह है और एक तो यार अगस्त का महीना इतनी 5G वाली स्पीड से भाग रहा है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी तो 1 अगस्त आया था, आज 5 अगस्त हो गया, इतनी जल्दी से मतलब ऐसा लग रहा है कि फेस्टिविटी बिल्कुल करीब में है ना, तो सारी चीजें बहुत इमिडिएटली हो रही है, बहुत क्विकली सारी चीजें आगे भाग रही है, एकदम सुपर फास्ट टाइप से, यू नो। ऐसा मुझे नहीं आप लोग कोई फील हो रहा, आई एम श्योर फील तो आप सभी को हो रहा है, बट आप बता नहीं रहे हो, बात अलग है यार, पता है मेरे को। अच्छा चलो अभी बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट चीजों की, बिकॉज आसपास में क्या चल रहा है, हमारे सराउंडिंग ये जानना भी जरूरी है यार। तो भैया गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स थोड़ा सा ध्यान दें। हाँ जी, यूपीआई से लेने देने पर लगेगा चार्ज, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ जी, अगर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या और किसी यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं किसी और ऑनलाइन, वैसे मुझे लगता है इनके अलावा कोई और शायद है नहीं प्लेटफॉर्म, अगर है भी अगर आप इस्तेमाल करते भी हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। आने वाले समय में यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर चार्ज लग सकता है, मतलब ये श्योरिटी नहीं है बट ऐसा बताया जा रहा है। एंड आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसको लेकर एक अपनी संशोधन मतलब एक पेश किया है, अधिनियम में एक संशोधन पेश किया है, एंड अभी बताया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि भैया आप अगर इन सारी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं या आप इसमें करने में बिलीव करते हैं, वैसे तो करना ही चाहिए यार, है ना, बट अगर आप करते हैं तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे शॉकिंग वाला न्यूज लग सकता है। आई थिंक मुझे भी ऐसा लग रहा है। अच्छा बात कर लेते हैं अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव आया है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया है। 60 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनको रोडवेज बसों में बिल्कुल मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया गया है। हाँ जी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि 100 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है और इस फैसले से प्रदेश की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको एक बड़ी राहत मिलने की उम्मीद मिल रही है, यानी कि अब जो 60+ फीमेल्स हैं, जो लेडी है, उनको फ्री में ट्रैवल की फैसिलिटी दी जाएगी। एंड आई थिंक यार ये एक बहुत ही ग्रेटफुल इंफॉर्मेशन है, क्या बात है यार, वेरी वेरी नाइस। देखिए वैसे तो राखी पे ऑफकोर्स फ्री होता ही है विमेंस के लिए ट्रैवल, लेकिन ये जो 60+ लेडी हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनके लिए जो एक ये फ्री वाली फैसिलिटी दी जा रही है, ये तो यार बहुत ही बढ़िया है, मुझे सुन के बड़ा मजा आया, जेन्युइनली बता रहा हूँ। अभी व्हाट्सएप की तरफ से भी एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। एंड हरिद्वार में शिव भक्तों पर जो है, जो भी वहाँ पर कांवड़ यात्री थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जा रही है, एंड 9 और 10 को तो होने वाला ही है स्पेशल। लेकिन अभी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने हरिद्वार पहुंचकर सावन माह के मेले में जो है बहुत ही खूबसूरत मोमेंट क्रिएट किया है, लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर, लाखों शिव कांवड़ियों पर जो है भव्य उनका वेलकम किया, हेलीकॉप्टर से जो है पुष्प वर्षा की गई उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी जी की ओर से, और वो देखने लायक था नजारा। वो वीडियो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली शेयर करूंगा, सो यू हैव टू गो एंड चेक आउट माय इंस्टाग्राम आईडी, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन। ऐसी और भी कड़क खबरें हैं जो आप तक पहुंचती रहेंगी। आज बहुत ही स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, जो लोग यूट्यूब की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल डे है, जो लोग एक और स्पेशल डे है जिसके बारे में बताना तो बनता है, लेकिन अभी थोड़ा सस्पेंस बना के रखते हैं, सब कुछ अभी थोड़ी से बता देंगे, अभी थोड़ी जान लोगे हर चीज़ यार, थोड़ा इंतजार करो, अभी लौट कर आते हैं फिर हम आपको बताते हैं। अभी एक ब्रांड न्यू गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही अच्छा और अल्टीमेट ट्रैक है, ये न्यू गाना आया है तो मैं सोच रहा हूँ इसको बजा ही देता हूँ यार, मतलब वैसे तो ये गाना ऑफकोर्स आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं सुना रहा हूँ ना आपको, ओरिजिनल तो था ही इसका कमाल का, लेकिन इसका ये वाला गाना भी बहुत बढ़िया है। एक तो राघव जुयाल क्या लगे हैं यार, ये राघव भाई तो बड़े कमाल के, मैं राघव भाई से 2 बार मिला हूँ देहरादून में, एंड ये बड़ा कमाल का बंदा है यार। आंखों से तूने 2.0 ब्रांड न्यू ट्रैक। आई रिमेम्बर ये लास्ट वाला जो गाना आया था वो किसके ऊपर पिक्चराइजेशन था, जो नहीं तो ये से यार आमिर खान का ये गाना था, मुझे आज भी याद है, जान लिया। बट न्यू भी अच्छा है, और एक नई रिसर्च की गई है एक जगह पे, ये रिसर्च वेरी वेरी फनी, क्या है ये सुबह सुबह की रिसर्च जो मैं आपको बताने लगा, आप सुनोगे तो आप भी इसे यू नो अलग फॉर्म में चले जाओगे यार। फिलहाल के लिए
1: तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा, तन्हाई में हम मिले इस तरह।
0: चलो जी, आई विल बी राइट बैक गाइस, अभी आता हूँ लौट कर बताता हूँ आपको कुछ और खास इन

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

तो हमने तो पंडित जी को बता दिया है कि पूरे हफ्ते का भाड़ा तय हो गया। वैसे ठंडे ठंडे पानी से सुबह स्नान करो ना, तो दिमाग तेज हो जाता है। कोशिश की है कभी?

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। हाँ जी, ये वेंसडे की सुबह है और ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच। 9:35 हो गए स्टेशन क्लॉक में और इस वक्त आप सुन रहे हैं कौन सा रेडियो स्टेशन, जरा बता दें।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
0: मेरे शो का नाम भी बता दीजिए सर। चलिए अब सरकार जरा ये भी बता दीजिए कि ये जो वॉइस नोट आई है वो कहाँ से आई है और कौन है ये साहब जो अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं जरा।
2: नमस्कार। कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ। मैं आपका दोस्त गोपी शर्मा, नगर पंचायत पार्क बड़ा से, एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिल का अच्छा होने के साथ साथ जुबान का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। लोगों का वास्ता पहले जुबान से पड़ता है, दिल तक तो बस कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। नमस्कार, राधे राधे। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, भेजते रहिए अच्छे अच्छे एसएमएस नंबर 98378 96 896। जी हाँ, वही नंबर जो आपकी वॉइस को पहुंचाएगा, आपके मैसेज को पहुंचाएगा अपनों तक और सारे संसार तक। नमस्कार, राधे राधे।
0: जी बिल्कुल, नमस्कार राधे राधे और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा लगता है साहब आप डेली जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। देखिए हर दिन बहुत सारी स्पेशल डेज मनाए जाते हैं, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल बताता हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, यूनिक रहता है, खास रहता है और आज इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे मनाया जाता है। जब हम सिग्नल पे खड़े होते हैं तो वहाँ पे तीन लाइट लगी होती है, रेड एंड येलो और ग्रीन, है ना। तो तीनों लाइट का मतलब कितने लोगों को पता है जरा मुझे मैसेज करके बताना 9837896896 पर। ये तालियां आप सभी के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप कर रहे हैं उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज और भी स्पेशल डेज मनाए जाते हैं। आज ब्लॉगर डे मनाया जाता है, जो यूट्यूब की दुनिया में या फिर जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो लोग डेली ब्लॉग्स बनाते हैं, जो चाहे वो डेली नहीं भी बनाते हैं बट वो ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए स्पेशल डे है आज की सुबह। और ऐसे ब्लॉगर्स को मैं बिग शाउट आउट देना चाहता हूँ, स्पेशली मुरादाबाद के ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं रहता भी हूँ, बहुत सारे ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं जो डेली बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें फीचर करते हैं अपने ब्लॉग्स में, मुरादाबाद की अच्छी अच्छी चीजें हमें दिखाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, बहुत सारी चीजें हम तक पहुंचाते हैं। तो उन सभी ब्लॉगर्स को आज दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, स्पेशली मुरादाबाद में सारे इन्फ्लुएंसर बहुत ही कमाल के हैं, सारे ब्लॉगर बहुत ही अच्छे हैं और कुछ तो बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं। एक बार जोरदार तालियां उन ब्लॉगर्स के लिए जो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं यार। तो अगर आप में से कोई ब्लॉगिंग करना चाहता है या कोई कर रहा है तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट यार। और अगर आप अभी करने का प्लान कर रहे हैं ब्लॉगिंग या आप इसमें आना चाह रहे हैं तो थोड़ी मोड़ी हेजिटेशन तो होती रहती है यार। वैसे हम ट्राई तो कर रहे थे कि कुछ ब्लॉगर्स को अपने शो में आज उनसे बातचीत करें, उनको यहाँ पे शामिल करें, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर की दुनिया में आना चाहते हैं, आप कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं तो आपको ऑल द वे बेस्ट। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी ऐसी चीजें करती रही यार, सोशल मीडिया का जमाना है और मुझे लगता है कि चीज में हमें अपनी एक्टिविटी को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए यार। ये तालियां सभी ब्लॉगर्स के लिए, बिग शाउट आउट मुरादाबाद के सारे लोग बहुत ही कमाल के हैं जो स्पेशली कंटेंट क्रिएटर हैं, उनके लिए तो यार भर भर के तालियां, बिकॉज उनकी वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आरजे आनंद की वजह से भी आपको मिलती है ना इन्फॉर्मेशन। चलो जी, फिलहाल के लिए अभी आने वाला गाना जो आपको बनाएगा दीवाना, ये बहुत ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। वेंसडे की सुबह जरा सी देर में इस गाने को भी आप सुनेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। आज इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे मनाया जाता है, तीन लाइटें लगी होती है ना सिग्नल पे, रेड येलो एंड ग्रीन, इन तीनों का क्या मतलब होता है पता है आपको? तो फिर देरी किस बात की है, व्हाट्सएप करो मुझे 9837896896 पे, जल्दी से मुझे मैसेज करके जरा बताओ इनका मतलब आखिर है तो है क्या। अगर आपको पता है तो आप देर मत करो यार, मुझे फटाफट मैसेज करो। इंतजार कर रहा हूँ आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का। अभी आने वाला गाना आपकी तरफ सीधा भेज रहा हूँ, यहाँ से इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

अब बात है यार, इतना धमाकेदार गाना था ना, इतना धमाकेदार, सुन के मजा आ गया। ओरिजिनल वाला तो था ही कमाल का, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है यार, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आनंद को। और अभी वक्त हो गया यहाँ पर एक बहुत ही अल्टीमेट कड़ा क्वेश्चन पूछने का आपसे, क्योंकि हर दिन मेरा एक छोटा सा सवाल होता है और आज बॉलीवुड की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री का बर्थडे होता है। थोड़ी देर पहले हमने उनके बारे में बात करी थी एंड ढेर सारे उनके गाने भी प्ले किए थे एंड ऑफ कोर्स आपको मैंने सुनवाए, तो बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी दिए, उसके लिए थैंक यू यार।

0: सारी चीजों पे जो है ना, जहाँ पर ओपनिंग तो हो गई थी लेकिन अभी पब्लिक वहां पर नहीं जा पा रही थी, तो 15 अगस्त के दिन जो है वहां पे कुछ स्पेशल चीजें होंगी, उसके बाद पब्लिक का आवागमन होगा। कहाँ पर जो है पब्लिक जा सकती है फिगर आउट करने के लिए, चीजों को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मुरादाबाद की, इस इंडिपेंडेंस डे क्या स्पेशल हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स आपको पता लगेगी किसके साथ, हरजी आनंद के साथ। हाँ जी, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 9:50 और आज हम सेलिब्रेट करते हैं बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन और दमदार अभिनेत्रियों में से एक, जिनका नाम नहीं उनका काम भी बहुत स्पेशल है यार। हाँ जी, अच्छा उनके कुछ गाने प्ले करके उनको बर्थडे विश करें।
1: लड़का है अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह,
0: ओए होए
1: ये लड़का है,
0: ये गाना सुनो यार,
2: जल्दी है क्या।
0: यस, आज बर्थडे होता है काजोल जी का। ऑफ कोर्स थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उनके बारे में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर कुछ कुछ होता है, बाजीगर, कभी खुशी कभी गम और कई यादगार फिल्मों से उन्होंने करोड़ों दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। FM मुरादाबाद 89.6 की पूरी टीम की ओर से काजोल जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें हमेशा स्वस्थ, खुशी और ऐसे ही खुशहाल रखे और वो ऐसे ही एंटरटेनमेंट की फील्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल करती रहे। अगर आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं काजोल जी के साथ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। ये गाना इनका मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: पहली बार में होने लगा दिल बेकरार।
0: चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ। चलिए अभी आपको क्या करना है ना, मैं एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, काजोल की मूवी का एक गाना है, बहुत ही बढ़िया गाना है ये, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है काजोल का कौन सा गाना है।

बॉलीवुड की अभिनेत्री काजोल का बर्थडे होता है 5 अगस्त की सुबह, वेंसडे मॉर्निंग है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक, उन्हीं की फिल्म का है ये गाना। ये गाना आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा ये गाना है। काजोल के ऊपर पिक्चराइजेशन है। आज काजोल का बर्थडे है तो मुझे बताइए आप जरा ये कौन सा गाना है काजोल का।

बहुत प्यारा ट्रैक है। अगर आप पकड़ चुके हैं इस गाने को तो इमीडिएटली मुरादाबादी मुझे आपने अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ और अपना सही जवाब मुझे कहां पर भेजना है, मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पे जरा इमीडिएटली मुझे बताओ आज की सुबह काजोल का बर्थडे मना रहे हैं, काजोल का वो कौन सा गाना है जो मैंने यहाँ पर प्ले किया था, एक चुटकी सॉन्ग में कौन सा गाना प्ले कर रहा हूँ काजोल का।

चलो भाई, अभी इतना पैसा में इतने मिलेगा। बाबूजी मुझे जरा जल्दी से बता दो ना यार, ये जो अभी आपने म्यूजिक सुना है वो कौन से गाने का है, ये आपने मेरे को बताना है सरकार। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा गाना निकालता हूँ, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने इस पे एक धमाकेदार रील बनाया है कल शाम को, आप जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूँ इंस्टा हैंडल पे। प्लीज जाओ चेक इट आउट करो, और अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक भी कर दो यार। अभी आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार। गाइस आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, सुनते रहो बिंदास मॉर्निंग, और दिल से कहो जियो बिंदास।

0: Prima!
1: Mamamaka! Nalayak ka beta!
2: Hanji, good morning, good morning. Namaskaram, kya hal chal?
3: Aap sun rahe hain Bindaas Morning. Bindaas Morning.
4: Bindaas Morning. Bindaas.
5: एक बहुत ही फैंटास्टिक रिसर्च निकल के आई है. मैं सोच रहा हूँ वो रिसर्च आप तक बता दूँ. बड़ी फनी सी रिसर्च है एंड आई डोंट नो इस पे आपका क्या ओपिनियन होगा, बट ये रिसर्च ना मुझे बड़ी अजीबोगरीब लग रही है. एक कंपनी में एक एचआर ने एक अलग ही रिसर्च कर दी है और ये रिसर्च करने के बाद जो है ना बड़ी ट्रेंड हो रही है आज की सुबह सोशल मीडिया पे. इस गाने के उस पर बताता हूँ ना आने वाला ट्रैक. रेडियो की वॉल्यूम बढ़ा लो यार, नहीं तो पाप चढ़ेगा आपको. मजाक कर रहा हूँ भाई, चलो कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई.

0: कोई मिल गया,
1: कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
7: अरे आनंद इज बैक।

रंधावा तुलसी कुमार की आवाज में इन्नी सोनी एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा गाना। 10:04 हो गए स्टेशन की घड़ी में, ये बताना भी बहुत जरूरी था क्योंकि आप जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने देसी रेडियो के साथ जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल घड़ी की सुइयां मुझे टिक टिक करके बोल रही है बेटा अभी तेरा जाने का टाइम हो गया है। जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था ये वाला सॉन्ग कौन सा है, आज काजोल का बर्थडे है, आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें शाहरुख खान भी थे इनके साथ, बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये एंड गाना बहुत बढ़िया है। इसकी एक फिल्म पहले आई थी, इसका सेकंड सीक्वल था और इसमें इन दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया लगी थी एंड यू नो मतलब वैसे तो देखा जाए तो ये फिल्म एक सिंगल ही फिल्म है लेकिन इसका जो यू नो ये एक दूसरी मूवी से रिलेट करती हुई मूवी है और इसका टाइटल जो था या इसका जो नाम था वो भी किसी और पिक्चर से जो है लिया गया था, तो मतलब नाम तो है ही कमाल का, मूवी बहुत कमाल की है और उसी मूवी का एक गाना है, इसमें काजोल और शाहरुख खान है

बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है ना ना ना ना ना ना ना ना ना। अब मैं इससे ज्यादा और क्या क्ल्यू दूं आज की सुबह 10:05 हो रहे हैं। चलिए फिलहाल जरा काम की बात एकदम से मैं चाहूंगा आपके साथ में कर ही लूं यार। और पता है काम की बात क्या है? काम की बात यार ये है कि एक रिसर्च के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था ना कि एक रिसर्च की गई है एंड बड़ी अजीबो गरीब रिसर्च है, थोड़ी सी फनी रिसर्च की गई है जिस पर जो है अलग अलग तरीके की बातें जो है सोशल मीडिया पर हो रही है। आई डोंट नो आप कितने एक्टिव रहते हैं, लेकिन हाँ मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। आने वाला सॉन्ग एक्चुअली एक रिसर्च हुई है एक कंपनी में। एचआर ने ना एक टीम को दो जगह डिवाइड किया एंड उन टीम्स को उन्होंने अलग अलग चीजें दी। एक टीम ने कहा भैया हमें तो P4 पैसा चाहिए और एक टीम ने कहा हमें नहीं P4 पिज्जा चाहिए। तो दो टीम हुई, एचआर ने दोनों टीमों को अलग अलग तरीके से इंसेंटिव दिया। एक को इंसेंटिव में मनी दिया, दूसरे को इंसेंटिव में पिज्जा दिया। उसके बाद पता लगा जिन लोगों को पिज्जा दिया उनकी प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी ज्यादा अच्छी थी उनके जिनको पैसे दिया था उनके मुकाबले। जिनको पिज्जा मिला उस वाली टीम ने ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम करा। अब इसके एचआर, इस कंपनी के एचआर ने डिसाइड किया है कि भैया अब हम अपनी कंपनी को हर बार इंसेंटिव में पिज्जा देंगे, मतलब अब उनको पैसा नहीं देंगे, अब उनको पिज्जा देंगे। P4 पैसा की जगह नहीं, P4 पिज्जा उनको मिलेगा। अब उसके बाद जो है ना इसमें बड़ा तहलका मच गया सोशल मीडिया पर। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी कंपनी में तो भैया पिज्जा और बर्गर और ये सब तो अलाउड ही नहीं होता है, और हमें तो भैया असली पिज्जा हमारा पैसा ही है, आप हमको हमारा पैसा इंसेंटिव दे दो, हमारे लिए वही सब कुछ है यार। अब मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसे इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च ये लोग करते कहां से यार। मतलब एक कंपनी के एचआर को इसे थॉट आई भी कैसे कि मुझे पिज्जा देना चाहिए या फिर पैसा देना चाहिए? और फिर मजे की बात है कि जिन्होंने पिज्जा खाया उनका प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी ज्यादा अच्छी थी यार। मैं तो नहीं मान सकता यार, मतलब आप इस बात से कितना अग्री करते हो यार। अभी मैं सोशल मीडिया पे एक पोल डालने वाला हूँ इसी को लेकर, आप वहाँ आके मुझे डेफिनेटली अपने आंसर कर सकते हो। ऑफिशियल आईडी है एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, मेरी आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से। फटाफट वहाँ पर आके फॉलो करो एंड उस पोल में आपका क्या कहना है इस रिसर्च को लेकर आप जरूर बताना। अगर आपको कभी ऐसा ऑफर मिले, आप किसी कंपनी में हैं और आपके एचआर आपको ये बोले कि भैया आप इंसेंटिव में पिज्जा लोगे या पैसा, तो आप क्या लेना चाहोगे, पिज्जा या पैसा, बताना जरूर। फिलहाल ही गाना, अरे अरे बताना भूल गया बॉस। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। लौट कर आता हूँ एक लकी कॉलर के साथ, आप कहीं मत जाइए रेडियो की सुई।

0: सॉरी
1: सॉरी तब कहना जब गलती करो। हाँ वैसे मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ यार, अगर कुछ छूट गया हो यार, इतनी सारी चीजें होती हैं, कुछ नहीं बता पाया हूँ जल्दबाजी में, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था ये कौन सा गाना है, काजोल का, यही आपको बताना था मुझे। 10:10 हो रहे हैं, यही बताने के लिए एक लकी कॉलर को शॉर्टलिस्ट किया है मैंने। बड़ी जल्दी में है हमारे साहब, कहीं ऑफिस जा रहे हैं, शायद ड्राइव कर रहे हैं, वो जल्दी से उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है सही जवाब। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप?
2: गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ
1: जी। आपका स्वागत है,
2: बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है और कहाँ है इस वक्त आप?
2: मैं डॉक्टर नोशेंद्र सिंह, एशियन विवेकानंद में मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, अरे वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, सुबह सुबह डॉक्टर साहब, अरे वाह। तो सर आप रेडियो सुनते हैं सुबह सुबह?
2: जी, मैं ज्यादातर गाड़ी में ही रेडियो सुन पाता हूँ।
1: अरे वाह, वेरी नाइस, मजा आता है आपको वैसे सर नौशेंद्र जी?
2: बहुत सारे सर, आपका प्रोग्राम और खुशी मैम का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों आप बहुत अच्छी बातें करते हैं।
1: अरे ऐसे बोल के आप नजर लगा दोगे सर, है फिर आपको उतारनी पड़ेगी। अच्छा नौशेंद्र जी, अभी कहाँ हैं आप? बड़ी आवाजें आ रही हैं, आप पानी वाले जहाज में तो नहीं बैठे हो ना?
2: नहीं, मैं कार में हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ।
1: अच्छा, ओहो, अच्छा मतलब ऑफिस जा रहे हैं राइट नाउ, ऑन द वे? अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आप हमारे साथ हमारे शो में जुड़ते हैं, और एशियन की तो एड्स भी लगातार आती रहती है रेडियो पे, शायद आप सुनते भी होंगे।
2: जी, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट। तो सर ये जो म्यूजिक चल रहा है वो कौन से गाने का है नौशेंद्र जी?
2: जन्म जन्म साथ चलना ही
1: हुई। अरे वाह, क्या बात है, हम तो बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं, आपकी गाड़ियों में आप भी चलिए ना हमारे साथ। लेकिन सर ये कौन सी फिल्म का गाना है, क्या आपको पता है? हेलो
2: जी,
1: क्या आपको मूवी का नाम भी पता है नौशेंद्र जी? शायद थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये दिलवाले फिल्म का गाना था
2: जी।
1: चलिए जोरदार तालियां सर आपके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की सुबह, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं?
2: सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग अच्छे से मजा ले रहे हैं उनका।
1: अरे वाह,
2: अच्छा लगता है
1: जी।
2: बिल्कुल,
1: मुझे बहुत अच्छा लगा नौशेंद्र जी, आप अपने ऑफिस पहुंचिए, कभी एशियन में हम आएंगे जरूर आपसे मिलेंगे।
2: बिल्कुल सर,
1: चलिए बाय बाय सर, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे सर, ओके सर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नौशेंद्र एशियन हॉस्पिटल से मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह। सर आप बनते हैं आज की मॉर्निंग हमारे शो के सुपरस्टार, बिग शाउट आउट बाकी लिसनर्स के लिए भी। कुछ लोगों ने सिर्फ तुक्का बिड़ाया बॉस, एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर।
3: कसम तुम्हें कसम, एक
1: आज काजोल का बर्थडे होता है, यही मैंने पूछा था कौन सी फिल्म का ये कौन सा गाना है। जोरदार तालियां सर पहले तो आपके लिए नौशेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया था, कंग्रेचुलेशन, बात आपसे हो गई है, बट थोड़ी सी वॉइस में क्लैरिटी नहीं थी, बट आई एम श्योर लिसनर्स को हमारे समझ में आ ही गया होगा। बाकी जिन लोगों ने मैसेज पे आंसर्स किए हैं उनको भी दिल से थैंक यू यार। आज की तारीख में आपका बर्थडे होता है तो आप अपना बर्थडे मनाते हैं काजोल के साथ।
3: कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यही।
1: भाई मैं मिलूंगा आपको आज नहीं कल, मेरा जाने का टाइम हो गया, खुशी स्टूडियो आ गई, आप उनसे ढेर सारी बात करना, अपनी पसंद का गाना सुनना, और आज शायद काजोल स्पेशल हो जाए आज का शो। लेकिन अभी कुछ एड ब्रेक, फिर आपका नाम पढ़ के मैं निकलता हूँ यहाँ से।
4: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
5: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल, जाइए ईकेसीसी पोर्टल ekcc.nabard.org।
4: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत केसीसी पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
5: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
6: मुरादाबाद
4: से संपर्क कीजिए।
5: नियम और शर्तें लागू।
7: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: एड ब्रेक का हुआ टीएन, और यहाँ पर अब मैं आपसे लूंगा जाने की। काजोल की एंट्रीज गाने में भी थी यार, एवरीबॉडी चलो यार, फिलहाल मैं निकलता हूँ यहाँ पर, आपको मिलूंगा कल सुबह थर्सडे की मॉर्निंग। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने शहर का ये अमेजिंग रेडियो स्टेशन ऐसे ही बजाते रहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ हमें रेडियो पे बतानी है, ये सजेशन हमें देना है, जो भी आपको लगता है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, तो आप डेफिनेटली हमें बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू 9837896896 पर। ऑफिशियल आईडी पे आके ईमेल भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े थे कौन यहाँ पर, रजा हुसैन साहब। गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं ये आज की मॉर्निंग। एंड ढेर सारे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। मंसूरी कॉलोनी से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े हैं साथ में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन साहब, लिखते हैं आनंद पाजी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? बढ़िया जी बढ़िया। और इन्होंने एक लंबा चौड़ा इंग्लिश में बहुत बड़ा मेरे को टेक्स्ट कर दिया है यहाँ पे व्हाट्सएप पे, इतनी प्यारी प्यारी बातें इन्होंने लिख के पहुँचाई हैं आज की सुबह। नासिर हुसैन साहब करूला गली नंबर 1 मुरादाबाद से मैसेज कर रहे हैं और साथ में सही जवाब दे रहे हैं। यार आपने इतना प्यारा लिखा है ना नासिर भाई, मैं डेफिनेटली इसको पढ़ूंगा और इसको मैं अपने स्टेटस में भी शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल मैसेज। और एक वॉइस नोट मेरे पास पहुंच गया है यहाँ पर, जल्दी से मैं फटाफट इमीडिएटली ये भी सुन लेता हूँ।
0: आनंद भाई गुड मॉर्निंग, काजोल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी जी भैया,
0: आपने जो सवाल पूछा है उसका सही जवाब है, गाने के बोल हैं, धूप से निकलकर छांव से फिसलकर हमने जहां कदम रखा।
1: हाँ यही तो गलत जवाब हो गया, ये गिरुआ ट्रैक नहीं था, ये जन्म जन्म वाला गाना था साहब। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, गलती से मिस्टेक हो जाती है मेरे भाई, कोई इशू नहीं है। गौरव फिलर जी नवीन नगर से जुड़े हैं और इनको पता है आज काजोल का बर्थडे, शुभकामनाएं देते हैं और इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, लेकिन इन्होंने शायद गलत जवाब दिया था जो इन्होंने चीटिंग करके डिलीट कर दिया है। वेरी बैड गौरव जी, अच्छी अच्छी बातें करोगे यार, वो तो आप करती हो, लेकिन ये डिलीट मत किया करो मैसेज, वेरी बैड। हाँ हाय गुड मॉर्निंग, ये बबली अनजान गीता कश्यप लक्ष्मी भाभी संतोष भाभी जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। ये सपना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग। भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से लिखते हैं, आनंद जी रेड कलर का मतलब होता है गाड़ी को सावधानी पूर्वक रोकने का एक वो सिग्नल देता है, येलो कलर गाड़ी की जो गति है वो धीमा करने का सिग्नल देता है, पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें हमें यह बताता है, और हरा कलर गाड़ी को लेकर चलने का सिग्नल देते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। हेलो जी, अजीत कसाना साहब जुड़ चुके हैं मेरे साथ, साथ में माया देवी एंड ऋतिक आदित्य कसाना लदावली से मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। ये दुर्गेश सैनी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं राजा कश्यप जी। सपना शर्मा नगर पंचायत पागवाड़ा से जुड़ चुकी हैं, काजोल को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्टर शेयर कर रही हैं, हैप्पी बर्थडे वाला। यूपी से मुरादाबाद यूपी से रणधीर सिंह जेठालाल जुड़ चुके हैं आज की सुबह, एंड निपिंदर चौधरी एडवोकेट जुड़ रहे हैं इलाहाबाद से सही जवाब के साथ। काजोल दिस इज राइट आंसर, ई के मेरे साथ जुड़े हैं, आई मीन डी के अरोड़ा चंदन नगर से। गुड मॉर्निंग आनंद, काजोल मैम का बर्थडे है, राहुल सक्सेना फ्रॉम मुरादाबाद ही। राहुल थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है? मुंबई महाराष्ट्र से बबलू जी जुड़े हैं, ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ गई हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ। सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत प्यारी बातें ये शेयर कर रहे हैं आज की सुबह, जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम हो जाएंगी हमारी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी, वेरी नाइस। चलो गाइस, लवली टॉकिंग टू यू, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, कल मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफी है भाई, कल सुबह होंगी आपसे मेरी और भी बातचीत। कुछ वो टेक्स्ट मैसेज आए हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, हैप्पी बर्थडे काजोल जी, आज काजोल का बर्थडे है, थैंक यू सो मच। ये मेरे पास एंजल का मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, मेरा टाइम 10 बजे का होता है लेकिन देख रहे हो उधर आप 10:20 हो गए बॉस। ये तालियां मैं खुद के लिए बजा रहा हूँ, कभी कभी मैं इतना अच्छा काम जो करता हूँ इतनी देर तक आपसे बातें करता रहता हूँ, इसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता मुझे। चलो अभी के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, कल मिलते हैं।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

जहाँ गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी। मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग मुरादाबाद, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। दोस्तों 5 अगस्त की तारीख है आज और समय हुआ है 10:30। वेडनेसडे मॉर्निंग है, आज कुछ खास तो है दोस्तों, क्या है सब आपको पता लगेगा यहाँ पर। और दोस्तों चाहे आप इस वक्त किचन में काम कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो या अपनी शॉप संभाल रहे हो या फिर सफर में हमें सुन रहे हो, याद रखिएगा हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। और आज बस इतना कीजिए, वर्क छोटा हो या बड़ा उसे पूरा दिल से कीजिए और स्माइल के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव माइंड्स के साथ शुरू किया गया दिन ना कितना भी बिजी क्यों ना हो खूबसूरत जरूर बन जाता है। हैव अ ब्यूटीफुल वेडनेसडे मॉर्निंग एवरीवन, करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, आपकी दोस्त जो आपके लिए लेकर आती है ढेर सारी खुशियाँ। और आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं राइट नाउ, उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, तो आप फटाफट से अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा रहेगा 9837896896। और दोस्तों आज बहुत गर्मी लग रही थी जब मैं रास्ते में आ रही थी, हाय गर्मी हदी हो गई है। चलो अभी हम गर्मी में सुनवाते हैं आपको एक कूल सा ट्रैक, बहुत ही प्यारा, फ्रॉम द मूवी फनर से एंड कैलाश खेर, साथ में शान की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। लौट कर आती हूँ मैं इस प्यारे से गाने के इस पार।

हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ, और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फनहा मूवी का एंड चांद सिफारिश। शान साथ में कैलाश खेर जी की बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस, एंड ये गाना आपको पसंद आया होगा, उम्मीद तो यही हम करते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि रिश्तों की खूबसूरती ना उम्र से नहीं एक दूसरे की कद्र से बढ़ती है। किसी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं होती, बस सामने वाले की छोटी सी बात को समझ लेना, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना और मुश्किल वक्त में उसका हाथ थाम लेना, ये रिश्ते की खूबसूरती होती है। और अगर आपके पास भी अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड अच्छा जीवन साथी है, तो आप उनकी कद्र कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए एंड उनको समझिए और टाइम भी दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना, बॉन्डिंग जो होती है स्ट्रांग, वो बड़े बड़े तोहफों से नहीं होती है। सबसे कीमती जो होता है ना, वो होता है इंसान का वक्त। और आज के टाइम में एक दूसरे को वक्त देना मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने काम में सब लोग बिजी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपके लिए वक्त दे रहा है तो आपको भी समझना चाहिए उस चीज को। और यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं, तो उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। और आज क्या कुछ स्पेशल है सब आपको पता लगेगा यहाँ पर। एंड सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैसेज आए हैं, ये हमें संदेश मिला है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग मैम, जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, और ये हमारे पास मैसेज पहुँचाते हैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं, और ये कहते हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप। देखिए सर, खुशी तो हमेशा खुश रहती है, आप सबसे बातचीत करते हैं तो इतना अच्छा लगता है। हमारे इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स सब हमें मैसेज पहुँचाते हैं, और जब इतने प्यारे प्यारे साथियों का साथ मिल जाता है तो फिर लाइफ में जो टेंशन होगी ना, वो भी दूर चली जाती है। और सर कहते हैं कि हमें आपका शो मैम बहुत पसंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ने गाने की रिक्वेस्ट में भेजी है जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे ना, बहुत अच्छा गाना है यार, सुनवाएंगे आपको दोस्तों। उसके अलावा एक और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं गौरव टेलर जी नवीन नगर मुरादाबाद से। कहते हैं खुशी जी जय श्री राम, आप कैसी हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ सर। इतने प्यार से आप हालचाल जान लेते हैं ना, अगर इंसान जो स्वस्थ भी ना हो ना, वो भी ठीक हो जाता है। और कहते हैं कि आज काजोल जी का जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और हमें एक गाना सुनवा दीजिएगा मैम, रंग दे तू मोहे गिरुआ। ओके चलिए सुनवाएंगे बिल्कुल। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नौशिंद्र सिंह जी का हमारे पास मैसेज आया है एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल से, एंड आज की मॉर्निंग आप सो लकी सुपरस्टार बने हैं ना विनास मॉर्निंग में, मैं सुन रही थी एंड अच्छा लगा, क्योंकि जब एवरी डे हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो कनेक्ट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और बड़ी प्यारी सी लाइन है कि आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो फिर क्या गम है। चलिए सुनते हैं कुछ गाने। ये चुलबुली सी लड़की ना बहुत बातें करती है, अभी मैं अपने आप को थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ और आपको एक शानदार गाना सुनवाती हूँ। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपने सुबह ऐसे ही मुस्कुराते हुए कंप्लीट कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा मुस्कुराकर करते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है। तो सुनिएगा ये शानदार से गाना।

0: संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

क्या बात है दोस्तों, बड़ा ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी दिलवाले 2 से काजोल जी और साथ में शाहरुख खान जी। बहुत ही खूबसूरत ये ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से। और एवरीवन, ये है आपके अपने सिटी का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजी खुशी।

और दोस्तों आज हमने गाने इतने प्ले किए हैं और आनंद सर ने भी बता ही दिया है, लेकिन हम भी आपको बता देते हैं। दोस्तों आज बात है उस एक्टर्स के जिनके स्माइल और एक्सप्रेशन देखकर लगता है कैमरा खुद उनके उनसे प्यार करने लगा था। काजोल जी की आज हम बात कर रहे हैं। एवरीवन, 5 अगस्त 1974 को मुंबई में जन्मी काजोल एक फिल्मी फैमिली से आती हैं। उनकी माँ दिग्गज अभिनेत्री तनुजा, पिता निर्देशक निर्माता शोमू मुखर्जी और मासी हिंदी सिनेमा की लेजेंड एक्ट्रेस नीतू जी थी। दोस्तों लेकिन काजोल जी ने सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड के भरोसे नहीं बल्कि अपनी नेचुरल एक्टिंग और बिंदास पर्सनालिटी से अपनी अलग पहचान बनाई। महज 16 साल की उम्र में फिल्म बेखुदी से शुरुआत करने वाली काजोल ने बाजीगर करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है जैसी फिल्मों से ऑडियंस के दिलों पर राज किया। और भी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें हैं, वो भी सब आपको पता लगेंगी ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको काजोल जी की जो जोड़ी है वो कौन से एक्टर के साथ ज्यादा पसंद आती है। मैं ऑप्शन तो नहीं दे रही हूँ, वो चॉइस आपकी है। आपको सबसे ज्यादा काजोल जी किस एक्टर्स के साथ पसंद आई है, कौन से वो एक्टर हैं जिनके साथ आपको काजोल जी की जोड़ी सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है, तो फटाफट से अपने मैसेज हमें कीजिएगा, पहुंचाएगा। नंबर हमारा है 9837896896। उनकी मतलब वो चुलबुलापन, वो नटखट अदाएं एंड वो प्यारी सी हंसी कितनी खूबसूरत लगती है ना, और उनकी आंखें बहुत ही खूबसूरत हैं। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपको काजोल जी के साथ सबसे ज्यादा जोड़ी किनकी आपको खूबसूरत लगती है, काजोल जी के साथ कौन से एक्टर ज्यादा आपको अच्छे लगते हैं, जल्दी से बताइएगा। इतना मत सोचो, आपने तो इतनी सारी फिल्में देखी हैं। चलो जब तक आप मुझे बताते हैं तब तक मैं आपको एक शानदार से गाना सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और भी मैसेज हैं जिनको हमें जल्दी से शामिल करना है। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, प्रिय मित्र खुशी जी को हमारा नमस्कार, आपकी खूबसूरत आवाज का दीवाना हूँ एंड आपके बोलने का अंदाज भी काफी निराला है। ये मैसेज पहुँचाते हैं गणेश प्रसाद हुजार काठमांडू से। थैंक यू सो मच सर। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है देवभूमि उत्तराखंड से, रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से मैसेज पहुंचाते हैं उमा शंकर जी, और साथ में इनकी पूरी फैमिली भी है। इन्होंने हमें एक रोज भेजा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, थैंक यू। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये कहते हैं हर हर महादेव खुशी मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। दुर्गेश सैनी जी का मैसेज हमारे पास आया है कल्याणपुर मुरादाबाद से। जल्दी से अपने मैसेज पहुंचाएगा और मैं आप तक पहुंचाती हूँ कुछ खूबसूरत गीत एंड उसकी बात करेंगे आपसे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, बस आपको यूं ही बने रहना है, मुस्कुराते रहना है, और जो भी आप काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत के साथ कीजिएगा। और बड़ी खूबसूरत सी लाइन है ना कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। हर दिन हमें एक न्यू मौका मिलता है कुछ नया करने का, तो अच्छा कीजिए यार, क्योंकि हर दिन बहुत स्पेशल होता है और आज का दिन आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो इसको बेहतर नहीं, बेहतरीन बनाइए और मुस्कुराइए। बाकी कुछ ब्यूटीफुल ट्रैक मैं आपको सुनवा रही हूँ जो आपके दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा तो आपको भी झूमना है, ठीक है, तो झूमने के लिए तैयार हो जाइएगा।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कितनी बार मैम से कहलवाएंगे सर, जरा फिर से कहना। मैम बार बार बोल रही हैं किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक अभी आपने सुना फ्रॉम द मूवी राजा से, और इस फिल्म मतलब इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी रजा हुसैन जी ने। दोस्तों वंस अगेन वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 खुशी के साथ, और समय हुआ है 11:07। और एवरीवन, आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा एक बोल सकते हैं कि देखिए आज काजोल जी का बर्थडे है, तो दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि काजोल जी ने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के साथ काम किया है, लेकिन आपकी नज़र में उनकी सबसे शानदार जोड़ी किस अभिनेता के साथ जमी है? क्या आपको काजोल और शाहरुख खान जी की जोड़ी पसंद है, या फिर अजय देवगन के साथ उनकी जोड़ी आपको ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर कोई और अभिनेता जिनके साथ आपको काजोल जी की जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई हो? तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: और दोस्तों अभी हम आपको वेदर अपडेट भी दे देते हैं क्योंकि वो जरूरी है वेदर अपडेट. एंड बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के एक बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग के अनुसार आज 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में आप सभी से मेरी छोटी सी अपील है, अगर आप बहुत जरूरी ना हो तो जल सलाब वाले इलाकों और नदी नालों के पास जाने से बचें. बिजली चमकने के दौरान पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना खड़े हों और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों विशेष सावधानी बरतें. और हमारे जो किसान बहन भाई भी खेतों में जल भराव से बचाव की व्यवस्था रखें. भारी बारिश का मौसम बहुत खूबसूरत है लेकिन सेफ्टी फर्स्ट. ओके एवरीवन, तो थोड़ी सी सावधानी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है. तो घर से निकलते समय मौसम का अपडेट जरूर देख लें एक बारी. स्टे सेफ, स्टे अलर्ट. ओके एवरीवन. और हमारे पास यहाँ पर बैक टू बैक आप सभी के मैसेज आ रहे हैं तो मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ. हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया ईदगाह मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी जी का और साथ में रईस उल्ला अंसारी जी भी हैं. गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक. एंड ए मेरे हम सफर सुन जरा, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं. बिल्कुल सुनवाएंगे सर आपको. उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है मुरादाबाद से रणवीर सिंह जी का और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं. इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, पूरा प्रयास करेंगे सर उसको हम प्ले करने का. उसके अलावा हमारे पास एक वॉइस नोट भी आया है तो मैं उसको भी क्विकली प्ले कर लेती हूँ कि आज की सुबह हमारे पास सर ने क्या भेजा है. एवरी मॉर्निंग वो कुछ ना कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं, कोई मोटिवेशन थॉट एंड अपने विचार अच्छे लगते हैं वो हम तक पहुँचाते हैं. तो चलिए श्रोताओं हम पहुँचा देते हैं आप सब तक.
1: नमस्कार दोस्तों, ये है मॉर्निंग मसाला जिसकी आरजे है खुशी जो आपके लिए मंडे से सैटरडे तक लाती है एक अच्छा सुंदर सा प्रोग्राम जो बनाता है आपकी मॉर्निंग को खुशनुमा. जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखिए, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखिए. जीवन में जो हो रहा है उसे धैर्य से स्वीकार करो और अपने कर्म पूरे मन से करते रहो. सुख दुख लाभ हानि जीत और हार सब हमेशा बदलते रहते हैं. नमस्कार राधे राधे, मैं भूपी शर्मा नगर पंचायत पागपुरा से बोल रहा हूँ. आप सुन रहे मॉर्निंग मसाला आरजे खुशी के साथ. सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ और भेजते रहिए अच्छे अच्छे मैसेज. ये मैसेज जो सुनाई देंगे या पढ़े जाएंगे आपके लिए, आपके मिलने वालों के लिए, और ये सुनाई देते हैं सारे देश में सारे संसार में. नमस्कार राधे राधे.
0: आपको भी राधे राधे. थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वॉइस नोट हमें पहुंचाया है, अच्छा लगा. एंड आप अपने थॉट अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं. और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहां पर आया है अमित वर्मा जी का. गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर. नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है मुंबई महाराष्ट्र से बबलू सैनी जी का और ये कहते हैं हर हर महादेव खुशी जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर. जी सर बिल्कुल, उन्हीं के ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं आज काजोल जी की और आपको जरूर उस गाने में, खूबसूरत से गाने में हम आपको शामिल करेंगे. उसके अलावा अगला मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी जी का. और हमारे पास मैसेज आया है शाहरुख हुसैन अंसारी जी का, कहते हैं कि मैम हमें काजोल जी की जो जोड़ी है वो शाहरुख खान जी के साथ ज्यादा अच्छी लगती है. ओके सर. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से. सावन आया है, हर ओर हरियाली छाई, भोलेनाथ की कृपा से हर खुशी घर आई. खुशी मैम आपकी मुस्कान यूं ही खिलती रहे, जीवन में सफलता और खुशियां हर कदम पर मिलती रहे. अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम. और पता है एवरीवन, इन्होंने हमें ग्रीन दिल भेजा है एंड कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी मैम. मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कभी धूप तो कभी छाओ, ओके। और ये काजोल जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं पहुंचाती हैं और ये गाना सुनना चाहती है, मेरे ख्वाबों में जो आए। कौन आते हैं आपकी ख्वाबों में? हाँ, खुशी आती है या आनंद सर आते हैं या फिर रीना आती है? बताइएगा जरूर। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है डॉक्टर नौशिंद्र सिंह जी का, और ये कहते हैं कि शाहरुख खान एंड अजय देवगन जी के साथ उनकी जोड़ी हमें बहुत पसंद आती है। धन्यवाद सर अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। तो चलिए एवरीवन, अभी लौट कर आती हूँ। जो मैसेज अभी हमारे पास पेंडिंग है उनको भी हम कंप्लीट करेंगे, रीड करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी सुन लेते हैं। कंटिन्यू खुशी बोलती रहती है तो थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है। म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे भी बात करेंगे।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
5: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद RJ खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और शो का नाम है मॉर्निंग मसाला। दोस्तों अब बात करते हैं उस शो की जिसका नाम सुनते ही ना घर घर में एंटरटेनमेंट का माहौल बन जाता है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की पहली झलक सामने आ चुकी है और इस बार फिर लौट रहे हैं सलमान खान जी अपने दबंग अंदाज में।

दोस्तों करण अर्जुन में हुआ था जो, वो अब बिग बॉस में होगा तथा अस्तु सलमान खान एक बार फिर अपनी धांसू अंदाज के साथ लौटने को तैयार हैं बिग बॉस सीजन 20 का धमाकेदार सीरीज आ चुका है और इस बार का खेल पूरी तरह से अलग और रहस्यमय होने वाला है। 6 सितंबर 2026 से कलर्स और जियो हॉटस्टार पर शुरू होने वाला है। इस ऐतिहासिक सीजन के लिए क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, वैसे हमारे श्रोताओं के अंदर एक्साइटमेंट तो है। और दोस्तों मैं वक्त में बता देती हूँ, यहाँ पर समय हुआ है 11:28 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। और आपकी शानदार मैसेज जो हो कमाल ही कर देता तुसी तो। एंड हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत सा मैसेज आया है और ये अपना मैसेज हमें पहुँचाती हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। शापरीन जी का अलग से मैसेज हमारे पास आया है। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है उमेश कुमार प्रजापति जी का लोधीपुर मुरादाबाद से। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, हर हर महादेव, आप कैसी हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और इनको हमारी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, शुक्रिया आपका सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है कोमल शर्मा जी का और ये कहती है मुझे काजोल मैम की जोड़ी जो है वो शाहरुख खान जी के साथ बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच कोमल मैम, आपने अपना मैसेज पहुंचाया। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, हेलो खुशी मैम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पिंटू है, मुझे एक सॉन्ग सुनना है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में। श्योर सर, ये ट्रैक हम आपको सुनवाएंगे, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का और ललिता मैम कहती हैं कि मेरे ख्वाबों में तो मेरे एफएम के तीनों आरजीज ही आते हैं। अच्छा, तीनों आते हैं, ओके, फिर तो ठीक है, फिर कोई पंगा नहीं पहना है। तो चलिए एवरीवन, एक गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी शफी अहमद जी ने एंड बहुत ही प्यारा गाना है फ्रॉम द मूवी कयामत से कयामत तक, उदित नारायण जी और साथ में अलका याग्निक जी की बड़ी प्यारी सी आवाज़। तो सुनते हैं इस बेहतरीन गाने को और कुछ और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है, बस आप बने रहिए, सुनते रहिए खुशी को एफएम मुरादाबाद 89.6 पर।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुराद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना ये अरिजीत सिंह जी का खूबसूरत सा ट्रैक। एंड एवरीवन, आज 5 अगस्त है और आज भगत पूरन सिंह जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोस्तों, एक ऐसे महान आत्मा को याद करने का दिन है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेवा, करुणा, मानवता के नाम कर दी है। हम बात कर रहे हैं भगत पूरन सिंह जी की, जिन्होंने अपना जीवन उन लोगों की सेवा में समर्पित किया कर दिया जिन्होंने समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता था। उन्होंने बेसहारा, बीमार और ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का हक दिलाने की कोशिश की। उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसों से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि वह दूसरों के लिए कितना संवेदनशील हैं। उनकी ज़िंदगी हमें एक बात बहुत खूबसूरत सिखा देती है कि सेवा करने के लिए बहुत धन नहीं, बस एक बड़ा और संवेदनशील दिल चाहिए। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए उन्हें सिर्फ याद ना करें बल्कि उनके विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतारने का छोटा सा प्रयास करें। किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए एंड किसी बुज़ुर्गों का हाल पूछ लीजिए, किसी परेशान इंसान को दो मीठे शब्द बोल दीजिए। कोई क्योंकि कई बार हमारी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बन जाती है। भगत पूरन सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि पर हम शत-शत नमन करते हैं। और मेरे प्यारे श्रोताओं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और सेवा से बड़ा कोई भी कहते हैं कि पूजा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लगता है कि जो रियलिटी है वो है कि सबसे बड़ी तो इंसानियत होती है एवरीवन एंड

0: में मैसेज पहुंचाती हैं। बुधा पार्क मुरादाबाद से कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये कहती हैं कि मुझे काजोल जी की जो जोड़ी है ना मैम, अजय देवगन जी के साथ बहुत अच्छी लगती है, और मैं एक गाना सुनना चाहती हूँ। बिल्कुल सुनवाएंगी जी, लेकिन दोस्तों मेरा एक सवाल भी है, ठीक है? और वो क्या सवाल है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं एक ना डायलॉग प्ले कर रही हूँ, आपको मुझे बताना है कि कौन सी फिल्म का डायलॉग है। जी हाँ, बहुत ही सिंपल सा है एंड कोई मैंने भारी भरकम नहीं दिया है, क्योंकि मैंने बहुत डिसाइड करके ये चुना है, और ये डायलॉग बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको सुनवा देती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, ठीक है? आपको उस फिल्म का नाम बताना है।
1: इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। इंसान को तकलीफ कब होती है?
0: दोस्तों ये आपको मुझे बताना है कि जो डायलॉग मैंने प्ले किया है कौन सी फिल्म से है। हाँ जी, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। मोबाइल नंबर हमारा है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अभी कुछ एड ब्रेक का भी टाइम हो गया, तो एड ब्रेक के बाद खुशी लौटकर आएगी, लेकिन उससे पहले गाने भी सुनवाएगी आपको। तो आप कहीं मत जाइए, बस यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और अपनों के साथ रहिए।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: बिल्कुल दोस्तों, हम आपकी गल मान गए हैं, तभी तो हम लौट कर आ चुके हैं फिर मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, मैंने ना एक काजोल जी का डायलॉग प्ले किया था और मुझे आपको बताना था, मतलब आप मुझे बताते कि ये गाना मैंने आपसे मालूम किया था कि कौन सी फिल्म का है ये डायलॉग। एंड मैं एक बार अगेन प्ले कर देती हूँ, जरा सुनिएगा ध्यान से कि ये जो डायलॉग मैं प्ले कर रही हूँ कौन सी फिल्म का है।
1: कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी। इंसान,
0: हाँ जी दोस्तों, और हमारे पास यहाँ पर सही जवाब आया है, बड़ा ही खूबसूरत सा। ये मैम कहाँ से हमारे साथ जुड़ी हैं, कहाँ से अपना मैसेज पहुँचाती हैं, जरा हम ध्यान से पढ़ लेते हैं उनका मैसेज। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है दिया का, बुद्धि बिहार से। कहती है मैम, हम आपको सुन रहे हैं और आपने जो अभी अभी डायलॉग प्ले किया है, ये डायलॉग है फ्रॉम द मूवी प्यार तो होना ही था। और काजोल मैम ने इस डायलॉग को प्ले किया एंड बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म भी रही है। और आज काजोल मैम का भी बर्थडे है, तो उनको हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपना सही जवाब पहुंचाया है। और हमारे पास ललिता मैम का भी मैसेज आया है, लेकिन ललिता जी आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, बट कोई बात नहीं। उमेश जी ने भी जवाब पहुंचाया है, बट थोड़ा सा आपने भी गड़बड़ कर दिया है सर। सर कहते हैं फ्रॉम द मूवी बाजीगर नहीं, मूवी का नाम था प्यार तो होना।

तो चलिए दोस्तों, एंड आप सभी के साथ कनेक्ट होकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा आज का शो, और मुझे दीजिएगा अभी जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, अपना ख्याल भी रखिएगा अच्छे से, पानी वानी पीते रहिए, फ्रूट्स भी खाते रहिए, ठीक है। और इस मानसून में ना सावधान रहिए, बाहर आप जा रहे हैं ना तो रेनकोट भी अपने साथ रखना और छाता भी रखना, ठीक है, क्योंकि बारिश कभी भी दस्तक दे सकती है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं। और हमें आपकी फिक्र होती है क्योंकि आप सब हमारे अपने हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं, मिलेंगे आपको 3 से 5। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एवरीवन, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए प्यारे प्यारे गाने।

0: as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रा स्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता

0: but nobody had the will to abrogate it.
1: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसका नाम तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों तक पहुंचती है। नाम है कालाजार। लेकिन आज की शुरुआत मैं एक कहानी के साथ करना चाहती हूँ। टीकन देवी जी, आप तो गांव-गांव में जाती हैं, क्या आपने कभी ऐसा कोई मामला देखा है?
1: अरे आरजे खुशी, देखा ही नहीं, बहुत करीब से देखा है। हमारे पड़ोस में एक औरत थी, नाम था सरोज। पहले तो उसे बस हल्का बुखार आता था। लोग बोले मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसका बुखार कम ही नहीं हुआ। उसका वजन गिरने लगा, चेहरा पीला पड़ गया, पेट फूलने लगा,

0: हमने कहा, सरोज चलो अस्पताल चलते हैं। लेकिन उसके घर वाले बोले, अरे ये तो किसी की नजर लग गई है या कोई शाये हैं। महीने तक इलाज नहीं हुआ। जब अस्पताल पहुंची, तब तक हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इलाज हुआ, जान तो बच गई, लेकिन बाद में उसके शरीर पर दाने निकल आए, चेहरा खराब हो गया। डॉक्टर बोले, ये PKDL है, कालाजार की बीमारी। आज भी वो घर से कम निकलती हैं। लोग देखकर फुसफुसाते हैं। सोचिए आरजे बहन, अगर समय पर इलाज हो जाता तो ये सब नहीं होता।
1: ये तो बहुत दर्दनाक है दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। तो आज हम समझेंगे कालाजार क्या है, कैसा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। टीकन देवी जी, सबसे पहले ये बताइए, ये कालाजार होता क्या है?
0: देखिए आरजे खुशी, कालाजार एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसे हम आम भाषा में भले ही कालाजार कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम विसरल लीसमेनियासिस है। यह बीमारी एक बहुत ही छोटे से कीड़े के काटने से फैलती है, जिसे रेत मक्खी या सैडफ्लाइड कहा जाता है। अब ये मक्खी इतनी छोटी होती है कि कई बार हमें दिखती भी नहीं है, और खास बात यह है कि यह ज्यादातर रात के समय काटती है, जब लोग सो रहे होते हैं। जब यह रेत मक्खी किसी इंसान को काटती है, तो इसके साथ एक छोटा सा परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह परजीवी धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे लीवर, पीलिया यानी तिल्ली और खून को नुकसान पहुंचाने लगता है। यही वजह है कि शुरुआत में यह बीमारी साधारण लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को काफी कमजोर कर देती है।
1: अच्छा, तो इसका मतलब है कि बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन टीकन देवी जी, इसके लक्षण कैसे पहचाने, लोगों को कैसे पता चले कि ये कालाजार हो सकता है?
0: बहुत अच्छा सवाल है आरजे खुशी। देखिए, इसके लक्षण एकदम से तेज नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को लंबे समय तक बुखार बना रहता है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। इसके साथ साथ व्यक्ति का वजन कम होने लगता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है और वह पहले जैसा काम नहीं कर पाता। धीरे धीरे पेट भी फूलने लग जाता है, क्योंकि अंदर की तिल्ली और लीवर बढ़ जाते हैं। इसके अलावा खून की कमी भी हो जाती है, जिससे चेहरा पीला पड़ जाता है और व्यक्ति बहुत कमजोर दिखने लगता है। यही वजह है कि कई बार लोग इसे साधारण बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
1: मतलब देखने में तो ये सामान्य बुखार जैसा लगता है, लेकिन असल में ये अंदर से बहुत खतरनाक बीमारी होती है।
0: बिल्कुल सही समझे आप। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर समय पर इसका इलाज ना कराया जाए, तो करीब 95% मामलों में यह जानलेवा साबित हो जाती है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: यह बीमारी किन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलती है?
0: भारत में यह बीमारी खास तौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। इन राज्यों में करीब 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के खतरे में हैं।
1: इतने सारे लोग जोखिम में हैं? ये तो सच में चिंता की बात है।
0: हाँ आरजे खुशी, और खास बात यह है कि यह बीमारी ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करती है जो कच्चे घरों में रहते हैं, जिन घरों की दीवारों में दरारें होती हैं, जहां साफ सफाई की कमी होती है और जहां पशु घर के बहुत पास रखे जाते हैं, वहां यह रेत मक्खी आसानी से पनपती है और ऐसे वातावरण में इस बीमारी का खतरा और बढ़ जाता है।
1: अगर किसी को लगे कि उसे ये लक्षण है, तो उसे क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आजकल वहाँ पर बहुत सी आसान और तेज जांच की सुविधाएं उपलब्ध है। एक ऐसा टेस्ट होता है जो लगभग 10 मिनट में यह बता देता है कि व्यक्ति को कालाजार है या नहीं। और सबसे जरूरी बात, कि इसका इलाज सरकारी अस्पतालों में की तरह मुफ्त किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसों की वजह से इलाज से वंचित ना रहे।
1: मुफ्त इलाज, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है।
0: बिल्कुल, और अब तो इलाज के लिए बहुत प्रभावी दवाइयाँ भी उपलब्ध है, जैसे कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जो जल्द असर करती है और मरीज को जल्द ठीक होने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है कि मरीज को पूरा इलाज लेना चाहिए, बीच में दवा छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारी दोबारा लौट सकती है।
1: टीकन देवी जी, आपने अभी बताया कि लोग समय पर अस्पताल जाएं, लेकिन एक बात बताइए, कई बार लोग सोचते हैं कि जांच में बहुत समय लगेगा या बहुत पैसे लगेंगे, तो क्या सच में जांच इतनी मुश्किल होती है?
0: नहीं नहीं आरजे खुशी, अब तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रही है। पहले के समय में जरूर जांच में समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि गांव के पास ही सब सेंटर या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बहुत जल्द काला अजार की जांच हो जाती है। आजकल एक खास तरह का टेस्ट होता है जिसमें रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस उंगली से एक छोटा सा खून का सैंपल लिया जाता है और करीब 10 मिनट के अंदर ही पता चल जाता है कि व्यक्ति को काला आजार है या नहीं।
1: सिर्फ 10 मिनट में? ये तो बहुत ही आसान हो गया है।
0: हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि अब किसी को भी जांच कराने में डरने या देरी करने की जरूरत नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि शहर जाना पड़ेगा, बड़े अस्पताल में इलाज करनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सुविधाएं गांव के पास ही उपलब्ध है।
1: लेकिन टीकन देवी जी, क्या ये टेस्ट पूरी तरह भरोसेमंद होता है?
0: देखिए, ये टेस्ट बहुत हद तक सही परिणाम देता है और शुरुआती पहचान के लिए बहुत उपयोगी है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर तुरंत इलाज शुरू कर सकते हैं, और अगर किसी केस में डॉक्टर को और पुष्टि की जरूरत लगे तो वे आगे की जांच भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि यह टेस्ट हमें समय पर बीमारी पकड़ने में मदद करता है, जिससे इलाज जल्द शुरू हो सके और बीमारी गंभीर होने से पहले ही रोक दी जाए।
1: मतलब अब सबसे बड़ी बाधा यानी देर से पता चलना, वो भी काफी हद तक खत्म हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं तो हमेशा लोगों से यही कहती हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो रहा हो या कमजोरी महसूस हो रहे हो, तो बिना सोचे जे सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाए और टेस्ट कराए। डरने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत है।
1: और क्या आशा दीदी भी इसमें मदद करती हैं?
0: हाँ बिल्कुल, आशा दीदी और दूसरे स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर ऐसे लक्षण वाले लोगों की पहचान करते हैं। वे लोगों को समझाते हैं, उन्हें स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने में मदद करते हैं और कई बार खुद टेस्ट करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी को जाने में दिक्कत हो तो आशा दीदी से मदद जरूर लेनी चाहिए, वे आपके सबसे करीब की स्वास्थ्य साथी है।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब अब जानकारी, जांच और इलाज तीनों एक ही गांव के पास उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल, और यही वजह है कि अब काला आजार को हराना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, बस जरूरत है कि लोग समय पर कदम उठाए।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या कर रही है?
0: सरकार इस दिशा में काफी काम कर रही है, एक बड़ा कार्यक्रम चला रहा है जिनका नाम है राष्ट्रीय काला आजार उन्मूलन कार्यक्रम, और यह NCVBDC के तहत आता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्षण यह है कि हर ब्लॉक में काला आजार के मामले 10,000 लोगों में से एक से भी कम हो जाए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने 2023 में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो कि बहुत ही उपलब्धि है।
1: ये तो सच में गर्व की बात है।
0: हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो जाए, अभी भी सावधानी बहुत जरूरी है। सरकार हर साल लाखों घरों में स्प्रे करवाती है, करीब 3.5 से 3.8 करोड़ लोगों के घरों में दीवारों पर दवा का छिड़काव किया जाता है, जिसमें रेत मक्खियां खत्म हो सके और बीमारी फैलने से रोकी जा सके।
1: तो आम लोग खुद क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए?
0: बहुत आसान उपाय है, जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। सबसे पहले तो घर की दीवारों की दरारों को भरना चाहिए, ताकि मक्खियों को छिपने की जगह ना मिले। घर और आसपास की साफ सफाई बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पशुओं को घर से थोड़ा दूर रखना चाहिए, ताकि मक्खियां इंसानों के पास ना आए। रात में सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जमीन पर या खुले में बाहर सोने से बचे। इन छोटे छोटे उपायों से हम काला आजार जैसे बीमारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: टीकन देवी जी, एक बात बताइए, गांव में लोग इस बीमारी को लेकर किस तरह की गलतफहमियां रखते हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमारी से ज्यादा डर उसके बारे में सुनी सुनाई बातों से जताते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे खुशी, और यही सबसे बड़ी समस्या भी है। हमारे गाँव में आज भी बहुत लोग काला आजार को भूत प्रेत साया या किसी की बुरी नजर का असर मान लेते हैं। जब किसी को लंबे समय तक बुखार रहता है, शरीर कमजोर हो जाता है और पेट फूल जाता है, तो लोग सीधे डॉक्टर के पास जाने के बजाय झाड़ फूक या ओझ गुनी के पास चले जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, अरे भाई, ये कोई जादू टोना नहीं, ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी है। अगर समय पर सही इलाज मिल जाए तो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो सकता है।
1: हाँ, और शायद इसी वजह से लोग देर कर देते हैं इलाज कराने में।
0: बिल्कुल, और एक और बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, इसीलिए मरीज से दूरी बना लेते हैं। कुछ लोग मरीज को तो अलग कमरे में रखने लगते हैं या उसे बात तक नहीं करते, लेकिन सच्चाई यही है कि काला आजार छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलता, ये सिर्फ रेत मक्खी के काटने से फैलता है। इसीलिए मरीज से डरे या उसे अलग कमरे की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उसे सहारा देने की जरूरत है।
1: और क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं लोगों में?
0: कई लोग यह भी मान लेते हैं कि अगर बुखार अपने आप कम हो या तो बीमारी ठीक हो गई, जबकि अंदर से बीमारी बनी रहती है और बाद में और गंभीर हो जाती है। कुछ लोग दवा शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा आराम मिलता है दवा बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे बीमारी दोबारा लौट सकती है या और जटिल हो सकती है। और एक बात, और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ गरीब या कमजोर लोगों को ही काला आजार होता है, जबकि सच्चाई यह है कि अगर माहौल सही नहीं है और मक्खियां पनप रही है तो कोई भी व्यक्ति इसका शिकार हो सकता है।
1: तो इसका समाधान क्या है? लोग इन गलत फहमियों से कैसे बाहर आए?
0: समाधान बहुत साफ है आरजे खुशी। सही जानकारी और जागरूकता। सबसे पहले तो जैसे ही किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार रहे, वजन कम हो या पेट फूलने लगे, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाइए, किसी भी तरह का झाड़ फूक या देरी से बचे। दूसरी बात, अगर डॉक्टर इलाज शुरू करे तो पूरा कोर्स पूरा करे, चाहे बीच में कितनी भी आराम क्यों ना मिल जाए। और तीसरी बात, घर और आसपास की सफाई रखें, दीवारों की दरारें भरें और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, मरीज का साथ दे, उसे अलग या कमजोर महसूस ना होने दे।
1: बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, लेकिन टीकन देवी जी, आपने शुरुआत में एक दुखदायी कहानी सुनाई थी, क्या कोई ऐसी कहानी भी है जहां जागरूकता ने किसी की जिंदगी बदल दी है?
0: हाँ बिल्कुल है, और ये कहानी सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास के गांव में मेरी एक सहेली है रीना। कुछ साल पहले उसके इलाके में काला आजार के कई मामले सामने आए थे, जिससे गांव पूरा डरा हुआ था, लेकिन रीना ने डरने के बाय समझदारी दिखाई। उसने पहले से ही अपने घर की दीवारों को ठीक कराया, दरारें भरवाई और घर के आसपास साफ सफाई पर ध्यान देना शुरू किया। उसने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना शुरू किया और आशा दीदी की हर बात को ध्यान से सुना और अपनाया। एक दिन उसे भी हल्का बुखार आया। पहले तो वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन इस बार उसने देर नहीं की, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र गई, टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हंसते हुए मुझसे बोली, यार टीकन, इस बार मैं डरने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है और कहाँ जाना है। आज वही रीना अपने पूरे गांव में लोगों को समझाती है कि डरना नहीं बल्कि समय पर कदम उठाना है।
1: सच में ये तो असली बदलाव है जब एक व्यक्ति जागरूक होता है और पूरे गांव को जागरूक बना देता है।
0: बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी ताकत है, जागरूकता। याद रखिए, काला आजार खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर हम समय पर पहचान ले और इलाज करा ले तो इसे पूरी तरह हराया जा सकता है।
1: और यही सबसे बड़ा संदेश है आज के कार्यक्रम, समय पर जांच और सही इलाज आपकी जिंदगी बचाता है।
0: और साथ ही सही जानकारी अपनाइए, गलत कमियों से दूर रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक बनाइए।
1: तो दोस्तों, आज से ही एक कदम बढ़ाइए, अपने और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए जागरूक बनिए।
0: जागरूक बने,
1: सुरक्षित रहें और काला जार को मिलकर हराएं। तो इसी के साथ आज का शो समाप्त होता है, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं आज ये शपथ कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार श्रोताओं।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। श्रोताओं कहते हैं कि बच्चे की पहली नींव उसके शुरुआती 2 साल में पड़ती है। इसी दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग तेजी से बढ़ता है। अगर इस समय सही पोषण मिले तो बच्चों का भविष्य मजबूत बन सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि लोग समझ पाते कि बच्चे को कब, क्या और कितनी मात्रा में खिलाना चाहिए। बस यही उलझन दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं टीकन भाभी। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो सेहत सही लाभ कई में। भाभी, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब बच्चे को क्या खिलाएं और कितना खिलाएं। बहुत लोग तो यह सोचते हैं कि दूध ही काफी है, असल में सही तरीका क्या है?
2: देखिए, जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है उसी समय से उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी देना शुरू कर देना चाहिए। इसे ही हम ऊपरी आहार कहते हैं और ये सिलसिला लगभग 2 साल की उम्र तक चलता है।
1: मतलब दूध के साथ साथ अब खाना भी जरूरी ही हो जाता है?
2: हाँ बिल्कुल, बच्चा इस उम्र में तेजी से बढ़ता है, उसका शरीर मजबूत बने, दिमाग का विकास हो, इसके लिए सिर्फ दूध काफी नहीं है, अब उसे अलग अलग तरह का खाना चाहिए। दिन भर में कोशिश करें कि बच्चे को कई तरह का खाना खिलाए। जब खाने में विविधता होगी तभी बच्चे का विकास पूरी तरह से हो पाएगा।
1: अच्छा भाभी, तो बच्चे के खाने में क्या क्या देना चाहिए?
2: बच्चे के भोजन में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, इसके लिए दालें और अनाज सबसे पहले अच्छा विकल्प है। और जैसे ही मसूर या अरहर की दाल का पानी या बिल्कुल घुली हुई दालें, ये बच्चे को ताकत देगी और उसका शरीर स्वस्थ बनेगा। इसके साथ ही दूध और दूध से बने पदार्थ की भी बहुत अहमियत है, इससे बच्चे को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और वसा मिलती है। या फिर मूंग दाल की बिल्कुल पतली खिचड़ी, ये सब चीजें बच्चे की हड्डियों को मजबूत करती हैं। अब सब्जियों की बात करते हैं, गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां बच्चे को जरूरी खनिज और ताकत देती है, ये उनके स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी के फोलेट, कैल्शियम, अनाज, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, एनीमिया से बचने और शरीर के विकास में मदद करते हैं। अगर परिवार में अंडा और मांस खाया जाता है तो वो भी बच्चे को अंडे की जर्दी या हड्डियों का सूप दिया जा सकता है, ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर घर में मांसाहारी नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, बस दूध और दूध से बने पदार्थ की मात्रा थोड़ी बढ़ा दे। और हाँ, विटामिन ए के लिए पीले और नारंगी रंग के फल और सब्जियां बहुत जरूरी हैं, जैसे गाजर, पपीता या आम, ये बच्चे की आंखों की रोशनी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, इस सब को मसल कर बच्चे को दिया जा सकता है।
1: भाभी, बच्चे का खाना तो आपने साफ साफ समझा दिया, लेकिन क्या और कुछ खास बात का ध्यान रखना चाहिए?
2: बिल्कुल, सबसे पहले तो बच्चे को स्तनपान जरूर कराते रहना चाहिए, ये किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। दूसरा, बच्चे के खाने में हर दिन थोड़ा सा घी या तेल जरूर डालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इससे बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है और उसका शरीर चुस्त तंदुरुस्त रहता है।
1: भाभी, लोग ये समझ गए होंगे कि बच्चे को क्या क्या खिलाना चाहिए, लेकिन असली उलझन बची है कि कितने खिलाएं और कितनी बार खिलाएं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे को कितनी मात्रा में और कितनी बार खाना देना चाहिए। अगर मात्रा सही नहीं नहीं होगी तो बच्चा या तो भूखा रह जाएगा या फिर उसे खाना हजम करने में दिक्कत होगी।
1: हाँ भाभी, ये तो जरा विस्तार से समझाइए।
2: देखिए आरजे खुशी, जब बच्चा 6 से 8 महीने का होता है तो उसे आधी कटोरी खाना दिन में 2 बार देना चाहिए। ये कटोरी कोई बड़ी कटोरी नहीं बल्कि लगभग 250 ग्राम की होनी चाहिए। फिर जैसे ही बच्चा 9 से 11 महीने का हो जाए तो आधी कटोरी खाना दिन में 3 बार देनी चाहिए। इसके साथ 1-2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी दे सकते हैं। जब बच्चा 12 से 23 महीने का हो जाए तब उसका खाना भी बढ़ाना पड़ता है। इस उम्र में उसे पूरी कटोरी 3 बार देनी चाहिए, साथ ही 1 से 2 बार हल्का नाश्ता भी जरूरी है।
1: सीधी बात तो ये है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसके खाने की मात्रा और बराबर खिलाने का तरीका भी बढ़ना चाहिए।
2: बच्चे का शरीर और दिमाग इसी समय तेजी से विकसित होता है। अगर माता पिता भोजन का ध्यान रखें तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा और उसका भविष्य भी मजबूत बनेगा।
1: भाभी, एक बात मैं अक्सर देखती हूँ, कई बार माँ बच्चे को खिलाते वक्त खुद टीवी देखने लगती हैं या मोबाइल पर बात करने लगती हैं। कुछ तो उसके खेलते समय मुँह में खाना डाल देती हैं। क्या ये तरीका सही है?
2: नहीं आरजे खुशी, ये बिल्कुल गलत है। बच्चे को खिलाते समय माँ या जो भी खिला रहा है उसका पूरा ध्यान सिर्फ बच्चे पर होना चाहिए। बच्चा छोटा है, कभी गले में अटक सकता है, कभी खाना गिर सकता है, तो ऐसे में लापरवाही भारी पड़ सकती है।
1: हाँ, ये तो सही बात है। बहुत लोग तो बच्चे को अपने खाने की थाली से ही थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं।
2: ये भी ठीक नहीं है। बढ़ते बच्चों को उसका खाना हमेशा अलग कटोरी में और चम्मच से ही देना चाहिए। इससे साफ सफाई बनी रहती है और बच्चा धीरे धीरे खाने की आदत भी सीख लेता है।
1: भाभी, एक और समस्या है कि बच्चे को खुश करने के लिए कई बार लोग जूस, चॉकलेट, चिप्स या बिस्किट दे देते हैं। सोचते हैं कि बच्चा चुप हो जाए।
2: यही तो सबसे बड़ी गलती है आरजे खुशी। ये सब चीजें बच्चे के शरीर को कोई फायदा नहीं देती बल्कि नुकसान ही पहुंचाती हैं। बच्चे की छोटी सी भूख अगर ऐसे चीजों से भर गई तो असली पोषण खाना वो खा ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चे को इससे दूर ही रखना चाहिए।
1: और भाभी, क्या 6 से 23 माह के बच्चे के लिए भी स्तनपान जरूरी होता है?
2: हाँ बिल्कुल जरूरी होता है। लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जैसे ही बच्चा ऊपर का आहार खाने लगता है तो माँ को दूध देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। 6 महीने के बाद जब हम बच्चे को ऊपर का आहार देना शुरू करते हैं तब भी माँ का दूध उतना ही महत्वपूर्ण रहता है। माँ के दूध में ऐसे पोषण तत्व और एंटीबॉडी होती है जो बच्चे की सेहत को मजबूत बनाते हैं और उसे बीमारियों से बचाने की ताकत देते हैं। मतलब माँ का दूध बच्चे की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाकर उसे ठीक होने में मदद करता है।
1: भाभी, जब बच्चे की परवरिश की बात होती है तो अक्सर लोग माँ पर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन क्या बच्चे को संभालना सिर्फ माँ की ही जिम्मेदारी है?
2: नहीं आरजे खुशी, बच्चे की परवरिश पूरे घर की जिम्मेदारी है। खासकर पिता और दादी की खास भूमिका होती है। अगर ये दोनों सहयोग करें तो माँ का बोझ बहुत हल्का हो जाता है और बच्चा अच्छे से पल पाता है।
1: पिता की जिम्मेदारी क्या होती है?
2: देखिए, पिता की जिम्मेदारी है कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित करे और उसका साथ दे। पिता का बच्चे के साथ खेलना और देखभाल में सहयोग भी जरूरी है। जब माँ डॉक्टर के पास जाए या किसी सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा ले तो पिता को भी उसके साथ जाना चाहिए। इससे माँ को मानसिक सहारा मिलता है और पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में जो खाना बने उसमें बच्चे के लिए पोषण वाला सामान जरूरी हो, जैसे पीली दालें, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध और दूध से बने पदार्थ। अगर घर में मांस खाया जाता है तो अंडा और मांस भी बच्चे के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।
1: सही कहा भाभी। और दादी की क्या भूमिका होती है?
2: दादी को होना चाहिए कि वो माँ को स्तनपान कराने के लिए हमेशा प्रेरित करे। घर के छोटे मोटे काम जैसे खाना बनाना, चाय बनाना, बाजार से सामान लाना, ये सब अगर दादी कर ले तो माँ को बच्चे की देखभाल के लिए ज्यादा समय मिलता है। दादी बच्चे के साथ खेल सकती है और उसे दुलार सकती है ताकि माँ थोड़ी राहत पा सके।
3: भाभी, आपने पिता और दादी की जिम्मेदारी की बात की, लेकिन दादा का रोल भी तो घर में बहुत अहम होता है ना?
2: हाँ, दादा का रोल बहुत बड़ा होता है। वो अपने अनुभव से माँ और पिता दोनों को समझाते हैं कि बच्चे की देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब दादा बच्चे को गोद में लेते हैं, उससे बातें करते हैं या उसके साथ खेलते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है। दादा का दुलार बच्चे को सुरक्षा और अपनापन देता है। दादा घर के माहौल को भी सकारात्मक रखते हैं। अगर कभी माँ थक जाए या पिता उलझन में पड़ जाए तो दादा उसे समझाते हैं कि हिम्मत देते हैं। साथ ही साफ सफाई, समय पर टीके लगवाना और डॉक्टर की बात मानना जैसे बातें बार बार याद दिलाते हैं।
3: श्रोताओं, जैसे ही बच्चा 6 माह यानी 180 दिन का हो जाए तभी से उसके लिए माँ के दूध के साथ साथ घर का बना ताज़ा आहार देना शुरू कर देना है। यह क्रम 6 से 23 माह तक चलता रहे, यानी स्तनपान जारी रखें और साथ में ऊपरी आहार भी देते रहें। खाना हमेशा घर में ताज़ा बनाकर नरम और अच्छी तरह मसल कर ही दें। खिचड़ी, उबला हुआ आलू, अच्छी तरह पिसी दाल, पका हुआ गाजर, इन सबको मसल दें ताकि बच्चे को निगलने में दिक्कत ना हो।
2: बच्चे का हाइजीन बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे को खिलाएगा, खाने से पहले साबुन से हाथ धोए, सोच जाने के बाद खाना बनाने से पहले और बच्चे को खिलाने के बाद भी हाथ धोए। इससे पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन से दूर रहते हैं। बच्चे के लिए अलग कटोरी और चम्मच रखें, इसे शेयर ना करें। इससे सफाई रहती है और बच्चे को खाने की आदत भी ठीक बनती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिवार के हर सदस्य, माँ पिता, दादा दादी सब मिलकर बच्चे की देखभाल में सहयोग दे, तभी बच्चा तंदुरुस्त और खुशहाल रहेगा।
3: दोस्तों, याद रखिए कि सेहत सही होगी तो लाभ कई गुना होंगे। अगली बार हम फिर मिलेंगे बच्चों की सेहत से जुड़ी एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दीजिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत की शपथ लेकर जाएंगे।
2: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
3: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है।
2: स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
3: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
3: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत

0: आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, मैं हूं सुजाता स्मार्ट एनजीओ से। और मैं हूं इस समय परिवार कल्याण विभाग में, मेरे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, एडिशनल डायरेक्टर आरसीएच यूपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: धन्यवाद सुजाता जी, और मैं स्मार्ट एनजीओ का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आज इस रेडियो पे जितने भी हमारे श्रोतागण हमको सुन रहे हैं, क्योंकि आज उनको हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
0: सर, सबसे पहले तो हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि टीकाकरण क्या होता है और ये बच्चों और उनके परिवारों के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है।
1: देखिए, टीकाकरण बहुत ही जरूरी होता है और इसलिए भी जरूरी होता है कि माँ के पेट से जो हमारा जब बच्चा आता है तो उसके पास जो रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीन ऑफ होती है, यानी धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि माँ के पेट से जो मिलता है तो लगभग 3 से 6 महीने में धीरे धीरे वीन ऑफ हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी भी जरूरत होती हैं जिसमें जन्म के समय ही हमको बच्चों को देने की जरूरत पड़ती है टीकाओं को, उस पर हम लोग बाद में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जरूरी इसलिए भी है कि जब एक बार नए वातावरण में हमारा बच्चा आता है तो जब तक माँ के गर्भ में रहता है वो सुरक्षित रहता है माँ के अपने प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, और जब वातावरण में आता है तो आप देखिए ढेर सारी बीमारियां चारों तरफ वातावरण में फैली हुई हैं, तो उन बीमारियों से लड़ने के लिए जरूरी है।
0: सर, अगर हम भारत की बात करें तो बच्चों के लिए जन्म से लेकर शुरुआती वर्षों तक कौन कौन से जरूरी टीके लगाए जाते हैं?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और मैं इस सवाल के जवाब में ऐसा कहूंगा कि जैसे ही बच्चा हमारा जन्म लेता है, चाहे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर हो, जिला अस्पताल में हो, महिला हॉस्पिटल में हो, या फिर किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो, वहाँ जन्म के समय ही हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं या फिर हमारी एएनएम बहुएं हैं, उनको बच्चों को जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं। तत्पश्चात 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे पेंटावेलेंट की वैक्सीन लगाई जाती है, साथ में रोटा वायरस के लिए डायरिया से बचने के लिए हम लोग वैक्सीन पिलाते हैं, और उसके साथ साथ ओपीवी की वैक्सीन पिलाई जाती है। और इन बच्चों को हम फिर 10 सप्ताह पे 14 सप्ताह पे टीके लगाते हैं। 9 माह का पूरा होने पे हम बच्चों को मीजस और रूबेला से बचने के लिए एक टीका लगाते हैं, और साथ में आप जानते हैं पूरे पूर्वांचल में जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी काफी ज्यादा प्रचलित है, जो अब काफी कुछ कंट्रोल में आ गई है पिछले 6-7 सालों से, जो हम लोगों ने जेई का टीका लगाया जिसकी वजह से अब इनसे होने वाली मृत्यु दर बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनको भी लगाते हैं और साथ में विटामिन ए का हम लोग खुराक पिलाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्रैक्शनल आईपीवी लगाते हैं जो पोलियो से बचाव करता है। जब हमारा बच्चा 16 से 24 माह का हो जाता है तब हम लोग डीपीटी की प्रथम बूस्टर डोज देते हैं, और साथ में मीजल्स रूबेला का बूस्टर डोज और जेई की सेकेंड डोज दी जाती है। बच्चा हमारा जब 5 साल से 6 साल के बीच में आता है तो डीपीटी वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जाती है, और बच्चे को जब हमारा 10 साल के किशोर और किशोरियां और 16 साल के होते हैं तो TD10 और TD16 की वैक्सीन लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती माताओं को भी हम लोग टीडी का वैक्सीन लगाते हैं।
0: अच्छा, गर्भवती महिलाओं की अगर बात हो रही है तो उनके लिए ये टीका कितना जरूरी है, और गर्भावस्था के दौरान कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को?
1: देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो जो टीके लगाए जाते हैं के अतिरिक्त मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि गर्भावस्था के दौरान माँ को खून की जो कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, उसके लिए जो स्वास्थ्य विभाग मुफ्त में हम लोग आयरन फोलिक एसिड की गोलियां भी देते हैं गर्भवती माताओं के लिए, और साथ में कैल्शियम की गोलियां देती है। टीकों की बात करें तो टीडी का टीका हम लोग लगाते हैं गर्भवती माताओं को, इससे माताओं को भी डिप्थीरिया जो आजकल ऊपर के उम्र में देखी जा रही है डिप्थीरिया से बचाव होता है, और साथ में टिटनेस से बचाव होता है। और जरूरी इसलिए भी है कि ये केवल गर्भवती माताओं को नहीं बचाता, बल्कि इससे जो हमारी एंटीबॉडीज माताओं के शरीर में डेवलप होती हैं, तो जो बच्चा हमारा पैदा होता है तो उस बच्चे के शरीर में भी ये रोग से बचाव की क्षमता आ जाती है।
0: अच्छा, क्या माँ को लगने वाले टीकों का असर बच्चे की सुरक्षा पर भी पड़ता है? इसे हमारे श्रोताओं को थोड़ा आसान तरीके में समझाइए सर।
1: देखिए, इस सवाल का जवाब हमने पिछले सवाल में भी आपको दिया, और आसान तरीके से समझने की जरूरत है कि माँ से बच्चे के अंदर देखिए सारा सारा खून आता है, और उस खून जितना भी बच्चे के अंदर खून आता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, जो आपको रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, प्लस बच्चे को ऑक्सीजन दिलाता है। तो माँ को जो भी टीका लगाएंगे आप, उस टीके में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, वो बच्चों में आती है। तो आई थिंक वो बच्चा हमारा कुछ दिनों तक सुरक्षित रहता है। उसके लिए फिर जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो UIP के तहत हम उन बच्चों को अलग अलग उम्र में, जो भी हमने शुरू में जिक्र किया, उन टीकों को लगाना जरूरी है।
0: सर, कई बार बच्चे का टीका किसी कारण से छूट जाता है, ऐसे में परिवार क्या करे, क्या बाद में भी छूटा हुआ टीका लगवाया जा सकता है?
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। अगर आपसे शुरू में अगर टीका बच्चे को नहीं लगा पाते हैं तो हमको जरूरी है कि उस बच्चे को टीका जो भी उस उम्र के लिए ड्यू है उनको जरूर लगवा लेना चाहिए, ताकि बच्चों में रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो सके। और हर एक टीके का अपना एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के अतिरिक्त हर टीके का अपना एक डोज होता है जिसमें हम किस उम्र तक उन टीकों को लगा सकते हैं, ये हमारे पास नेशनल गाइडलाइन है, उस तहत लगाते हैं।
0: अच्छा, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर कौन कौन सी पहल चल रही है और हमारे श्रोता किस तरह इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: देखिए, भारत सरकार द्वारा टीकाकरण को लेके ऑलरेडी आप जानते हैं कि हम लोग जो टीका लगाते हैं और इस टीका को जो लगाते हैं उसके लिए जो इकाई है वो सब सेंटर है, यानी उपकेंद्र है, जहां पे एक एनम होती है। उसके अतिरिक्त कम से कम ये 5 से 6 हजार की आबादी पे एनम होती हैं और हर एक 1 हजार की आबादी पे हमारी आशाएं होती हैं जो मोबिलाइजेशन का काम करती हैं, और उसके अलावा आंगनबाड़ी हमारी वर्कर और आंगनबाड़ी सहायिकाएं होती हैं, वो भी 1000 की आबादी पर जो होती हैं जो मोबिलाइजेशन करने में सहयोग देती हैं। तो ये हम लोग जो इस तरह से उपकेंद्र वाइज एक माइक्रो प्लान बनाते हैं, उस माइक्रो प्लान को हम लोग ब्लॉक लेवल पे संकलित करते हैं और तत्पश्चात जिले लेवल का संकलन होता है। इस तरह से हमारी ये भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से टीकाकरण अभियान चलाती है। किंतु यहां मैं आपको बता दूं कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक और चीज चलाते हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है। शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रोजमर्रा के काम करने वाले मजदूर हैं, चूंकि हम जानते हैं, और प्लस उसके अलावा जो मेड्स वगैरह काम करती हैं, और इवन हमारे जो अपने एम्प्लॉयज हैं जो मंडे से लेकर सैटरडे तक आपके पास खाली नहीं रहते हैं, उनको हमने संडे की एक सुविधा दी है कि जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी क्षेत्रों में बने हुए प्लस जिला अस्पताल हैं, उनमें मंडे से लेकर संडे तक प्रत्येक दिन ये टीका लगाया जा सकता है जब भी हमारे अस्पताल खुले होते हैं। तो ये एक सुविधा हमने उत्तर प्रदेश में अलग से मुहैया कराई है।
0: बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। आगे हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि कुछ परिवारों में टीकों को लेकर डर या गलत फहमियां होती हैं, जैसे बुखार आ गया, बच्चा रोने लगा या कमजोरी लग रही है। क्या इसके अलावा भी कोई भ्रांतियां हैं जो सामने आई हैं? ऐसे मामलों में लोगों को क्या समझना चाहिए?
1: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अब मैं देख रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश का अपना डाटा कहता है, काफी लोग इस भ्रांतियों से ग्रसित हैं और ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको कोई समझाने का प्रयास नहीं किया गया या थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, इन लोगों में ये भ्रांतियां हैं। डेफिनेटली देखिए, अगर हम बच्चे को सुई लगा रहे हैं तो सुई का असर तो होगा, सुई लगेगा तो थोड़ा बहुत उस स्थान पे दर्द होगा, लालिमा आएगी, सूजन आएगा, हल्का फुल्का बुखार भी आ सकता है। तो इन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए, यही चीज हमें समझाने की जरूरत है। और सुई लगने के पश्चात जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है, उसमें शरीर के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं, उनका भी कभी कभी असर देखने को मिलता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। घर वालों की भ्रांतियां तो कई तरीके से हैं, लोग अलग अलग चीजों से मतलब हो जाते, जैसे कभी पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता था तो लोग कहते थे कि साहब नपुंसकता हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आज पोलियो ड्रॉप, हमने पोलियो से मुक्ति पा ली है। 1994-95 पहली बार हम लोगों ने एक नेशनल लेवल पे वाइड स्तर पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया था, सारे बच्चों को, आज उन बच्चों के यहां भी परिवार बने हुए हैं। तो इसलिए ये भ्रांतियों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर कहीं कोई भ्रांतियां हैं तो आपके समुदाय में प्रत्येक 1000 की आबादी पे हमारी आशा बहुएं हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं और सहायिकाएं हैं, उनसे आप लोग जरूर राय मशवरा कीजिए, और नहीं तो हर जगह टोल फ्री नंबर दिए होते हैं, उनमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं।
0: सर, आजकल HPV जैसे टीकों की भी चर्चा हो रही है, क्या आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि किशोरियों के लिए ऐसे टीकों का क्या महत्व है? क्या HPV टीकाकरण की आवश्यकता किशोरों में भी है?
1: HPV टीका इसलिए भी चर्चा हो रही है कि जो महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर होता है वो वन ऑफ द लीडिंग कॉज है महिलाओं में मृत्यु का। दूसरे नंबर पे ये कैंसर है जिसमें इतनी ज्यादा मृत्यु होती है, और इस मृत्यु का जो कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है वो HPV का इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन की ज्यादातर चीजें आपको पता नहीं चलती हैं कि कब ये इन्फेक्शन आपको हो गया, क्या इसके सिम्टम्स है, ज्यादातर ये साइलेंट रहता है और 10 से 15 सालों के बाद धीरे धीरे इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अब आप ये देखिए कि अगर हम किशोरियों को सही टाइम पे इस टीके को लगा देते हैं तो इस इन्फेक्शन से बचाव होता है, अल्टीमेटली हम इस कैंसर से हम इस बच्चियों को बचा सकते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि क्या हम किशोर को भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। किशोरों में भी इस तरह की बीमारियां होती हैं जिनमें HPV वैक्सीन का बचाव होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये चीजें लिमिट करनी पड़ेंगी जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, और आने वाले दिनों में हो सकता है भारत सरकार इस पे सोचेगी तो हम किशोरों को भी ये टीका दे पाएंगे। अभी हमारा प्राइम लक्ष्य जो हमारे पास जो गाइडलाइन है, नेशनल गाइडलाइन, ये कहती है जो भी हमारी बच्चियां हैं 14 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हैं और 15 से छोटी हैं, उनको हम एक डोज का टीका लगा रहे हैं और ये उनको लाइफ लाइन इम्यूनिटी देगा। और ये पूरे भारतवर्ष में ये टीके को लॉन्च 28 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है।
0: सर, दूर दराज या कमजोर पहुंच वाले इलाकों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है और विभाग इसे कैसे संभालता है?
1: देखिए, अब ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया। हमारे पास मैपिंग है, हर जनपद में ब्लॉक लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे हम चिन्हित हैं कि कोई अगर स्लम एरिया है वो चिन्हित है, जितने ईंट भट्टे हैं वो चिन्हित है, कोई नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा वो चिन्हित है, और लगभग हर 3 से 6 महीने पे हम अपने इस माइक्रो प्लान को रिवाइज करते हैं। इन जगहों पे जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनका हमने माइक्रो प्लान बना रखा है और इनमें नियत दिवसों में हमारी एनएम बहन जी जाती हैं और जाके वो टीका लगाती हैं। कुछ ऐसे दूर दराज इलाके हैं, उनके लिए हम लोगों ने मोबाइल टीम की व्यवस्था कर रखी है और ये मोबाइल टीमें जाती हैं पर्टिकुलर डेज पे, और ऑलरेडी इसकी सूचना हम पहले से उन जगहों पे रहने वाले निवासियों को दे चुके होते हैं, और इसलिए इस टीकों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सम्मिलित किए हुए हैं। अब कोई चुनौती नहीं रह गया ये हमारे लिए।
0: क्या सिर्फ बच्चों का टीकाकरण काफी है या परिवार के बाकी सदस्यों जैसे किशोरियों, गर्भवती महिलाओं का भी समय पर टीकाकरण जरूरी है?
1: देखिए, इसके बारे में अभी हम लोगों ने शुरू में मैंने चर्चा करके बताया, आपने देखा कि जो नेशनल हमारा शेड्यूल है उसके अंदर जन्म से लेके 16 वर्ष तक के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, जिसमें आपने फिर से एक बार दोहरा दूं मैं अब दर्शकों के लिए, जन्म के समय टीका लगाते हैं, फिर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 14 सप्ताह पे टीका लगता है, फिर 9 महीने से लेके 12 महीने तक के बच्चों को टीका लगता है, ये एक ड्यूरेशन होता है, इस बीच में कभी भी आप टीका लगा सकते हैं, 16 से 24 माह के बीच में हम टीका लगाते हैं, 5 से 6 वर्ष के बीच में लगाते हैं, 10 वर्ष के और 16 वर्ष के किशोर किशोरियों को टीका लगाते हैं और गर्भवती माताओं को टीका लगाते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है।
0: आखिर में उन माता पिता और परिवारों के लिए आपका सबसे जरूरी संदेश क्या होगा जो किसी की कारण से अभी भी टीकाकरण को लेकर असमंजस में है?
1: देखिए, अब अपनी बात को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर से स्मार्ट एनजीओ का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरा आखिरी संदेश यह है कि बिना किसी संशय के आप टीकों पे विश्वास कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी संशय है तो आप अपने क्षेत्र में कार्य करने वाली आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, एनएम बहन जी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, या उपलब्ध आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे मेडिकल अफसर से आप बात करिए और अपने संशय को दूर करिए। बच्चों के लिए टीका बहुत जरूरी है क्योंकि ये टीका बच्चों में होने वाली मृत्यु को आधी से ज्यादा कम कर देता है। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है, और फिर हम बिना जाने अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या दूसरों से तुम हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है? तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं?
3: मैं आरजे रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में उसने तुमसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? और बड़े होते होते तुलना बदल जाती, तनख्वाह, गाड़ी, घर, रहन सहन, शादी, बच्चे और आजकल सामाजिक माध्यमों पर दिखाई जाने वाली जिंदगी, मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई ना कोई तुलना हमारा इंतजार कर रही होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, यानी कि ये मेहनत पर निर्भर करता है। आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों को बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करे, खुद पर ज्यादा काम करे। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना उतना ही आपको टेंशन होएगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
2: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये तुलना मानसिक दबाव बन जाती है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन सोच बदल देता है। प्रेरणा कहती है मैं भी कोशिश करूंगी, और तुलना कहती है मैं उसके जैसी क्यों नहीं। बस सोच का यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी भावना बदल देता है। तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से और कनेक्ट हो गए श्रोताओं आप सभी के बीच। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और हम शो कर रहे हैं यानी कि सोच बदलो। मोस्टली आप सभी आनंद को सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलो में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की पूरी कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसा कि मैंने आप सभी को बताई है श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो लाइक हमारी, हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती है, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं। राइट ना?
0: बिल्कुल।
1: तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: ऐसा नहीं होता है,
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: उसने कितनी स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है यार, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि कभी, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है? हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी का 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे हैं, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

0: हाँ जी, एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोता। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए, सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम पीछे हैं, तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करें, आगे बढ़े, सबसे बातें करें। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़की की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया, हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो। बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में, आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है, लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को दो, वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे, हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है, यार मैं अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाहिए, अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है, क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था, लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहाँ करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए, उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना, पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना तो पूरा कायनात भी ये क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं, तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लाइक जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है, तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, ताकि आगे चलकर वो और भी अच्छा करें, क्यों। और दोस्तों, अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों, आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ, क्या मैंने आज कुछ नया सीखा, क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की, क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूँ। अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों, इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं।

मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटे वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दे।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
3: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी रेडियो की जुबानी। नई

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी खुशी। आप सुन रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम बात करते हैं उस मिट्टी की जो परंपरा में भी आगे है और विकास में भी सबसे आगे है। और मेरे साथ,
1: और आज का हमारा सफर है स्वादों की नगरी, आध्यात्मिक की धरती और संस्कृति की धड़कन काशी की ओर।
0: आज हम जानेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार की एक जनपद एक व्यंजन योजना बनारस के पारंपरिक स्वादों को लोकल से ग्लोबल बना रही है।
1: तो तैयार हो जाइए काशी के जायकों, कहानियों और संस्कृति से भरे इस खास सफर के लिए,
0: क्योंकि यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।

0: जहाँ सुबह गंगा के घाटों पर उतरती है और गलियों में कचौड़ियों की खुशबू बहती है, वो शहर है बनारस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी, और हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस शहर में जहाँ स्वाद सिर्फ जुबान पर नहीं दिलों में उतरता है।
1: और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना। अरे भैया, ये वो शहर है जहाँ सुबह अलार्म से नहीं गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू से खुलती है।
0: वाह क्या बात, काशी की गलियों में सुबह सुबह छनछनाती कचौड़ियाँ, जलेबी की मिठास, पान की गुलियाँ और ठंडाई की ठाट सब मिलकर ऐसे एहसास देते हैं जैसे पूरा शहर स्वाद की कविता लिख रहा हो।
1: और अब यही है स्वाद लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। योगी सरकार की एक जनपद एक व्यंजन यानी ODOC योजना के तहत काशी पारंपरिक व्यंजनों को नई पहचान मिल रही है।
0: ये सिर्फ आर्थिक

0: नहीं उफ।
1: अरे भैया, साथ में गर्मा गर्म जलेबी हो जाए तो फिर बनारस की सुबह सफल है।
2: सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि फास्ट फूड के दौर में भी बनारसी कचौड़ी ने अपना परंपरागत स्वाद बरकरार रखा है। पीढ़ियों से लोग इसी कारोबार से जुड़े हैं
1: और अब ODCO योजना के तहत इस दुकानदारों को आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की मदद मिलेगी ताकि बनारसी कचौड़ी का स्वाद दुनिया तक पहुंचे।
3: हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और हम यहाँ के मैनेजर बानी। हम योगी जी के ये पहल से बड़ा खुश बानी और कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी के करतनी जो उनकी पहल एक जनपद एक व्यंजन बहुत ही बढ़िया है। इससे जैसे हमन के व्यापारी गण बाणी तो बहुत हमन के भी फायदा बा और जौन हमारी जनता आवतिया वह लोगन के बहुत जौन बा।
2: दोस्तों, योगी सरकार की ODOC पहल सिर्फ बनारस के स्वादों को पहचान दिलाने की योजना नहीं है बल्कि उन हजारों परिवार के सपनों को नई उड़ान देने का अभियान भी है जो पीढ़ियों से इन पारंपरिक व्यंजनों को जीवित रखे हुए हैं।
1: बिल्कुल, सोचिए जो कारीगर, हलवाई, पान व्यवसायी और छोटे उद्यमी वर्षों से अपने हुनर के दम पर बनारस की पहचान बनाए हुए हैं, सरकार की योजनाओं का भी मजबूत सहारा मिल रहा है।
2: ODOC के माध्यम से पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को परीक्षण, कुशल विकास, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।
1: इतना ही नहीं, विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से ऋण सुविधाओं, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार के अवसर तक उनकी पहुंच को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि छोटे कारोबार बड़े उद्यमों में बदल सके।
2: सरकार की सोच साफ है, स्थानीय स्वाद को व्यावसायिक बाजार तक पहुंचाना और स्थानीय लोगों की आय को बढ़ावा देना।
1: यही कारण है कि अब बनारसी कचौड़ी, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, लौंग लता, मलियो और बनारसी पान जैसी व्यंजनों आकर्षक पैकेजिंग, आधुनिक ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ा जा रहा है।
2: पर्यटन मेलों, खाद उत्सवों और बड़े आयोजनों में भी इन पारंपरिक व्यंजनों को विशेष स्थान दिया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटक काशी के स्वाद से रूबरू हो सके।
1: इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानों, मिठाई निर्माताओं, पान व्यवसायियों, उद्योग उत्पादकों, किसानों और छोटे व्यापारियों तक पहुंचेगा।
2: यानी ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों का विकास नहीं कर रही बल्कि पूरी संस्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रही है
1: और यही तो योगी सरकार की विकास परक सोच की खासियत है। विरासत की सुरक्षा रहे, रोजगार भी बढ़े और काशी के स्वाद की महक दुनिया भर में पहुंचे।
2: सचमुच अब वह दिन दूर नहीं जब बनारस की गलियों में जन्मे ये पारंपरिक स्वाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
1: अब बात करते हैं बनारस की शान ठंडाई की।
2: अरे बनारस और ठंडाई जैसे गंगा और घाट, यहाँ साल भर ठंडाई पी जाती है लेकिन होली पर इसकी बात ही अलग होती है।
1: पक्के महल की गलियों में जब सिल पर काली मिर्च, बादाम, पिस्ता और इलायची पीसी जाती हैं, तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को बनारसी बना देती है।
2: ठंडाई बनाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं। रात भर भीगी बादाम, पिस्ता, गुलकंद, केसर, गुलाब जल, फिर सबको पीस कर दूध में मिलाना और आखिर में कपड़े से छान कर मलाई के साथ परोसना। आजकल तो मूंगी, चॉकलेट और रोज फ्लेवर तक आ गए हैं लेकिन असली बनारसी ठंडाई वही है जिसमें मिट्टी, महक और बनारस का दिल हो। दोस्तों, अब जिस मिठाई की बात होने जा रही है वो सिर्फ स्वाद नहीं, इतिहास भी है।
1: जी हाँ, तिरंगा बर्फी जिसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई।
2: जब अंग्रेजों ने तिरंगा झंडे पर रोक लगाई थी तब बनारस के हलवाइयों ने तिरंगे जैसी मिठाई बनाकर लोगों में देशभक्ति का जोश जगाया था।
1: सोचिए, मिठाई भी आंदोलन का हथियार बन सकती है।
2: हरे रंग के लिए पिस्ता, सफेद के लिए बादाम और केसरिया रंग के लिए केसर। खोई से बनी ये मिठाई सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक भी है
1: और अब इसे GI टैग भी मिल चुका है, यानी इसकी पहचान अब आधारिक रूप से बनारस से जुड़ गई है।
2: राष्ट्रीय पर्वों पर इसकी मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों पर लंबी कतारें लग जाती हैं।
1: अब बारी उस मिठाई की जिसका नाम भी अनोखा और स्वाद भी लौंग लता।
2: वाह, मैदे की कुरकुरी परत, अंदर खोया और मेवे का भरपूर

0: मिश्रण, ऊपर से लौंग की खूबसूरत सजावट और फिर मीठी चाशनी में डुबोकर तैयार होती है लौंग लता।
1: इसका हर निवाला ऐसा लगता है जैसे मिठास का कोई त्योहार मनाया जा रहा हो।
0: पहले इसका आकार बड़ा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसे छोटा और सुविधाजनक बना दिया गया है ताकि लोग आसानी से खा सकें और साथ ले जा सकें।
1: शाम के समय बनारस की मिठाई की दुकानों में गरम समोसे और लौंग लता की जोड़ी बस दिल खुश कर देती है।
0: अगर बनारस आए और कुल्हड़ वाली लस्सी ना पिए तो समझिए यात्रा अधूरी है।
1: बिल्कुल, ताजे दही को मथनी से खूब फेटा जाता है, फिर उसे हल्की मिठास, बर्फ और ऊपर मलाई की मोटी परत
0: और कुल्हड़ की सौंधी खुशबू, वाह जैसे खुद स्वाद बन गई हो। ये सिर्फ पिए नहीं, गर्मी से राहत देने वाला बनारस की पहचान है।
1: अब बात उस चीज की जिसके बिना बनारस की पहचान अधूरी है।
0: जी हाँ, बनारसी पान।
1: और भाई, यहाँ पान खाया नहीं जाता, पान जमाया जाता है।
0: ताजे महकते पत्ते, कथा, चूना, गुलकंद, सौंफ, इलायची, नारियल बारूदा और फिर प्यार से तैयार की गई ग्लोरी।
1: साधारण पान से लेकर शाही पान तक हर स्वाद का अपना फैन क्लब है।
0: हिंदी फिल्मों और गीता में भी बनारसी पान को दुनिया भर में मशहूर कर दिया और इसी सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इसे GI टैग भी मिला है।
1: बनारस में पान सिर्फ स्वाद नहीं, मेहमान नवाजी और अपनापन है।
0: अब हम बात करेंगे उस मिठाई की जो सिर्फ सर्दियों में मिलती है और मुंह में जाते ही गायब हो जाती है।
1: मलाई और काशी की बेहद खास और पारंपरिक मौसमी मिठाई।
0: इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं। दूध को उबालकर पूरी रात खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि ओस की नमी उसमें उतर जाए।
1: सुबह उठते मथकर झाग निकाला जाता है, फिर उसमें केसर, इलायची और पिस्ता बादाम मिलाए जाते हैं।
0: इतनी हल्की कि मुंह में रखते ही घुल जाए, यही वजह है इसे बादलों की मिठास भी कहा जाता है।
1: और खास बात, ये सिर्फ सुबह घंटों तक ही मिलती है, देर हुई तो मलाई खत्म।
0: काशी के इन व्यंजनों में सिर्फ स्वाद नहीं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पीढ़ियों की मेहनत छिपी है।
1: और अब एक जनपद एक व्यंजन योजना इस स्वादों को वैश्विक मंच देने जा रही है।
0: इसके तहत पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आकर्षक पैकेजिंग और प्रभावी मार्केटिंग पर काम किया जा रहा है।
1: सबसे अहम बात गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी उत्पादकों को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित किया जाएगा।
0: यानी अब बनारस का स्वाद सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगा।
1: और इसे स्थायी रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक को नया आयाम मिलेगा और बनारसी कारीगरों की मेहनत को वैश्विक पहचान मिलेगी।
0: तो दोस्तों, आज की इस स्वाद भरी यात्रा में हमने जाना कि काशी सिर्फ मंदिरों और घाटों की नगरी नहीं बल्कि भारत की पाक विरासत का धड़कता हुआ दिल है।
1: यहाँ की कचौड़ी में सुबह की रौनक है, ठंडाई में त्योहारों की मस्ती, पान में अपनापन और मलाइयों में मौसम का जादू।
0: जब ये स्वाद दुनिया तक पहुँचेगा तब सिर्फ व्यापार नहीं होगा बल्कि भारत की संस्कृति का वैश्विक उत्सव होगा।
1: तो अगली बार बनारस जाए तो सिर्फ घूमिए मत, बनारस को चखिए भी।
0: नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए सफर, नए स्वाद और नई कहानी के साथ।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली हमारी डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो सबसे
0: सही।
1: बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही का
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
1: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही सर, और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
1: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
0: बिल्कुल सर, तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
1: देखिए आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात जो अदालत ने जो बात कह दी आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
0: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
1: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
0: सुना सकती है। बिल्कुल,
1: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकते। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है भारत में, कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है। इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ बोलती है, फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो होता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
0: या नहीं है।
1: हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
0: अंत में सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
1: देखिए, कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
1: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानत उपाधि मिली हुई
2: है। वैसे
1: एक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और अभी नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
0: एलएलएम तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
2: देखिए
1: बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा
2: खुद का ड्रीम था,
1: हाँ मुझे एमकॉम करना है उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
0: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
1: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
0: ओके।
1: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
0: बिल्कुल क्या
1: क्योंकि
0: बात
1: इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
0: बिल्कुल।
1: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा और मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
0: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
1: बस एक एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
0: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
1: मिलती है। और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
1: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना है सुबह शाम।
0: बिल्कुल।
1: तो बस यही लाइफ है
0: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
1: बिल्कुल। किताबें ही आपकी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुँच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
4: Headline inflation has edged up.
3: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
4: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
4: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर
3: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
4: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
5: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
6: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरे ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मानसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
7: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के 7 अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, आज शो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिनकी आंखों में एक अलग ही चमक है, जिनकी हंसी में कोई बनावट नहीं है और जिनका अभिनय सीधे दिल में उतर जाता है।

0: 1974 को मुंबई में एक मशहूर फिल्मी परिवार में जन्मी काजोल के डीएनए में ही सिनेमा है। पिता सोमू मुखर्जी एक मशहूर फिल्म मेकर थे और माँ तनुजा अपने ज़माने की शानदार अभिनेत्री। इतना ही नहीं, काजोल की नानी शोभना समर्थ और मौसी नूतन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं। कज़न भाई मोनीश बहल और कज़न बहन रानी मुखर्जी तक काजोल की फैमिली में ही एक्टिंग बसी हुई है। काजोल की सगी छोटी बहन तनीषा भी एक्ट्रेस है। काजोल ने शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ गवर्नमेंट स्कूल पंचगनी से की। पढ़ाई के साथ इन्होंने डांस करना बहुत पसंद था। माँ तनुजा चाहती थी कि काजोल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। आपने ट्यूनिंग किया है एफएम मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम आरजे आनंद है और वैसे तो इस प्रोग्राम में सच बता रहा हूँ मेरी एंट्री होना बिल्कुल पूरी तरह बैन है, निषेध है मेरा आना, लेकिन मैं जबरदस्ती घुस गया हूँ। आज प्रोग्राम का नाम है महिला मंच, इसमें खुशी और रीना आपको मिलती है। लेकिन आज मुझे बहुत सारी महिलाओं ने कहा बेटा आप चलो हमारे साथ, आज तुम्हें नई नई जानकारियां देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जितने भी पुरुष लोग सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है महिला मंच है तो यहाँ पुरुषों का काम नहीं है। भाई पुरुष और महिला से ही एक समाज बनता है, तो जितनी इंपॉर्टेंट पुरुष है उतनी इंपॉर्टेंट महिला भी है और जितनी महिलाएं हैं उतनी पुरुष हैं। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी होस्ट है रीना। हाय रीना, वेलकम। कैसा लग रहा है महिला मंच पे पुरुष मंच को खड़ा करके?
3: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने बोला भी था तुम्हें कि भाई आ जाओ,
1: हाँ
3: महिला मंच में तुम भी शामिल हो जाओ, फाइनली तुम आज हो गए।
1: गाइस मैं महिला मंच में शामिल हुआ, महिला मंडली में शामिल नहीं हुआ, इफ यू डोंट माइंड। और आज मजे की बात है कि महिला मंच में एक बहुत ही खूबसूरत महिला को हमें आमंत्रित किया है स्टूडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की महिला ना किसी से कम नहीं है। क्यों रीना? आज की लड़कियां हो गई, महिलाएं हो गई, जो घर में पहले हमें लगता था सिर्फ हमारी मम्मी घर तक ही सीमित है, अब वो घर से रील बना बना के भी फेमस हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। स्टोरी लगा लगा के फेमस
3: हर के काम से लेकर ऑफिस तक
1: सब चीज मैनेज कर रही है हमारी मम्मी। तो अब हमारी मम्मी सिर्फ होम मेकर नहीं बची है और इसी बात पे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान मम्मी को इन्वाइट किया है, मैं तो यही कहना चाहूंगा उनको। आज महिला मंच में हमारे साथ कुमकुम भी है। हेलो, हाउ आर यू?
4: मैं
1: बहुत ही
4: कि मैं भी आती हूँ खुशी दी और रीना दी के साथ। हाँ, महिला हाँ, मंच
1: मुझे मैं महिला मंच में बहुत कम आता हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। तो आपने पूछा आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो मैं बहुत भूखा हूँ खाने का। गाइस अभी जाके खाना खाऊंगा और जो हमारी गेस्ट हैं उनको वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं? वेलकम टू एफएम मुरादाबाद एंड दिस इज महिला मंच ब्रांड न्यू शो, आपका स्वागत है।
5: मैं शैले सिंह मुरादाबाद से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस शो में आके। और
1: अरे वाह क्या बात है, और बिल्कुल होनी चाहिए। मुझे लगता है शैली जी एक महिला होने के नाते ही अपने आप में एक बहुत गर्व का मोमेंट होता है कि जब आप कुछ अच्छा करके आ रहे हो, कुछ बड़ा करके आ रहे हो, तो ये आपके लिए और भी बढ़िया होता है। क्यों रीना? जैसे कि आज जो शैली जी हमारे साथ मौजूद है वो सिर्फ शैली नहीं है, उनके काम भी बिल्कुल सराहनीय है, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आई है वो, तभी आज स्टूडियो में आपके बीच में हमने उनको आमंत्रित किया है। थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारी महिलाओं को जो लोग सुन रहे हैं।
5: मैं शैली सिंह, मैं प्रिंसिपल रही हूँ RSM पब्लिक स्कूल छजलैट। मैं जिम ट्रेनर भी हूँ, योगा मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, योगा जिम ये सारी चीजें।
1: तो कहना कि योगा में रुचि भी है आपकी, योगा टीचर भी आप बन रही
5: हैं? मदान, मैं उनके स्टूडेंट हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। रिसेंटली आई थी रुचि जी वैसे हमारे स्टूडियो में, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आपने बताया प्रिंसिपल भी?
5: हाँ प्रिंसिपल RSM पब्लिक स्कूल छजलैट।
1: ओके, छजलैट में आप वर्किंग है। मैम इतने सारा काम कैसे कर लेती हो आप?
5: मैं बस कहते ना महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं से आप नौ दुर्गों में जो पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? शक्ति के लिए करते हैं। और शक्ति क्या है? हम ही धन भी हम है, विद्या भी हम है,
1: सही बात,
5: सब
1: है
5: कुछ हम।
1: मुझे लगता है अगर देखा जाए ना तो हमारे आसपास की चीजें है ना वो सब भगवान देवियों से जुड़ी है। धन की देवी लक्ष्मी है, ज्ञान की देवी सरस्वती जी है, शक्ति की देवी माँ दुर्गा है, काली देवी सर्वनाश करने
5: जब
1: वाली
5: हम ही
1: है,
5: वो
3: अन्न की देवी अन्नपूर्णा है।
1: हाँ तो मतलब हर माँ गंगा जो जिसमें हम नहाते धोते हैं वो गंगा मैया है, वो भी गंगा माँ है, तो सारी नारियों से ही हमारा जो है सजा हुआ है पूरा संसार,
5: और जिसके माध्यम से हम आते हैं वो भी नारी।
1: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुझे लगता है कि आज जो है नारियों के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है, और इस प्रोग्राम में हमने मैम को इनवाइट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, और मुझे लगता है महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन भी है, और इसके अलावा वो गाड़ियों में रील भी बनाती है बैठ के, वो बात तो बहुत अलग है क्योंकि वो भी उनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहना चाहिए। वो इतनी एक्टिव है कि लोग गाड़ी चलाएं बट वो रील भी बना लेती है, वैसे ये बहुत रिस्की भी होता है, आप कैसे करती हो ये?
5: नहीं, अपने अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टैलेंटेड है कि वो गाड़ी चलाने के साथ साथ आप बीच बीच में आपको एक्सप्रेशन भी देते जाएं।
1: वो तो आप जबरदस्ती उनको बीच में ऐड कर लेते हो कि आओ ना,
5: ये तो शक्ति है कि आप उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि नहीं, कि आपकी तरफ नहीं, मेरे को पहले एक्सप्रेशन दो, बाद में चलाओ।
1: क्या बात है,

0: नहीं, अच्छा हम बात कर लेते हैं अब महिलाओं के बारे में। जैसे शैली जी आप बहुत सारा काम करती हैं और ऐसे आपकी जैसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं लेकिन वो बस सोचती हैं, कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को करने के लिए एक कदम का आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव स्टेप लेना बहुत जरूरी है। तो आपको कैसे आया ये और जो लोग आपको सुन रहे हैं ताकि उनको भी ये चीज आए कि वो भी शुरुआत करें।
1: देखिए आजकल की अगर हम बात करते हैं कि महिला इतनी कमजोर है तो आज की महिला तो नहीं।
0: करेक्ट,
1: ये 90s के दौर की जब हमारी मम्मियां थी तब की बात है ये कि उनको बहुत कुछ सोचना पड़ता था।
0: करेक्ट,
1: अपने लिए एक साड़ी लाने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ता था कि मैं इस फंक्शन में यही पुरानी वाली पहन लेती हूँ। आजकल की लेडीज सशक्त हो चुकी हैं, वो समझ चुकी हैं अपनी प्रायोरिटीज कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। वो सेल्फ डिपेंड भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं और वर्किंग भी हैं, घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं। उन्हें ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है। लेकिन जो पहले की हमारी मम्मी लोग होते थे उनके लिए उनका दायरा इतना सीमित होता था कि वो घर और बस बच्चे और उनका पति और ससुराल मायका, उनका दायरा बस यहीं तक था। वो अपनी जो फीलिंग्स होती थी ना वो भी घर में शेयर नहीं कर पाती थी, उनके लिए भी उनको कोई नहीं मिलता था कि वो अपनी फीलिंग्स भी किसी को कभी शेयर कर पाए।
0: करेक्ट, बिल्कुल। तो मतलब ये आपने बिल्कुल सही कहा, आज की नारी जो है किसी से कम नहीं है। क्यों रीना, ये बिल्कुल बात सही
2: कह रही है।
0: लेकिन मुझे लगता है कि आज भी ऐसी बहुत सारी लेडीज हैं जो इन बातों को बहुत फॉलो करती हैं और उनके फैमिली में एक रिचुअल्स बना आया है कि भाई वो शादी के बाद कुछ नहीं करेंगे या नहीं करने देंगे, मतलब ऐसा भी
2: अभी भी बहुत ऐसी फैमिली
1: ऐसी है। लेकिन उनको ऊपर ये प्रेशर है कि ये हमारे संस्कार है, इन्हें ही आपको आगे
0: मेंटेन करना है।
1: लेकिन संस्कारों को भी मेंटेन करने के साथ साथ भी आप अपने आप को ग्रो अप कर सकते हो,
0: करेक्ट,
1: कॉन्फिडेंट बन सकते हो, ये नहीं बताते हैं।
0: लेकिन मुझे ऐसा लगता है शाली जी आप जो कर रही है ना ये एक तो मोटिवेशन है ही और महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन भी दे रहा है ये चीज, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग बना रहा है ना।
1: फाइनेंशियल स्ट्रांग बना रहा
0: है। आने वाला टाइम देखिए आप कितना महंगा हो रहा है, आजकल कितनी सारी शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है मार्केट के अंदर, आपको बच्चों को भी अच्छे स्कूल देने हैं, अच्छी उनकी चीजों का भी ध्यान रखना है, तो इसके लिए भी तो करना पड़ेगा ना महिलाओं को भी।
1: बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मैं पुरुषों का सहयोग चाहूंगी कि वो घर में रह करके उनसे जो भी बन पड़ता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरी टाइम आप घर में रह के उनका घर के कामों में सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं उनको हेल्थ को लेकर के कि आप कुछ अपने लिए, पहले तो सबसे पहले हेल्थ है हमारी। आप अगर महिला अगर घर की स्वस्थ है तो वो सबका ध्यान रख पाएगी। अगर एक दिन आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या सिस्टर बीमार पड़ जाती है ना, अस्त व्यस्त हो जाता है,
0: बिल्कुल सही कहा,
1: वो कहानी बिगड़ जाती है घर की। लेकिन सबसे पहला हमारा है कि उनको स्वस्थ रहने पे उनके टाइम से नाश्ता करें, टाइम से खाना खाएं, उनसे भी पूछें आज का तुम्हारा दिन कैसा रहा। ये केवल पत्नियों का ही नहीं बन रहा है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन भी कैसा रहा, तुमने आज क्या सोचा, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ये चीज है।
0: तो मतलब दोनों चीजों को मेंटेन करके चलना है।
1: हाँ जी,
0: करेक्ट, बहुत अच्छा बोला आपने। और कुमकुम तुम क्या कहना चाहते हो?
3: मैं भी यही कहना चाहूंगी जैसे कि मैम ने अभी बताया, संस्कार और रीति रिवाज के साथ जो हस्बैंड कहते हैं ना कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, ये हमारी रीति रिवाज है, रिचुअल्स हैं, आगे नहीं करना हमारी फीमेल्स को, उस नाम पे ना उसको रोक दिया जाता है।
0: करेक्ट,
3: लेकिन हमें ना उन चीजों को वहां तक सीमित नहीं रख के उस सबके साथ साथ अपनी फीमेल को, मतलब अपने पार्टनर को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी भी उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनके साथ उनको मेंटली हेल्थ भी ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ इनका मेंटल हेल्थ भी अगर ठीक है ना तो वो हैप्पी रहेंगी, और जब वो हैप्पी रहेंगी तो उनका स्वास्थ्य तो वैसे ही ठीक हो जाएगा।

0: दोस्तों बिल्कुल, देखिए एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि लेडीज के साथ साथ ना हम पुरुषों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब तक हम चीजों को सपोर्ट नहीं करेंगे उनको पुश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि चीजें अच्छे लेवल पे जा सकती है ना। जैसे आज ही मैं राजमा चावल बनाना सीख के आया हूँ भाई, कल मेरी शादी होगी तो मेरी बीबी को कुछ तो रिलैक्स मिलेगा भाई। अगर वो अपने घर चली जाएगी तो मुझे होटल का वेट नहीं करना पड़ेगा। शैली जी,
1: तो ये तो एक बड़ी एक सबसे बड़ा मिथ लगता है मुझे कि सिर्फ महिलाएं ही खाना बनाती हैं। आप रेस्टोरेंट्स में देख लो, होटल्स में देख लो,
0: मेल खाना बना
1: शेफ कौन है? आप फीमेल शेफ बहुत ही कम
2: पुरुष
1: मिलेंगे नहीं।
0: तो फिर ये समाज में क्यों है कि
1: आप घर में हलवाई बुलाओगे कोई लेडीज नहीं आएगी, पुरुष ही आ रहा है।
0: हाँ।
1: वो ये केवल घर का ही चल रहा है कि आप ही को खाना बनाना है, आप ही को ये करना है।
3: ये तो ना हमारे कुकिंग वर्ड में ही डिफाइन कर रहा है, कुकिंग। यहाँ किंग की बात हो रही है, क्वीन की बात नहीं हो रही।
0: करेक्ट,
1: बिल्कुल सही बात है।
2: तो वो तो बिल्कुल सही कहा तुमने।
0: तो जितने भी जैन से वो किंग बन जाए, कुकिंग करने के साथ साथ कुकिंग करें।
1: नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुकिंग करें।
0: हाँ।
1: लेकिन अगर आपकी वाइफ बीमार है, आपकी मदर बीमार है, तो आपको इतना आना चाहिए कि आप 3-4 दिनों में उनका ध्यान रख पाए, उन्हें जैसे वो पहले थी वैसे ही उन्हें फिर से खड़ा कर पाए, उनका सपोर्ट कर पाए। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सुबह खाना बनाए बिल्कुल ऐसे कि आप बिल्कुल जॉब पे छोड़ दें, या देखिए जेंट्स के बस की बात नहीं है। जितना एक लेडीज संभाल लेती है ना घर बाहर दोनों, सोसाइटी वगैरह सब, वो उसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ संभाल नहीं पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: क्या बात है गाइस, आज महिला मंच में मैं बिल्कुल सीख के जाने वाला हूँ। बहुत सारी तैयारियां मेरे साथ हो रही है, अप्पे चप्पे खप्पे सब सीखूंगा आज मैं, आप टेंशन ना लो। रीना तू कुछ कह रही थी, टेल मी।
2: मैं ये कह रही थी, तुम्हारी बातों पे बोल रही थी, तुमने बोला कि मैंने आज ही राजमा चावल बनाने के लिए सीखा है। तो जब जैसे मैम ने बता ही दिया कि घर में महिलाएं बीमार होती है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप घर में एक दूसरे का साथ दोगे तभी परिवार आगे बढ़ता है और ग्रो भी तभी करता है। और क्योंकि अब देखा जाए तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक अगर कोई पुरुष कमा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसमें नहीं हो पाएगा कि बच्चे भी है, फैमिली को भी लेकर चलना है। इसीलिए दोनों को ग्रो करना चाहिए, सपोर्ट करिए आप महिलाओं को।
1: हो भी पाएगा तो कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छाएं दबाएंगे।
2: वही ना, तो दबा

0: ना उस चीज को आगे करिए।
1: और ये चीज आप सोचो, पहले के टाइम में चल भी जाता था कि महिलाओं हैं, बहुत सारी ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, मगर अब ज्वाइंट फैमिलीज है कहाँ, हस्बैंड वाइफ दो बच्चे,
2: छोटा परिवार सुखी परिवार,
0: लेकिन खर्चा या
1: वो इतना छोटा हो गया है कि अगर आपके साथ कुछ बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है ना तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको घर के काम ही नहीं आते। पहले केवल बेटी का ही फर्ज बनता था कि पापा आए हैं आपको पानी देना है, आजकल क्या है कि बेटों को भी भाई पापा आए आप पानी दीजिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनको आदत में डालिए,
2: करेक्ट, छोटे छोटे काम में उनका जो है एनरोलमेंट कराइए,
1: क्योंकि बेचारे उन बॉयज को बाहर जाके बहुत परेशानी होती है, उनकी तकलीफ नहीं। आप सोचो जो जिस बच्चे ने एवरी टाइम घर में बेड पे खाना खाया है, बेड पे चाय पी है, वो हॉस्टल जा रहा है रहने के लिए, उसको अपने खुद या जॉब पे बाहर है, खुद बना के कुछ खाना है, तो वो कितना परेशानी होती है उसको, क्योंकि उसकी हैबिट नहीं होती। लड़कियों को आपने कभी देखा है कि परेशानी हो रही है?
0: नहीं, क्योंकि घर पे भी उसको काम करवाया जाता है,
1: उनके लिए 5 मिनट मैगी नहीं, उनके लिए 5 मिनट में खाना भी बन जाता है।
2: नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, अब लड़के भी बहुत ज्यादा अंकल आंटी के साथ साथ सब एक्टिव हो रहे हैं,
1: सब एक्टिव हो रहे हैं आजकल के बॉयज, बहुत नहीं, आजकल की जो जनरेशन आ रही है वो बहुत अच्छी आ रही है, वो कोऑपरेटिव आ रही है, लेकिन उनको वो कोऑपरेट करते हैं ना तो उनको फिर लोग ये कहते हैं अरे यार तुम कर रहे हो ऐसा, तुम्हारा नहीं करने का है, तो वो जो नहीं वाला शब्द है, नहीं अच्छी, उनको ये बोलो कि नहीं अच्छी बात है आप सपोर्ट करते हो।

0: ये बात तो आपने सही बोली, और मुझे भी लगता है कि गाइस अब सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी, मतलब कहने का ये कि दोनों लोग साथ में चल रहे हैं और दोनों ही लोग बराबरी में काम करते हैं। कोई प्रोफेशन नहीं बचा है, कोई क्षेत्र नहीं जहाँ लड़के लड़कियां काम ना कर रहे हो, हर जगह कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये भी था आपको बुलाने का शैली, जिस प्रोग्राम में महिलाओं को एक मोटिवेशन आप जो आपसे मिलेगी ना उसकी बात अलग होगी। तो हमने कर ली, अभी जो हमने बात करी है, खैर ये महिलाओं की और पुरुषों की बात कर ली खाने पीने की, मर्दों को भी आना चाहिए और जरूरी भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, बट उन्हें समझ में नहीं आता भाई कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो उन्हें आप क्या कह सकती हैं? आजकल तो घर से भी बहुत सारे काम कर सकती हैं
1: उन्हें है। तो सबसे पहले तो उन्हें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें बस ये सोचना है कि उन्हें क्या अच्छा लगता है।
0: करेक्ट।
1: उन्हें सिंगिंग अच्छी लगती है, उन्हें डांसिंग अच्छी, उनका शौक क्या है, उस शौक को प्रोफेशन बनाया।
0: अच्छा, आपकी बात को बीच में रोक के बोलूंगा। रिसेंटली ना एक लेडी से हमारी मुलाकात हुई, हमारे स्टूडियो में ही आई थी वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनको बहुत अच्छा गाना आता है, उनके गाने का बहुत शौक है और बहुत ही अच्छी खासी सैलरी पैकेज उनकी, गवर्नमेंट टीचर है, उनके हस्बैंड भी बहुत ही अच्छे लेवल पे टीचर है, उनका बेटा मुंबई में बहुत ही बड़े स्टूडियो में प्रोड्यूसर है, मुंबई बॉलीवुड में काम करता है, मुरादाबाद की ही है वो। तो उन्होंने बताया कि उनके उनको गाने का बड़ा शौक है, उनकी आवाज भी बहुत अच्छी है, लेकिन उनके उनका बेटा और उनके हस्बैंड कहते हैं कि नहीं तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, तुम यही घर में ही रहो, तुम्हारी आवाज यहीं तक अच्छी है, तुम्हें ऐसा मिथ है कि तुम अच्छा गाती हो, तुम घर पे खाना वाना बनाओ, तुम्हारे लिए यही सफिशिएंट है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इवन वो कहती है कि मेरा बेटा भी, मैं अपने बेटे को बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ ना, तो बेटा भी बोलता है नहीं मम्मी मैं मुंबई में रहता हूँ, तुम्हारी आवाज घर की दीवारों में ठीक है, बाहर बेइज्जती हो जाएगी। तो उनको घर में डिमोटिवेट कर रहे हैं वो लोग। तो मेरा मतलब ये नहीं कि गलत चीज है, शायद उनको ऐसा लगता है, लेकिन जितना हमने
1: आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप एक बार अपना सॉन्ग इंस्टा पे डालिए, जो भी आपको एक बहुत अच्छा आता है, व्यूअर्स आपके कितने आते हैं, कौन आपको लाइक करता है, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या है आपकी।
0: लेकिन
2: अपने प्लेटफॉर्म को खुद जनरेट करें,
0: जनरेट तो करना है, लेकिन अब जब अलाउड ही नहीं है घर में, जब लोग उनको कह रहे हैं कि आप अच्छा गाती नहीं हो, तो फिर
1: ठीक है अलाउड नहीं है, तो जो घर के मेंबर्स है ना, चार दीवारी में ही गाना है, तो उन जो हमारे चार लोग हैं, हमारे घर के रिलेटिव, हमारे भाई हो गए, हमारी बहनें हो गई, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हो गए, व्हाट्सएप पे डालिए सिंगिंग करके, हाइट कर दीजिए सबको, फिर वो उनके व्यूज क्या होते हैं आपके गाने के प्रति पता चल जाएगा।
0: ये अच्छा आपने,
1: क्योंकि आज को आज क्या,
0: सही
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये आपने बहुत अच्छा बोला। और मुझे लगता है कि ये जो लेडीज प्रोग्राम है ना, इसके इसका मतलब यही है, इसका मीनिंग यही है कि हम लोग लोगों की सोच को बदलें, और सिर्फ महिलाओं की क्यों, जेंट्स की सोच को भी बदलना बहुत जरूरी है।
1: नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, नवरात्रि में इतने कीर्तन होते हैं, आप घर में कीर्तन रखिए, आप अगर अच्छा गाते हैं बजाते हैं, आपको चार लोग इनवाइट करेंगे, यार वो उनकी वाइफ बहुत अच्छा गाती है, और देखिए लोग उन्हीं को बुलाना चाहते हैं जिनमें कुछ बात
3: है।
1: चार लोग जो पीछे बैठने वाले होते हैं उन्हें लोग कम इनवाइट करते हैं, आपको बजाना आ रहा है, आपको गाना आ रहा है, आपको डांस आ रहा है, तो आपको जब आपका घर में ऐसे छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो आप सोचेंगे उन्हीं लोगों को ज्यादा बुलाएंगे,
2: उन्हीं लोगों का नाम सबसे पहले होगा।
0: सही कहा आपने। तो श्रोताओं, फिलहाल मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अब जो है मेरा तो जाने का समय हो रहा है, लेकिन अभी इन लोगों की बात आप सुनते रहिए, शायद आपको कुछ अच्छा सीखने को जानने को मिले। थोड़ा सा मैं बस जाने से पहले शैली मैम से और पूछना चाहूंगा, वो आज हमारे बीच में आई है, तो इतना अच्छा काम करती है और इतनी फिट भी है वो, और इतनी अच्छी फ्लेक्सीबिलिटी उन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका राज थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपने जिक्र किया था थोड़ी देर

0: लेकिन घर की महिला अगर स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है ना, परिवार की भी पूरा समाज स्वस्थ है। अगर हमारे घर की नारियां ही कमजोर पड़ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी, थकेंगी, दिक्कतें होंगी तो वो नहीं चला पाएंगी, और पुरुष तो इतना नहीं कर पाते भाई, सिंपल सी बात है। तो महिलाओं को आप क्या टिप्स देंगी, क्या एडवाइस देंगी, दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे वो खुद की प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करें?
1: मैं महिलाओं के लिए बस यही बोलना चाहेंगी कि अगर आप 45 मिनट, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 2 घंटे निकालिए, 45 मिनट अगर आप पूरे दिन में नहीं निकाल पा रहे हो तो आपकी लाइफ ना बिल्कुल यूजलेस है। क्यों? क्योंकि 45 मिनट्स में वो आपकी हेल्थ इश्यूज से लेके आपकी मेंटल हेल्थ तक वो सही करेगी। जब हमारी मेंटल हेल्थ सही होती है तो हमारी फिजिकल हेल्थ तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो उस 45 मिनट में आप प्राणायाम है वो करिए, आजकल ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, जिम नहीं जा पा रहे हो, योगा नहीं जा पा रहे हो, सारी चीजें अवेलेबल है वेबसाइट्स पे।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
4: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
3: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
4: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
0: मुरादाबाद
3: से संपर्क कीजिए।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: नमस्कार आदाब, गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। और साथियों, समय हो चुका है 3:07। मैं हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं। इवन आप किसी अपने खास फ्रेंड्स को भी कोई गाना अगर डेडिकेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बाहर के मौसम की अगर बात करें ना एवरीवन, तो बाहर का जो वेदर है वो बड़ा ही सुहाना है। कभी धूप निकल जाती है तो कभी बादल हो जाते हैं। और अब आपकी दोपहर को बनाएंगे आपके पसंदीदा गानों से और भी ज्यादा खूबसूरत। तो आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो जी, बताइए क्या नाम है आपका?
1: दी, मैं आपका भिकनपुर जिला मुरादाबाद से रुकैया फातिमा आपसे बात कर रही हूँ।
0: जी बताइए, कैसी है रुकैया जी आप?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ दी, आप बताओ आपके वहाँ सभी कैसे हैं?
0: हाँ जी, स्टूडियो में सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आपकी फैमिली में सब ठीक है?
1: हाँ जी, सब बहुत अच्छे हैं, बस आपका इंतजार कर रहे थे।
0: देखिए, आपने इंतजार किया और हम आ गए, आपने बुलाया और हम चले आए।
1: हाँ दी, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं ना।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और इतनी शिद्दत से आप सब हमारा इंतजार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, फिर मुरादाबाद से प्यार करते हैं, तो हम भी खुद को रोक नहीं पाते हैं।
1: हाँ जी, हम सभी का प्यार ना आपको खींच लाता है।
0: हाँ जी, ये तो है, रियलिटी है आपके प्यार में।
1: हाँ जी,
0: बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं अभी बताऊंगी, मैं एक लाइन अपनी दोस्त के लिए बोलना चाहती हूँ।
0: एक नहीं, दो लाइनें बोलिए, हमारी तरफ से परमिशन है आपको।
1: ओके दी। दिल में सबको पाने का अरमान नहीं होता, दिल में सबको पाने का अरमान नहीं होता, हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता। जो बन जाता है एक बार अपना, जो बन जाता है एक बार अपना, उनके बिना रहना आसान नहीं होता, उनके बिना रहना आसान नहीं होता।
0: बहुत ही खूबसूरत सी लाइनें हैं आपकी, एंड ये किन के लिए बोली है? कौन है ऐसे जिनके बिना रहना आसान नहीं होता? हाँ जरा बताइए।
1: मेरी बेस्टी है रक्षा फातिमा, उन्हीं के लिए ये मैंने डेडिकेट की थी दी।
0: अच्छा, उन्हीं के लिए आपने ये लाइनें डेडिकेट की थी। हाँ बताइए।
1: हाँ जी, पता है मैं बोल नहीं पाती हूँ शायरी से ना, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती है क्योंकि मुझसे हो नहीं पाता है, कोशिश तो बहुत करती हूँ।
0: देखिए अभी आपने इतनी प्यारी कोशिश की है और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट की है शायरी, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आपकी फ्रेंड को भी अच्छा लगा होगा, मुझे तो पूरा यकीन है वो मुस्कुरा भी रही होंगी इस वक्त।
1: हाँ दी, वो उनको अच्छा लगा होगा क्योंकि हमने अभी बात की थी उनसे
0: जी,
1: तो वो भी बोल रही थी कि हाँ मैं भी कॉल लगाऊंगी।
0: ओके, तो बताइए,
1: तो ट्राई कर रही होंगी।
0: चलिए अच्छी बात है, उनका भी कॉल लग जाए, हम तो यही दुआ करते हैं। बाकी आप बताइएगा, आज की दोपहर आप क्या सुनना चाहेंगी?
1: दी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है दी। दी मैं बोलना तो चाहूंगी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ पहले।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए क्या सवाल है।
1: मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है जिसके बिना आप रह नहीं पाती और उसको बहुत याद करती हैं आप?
0: हाँ, पर वो तो मेरे पास ही रहते हैं।
1: हाँ दी, नहीं एक बेस्ट होता है ना सबसे हाँ। अलग
0: सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरे आरजी आनंद जी हैं, जो कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ।
1: अच्छा दी।
0: हाँ, एक ब्रदर भी हैं, एक अच्छे दोस्त भी हैं।
1: ओ अच्छा।
0: या
1: तो दी हाँ, ऐसा फ्रेंड होना चाहिए ना हर किसी की लाइफ में। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जिसको नहीं मिला है ना उसको भी जल्दी से जल्द मिल जाए।
0: हाँ जी, एग्जैक्टली राइट। तो बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी जो मैंने अभी आपको सॉन्ग बताया ना वही सुनना चाहती हूँ।
0: अच्छा, तू ही हकीकत ख्वाब तू, राइट?
1: हाँ जी,
0: चलिए सुनवाते हैं गाना। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: मैं नाम लेना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बताइएगा।
1: जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है दरक्षा फातिमा, और मेरी आपी है अफरोज आपी, नजमा आपी, आसिया आपी, और नरगिस आपी है, राबी आपी, और आप और सभी सुनने वाले।
0: ठीक है, सभी के साथ सुनवाते हैं बेहतरीन गाना। शुक्रिया कॉल किया आपने।
1: थैंक यू डियर, बाय
0: बाय, टेक केयर, मोस्ट वेलकम डियर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी गुफ्तगू। आप भी चाहते हैं कोई अपनी पसंद का गाना सुनना तो बिना किसी देरी के आप मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अब मुस्कुरा भी दीजिए।

0: गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी तुम मिले एंड बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ आबिद अली साथ में इरशाद। एंड मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये खूबसूरत सा गाना आपने सुना है। एंड देखो अभी हमारी जो फर्स्ट कॉलर थी वो बता रही थी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए जिससे हम अपनी खुलकर सारी बातें कह सकें, जो जहां पर हमें बिना बोले ये ना लगे, हमें मतलब हम सोचने भी मजबूर ना कोई कि इसको हमें ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा आपकी लाइफ में कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको बहुत संभाल कर रखिए। एंड उस रिश्ते में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई भी रिलेशन तभी आगे चल पाता है जब आप उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर कोई आप पर विश्वास कर रहे हैं और आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ भी रिश्ते थोड़े डगमगाने लगते हैं। तो रिश्ता कोई भी बनाओ लेकिन पूरी ईमानदारी से निभाओ और एक दूसरे पर विश्वास रखो, तभी रिश्ते खूबसूरत बनते हैं। तो चलो अपनी खूबसूरत बातों के साथ अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, लगता है सर मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, बट हाँ दोस्तों आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? सर तो मुझे नहीं सुन पाए बट आप मुझे सुन रहे हो तो फटाफट से कॉल लगाओ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 एंड जब तक आप मुझे कॉल लगाते हैं तब तक मैं आपको एक शानदार सा गाना सुनवाती हूँ एफ एम मुरादाबाद 89.6 पर।
1: समझे बिल्लू, नया कुरकुरे

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। छोटू से एयर ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हो गए आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और एवरी समय अभी मैं बता देती हूँ आपको, समय हुआ है 3:26। और हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ।
0: जी दरक्षा, मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा, आप कैसे हैं?
1: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
0: ओके, अच्छा ही रहना चाहिए, बताइएगा फैमिली में सब कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: हाँ मैम, सभी ठीक है।
0: ओके, तो बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: आज मैम मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तुम जो आई जिंदगी में बात बन गई।
0: तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, अरे वाह।
1: जी, अपनी बेस्ट फ्रेंड रुकैया फातिमा के लिए।
0: अच्छा, रुकैया फातिमा जी के लिए सुनना चाहते हैं आप ये
1: जी?
0: ओके,
1: तो क्योंकि मैम मेरी दो दोस्त है ना, वो बहुत अच्छी है और बाद में भी इतनी करती है बातें, बहुत बातें करती है मुझसे मैम।
0: अच्छा, कितने घंटे बातें करते हो आप?
1: हम मैम हमारी बहुत घंटे घंटे बातें चलती है
0: अच्छा, तो बातें कंप्लीट हो जाती है या अधूरी रह जाती है?
1: मैम, कभी कभी अधूरी रह जाती है, कभी हो जाती है कंप्लीट।
0: लड़कियों की बातें कभी कंप्लीट होती ही नहीं है, मैं सच बताऊं तो कुछ
1: हाँ
0: ना कुछ
1: मैम,
0: हमेशा रह ही जाता है, फिर बोलती है लास्ट में। पता है क्या होता है, जब कॉल काटने का समय होता है तब बोलते हैं, अच्छा ठीक है मैं ना जब दोबारा कॉल करूंगी तब पूरी बातें बताऊंगी, ठीक है?
1: हाँ दी, यही होता है।
0: समझ सकती हूँ मैम, और बताइएगा।
1: क्योंकि मैम जब दोस्त होती है ना, तो उनसे बातें करने को तो बहुत मन करता है, पर फोन काटने मन नहीं करता।
0: हाँ जी, ऐसा होता है दोस्ती में। और बताइएगा बाहर का मौसम कैसा है आपकी साइड?
1: मैम हमारी साइड तो धूप निकल रही है
0: अच्छा, धूप निकल रही है।
1: जी।
0: ओके, तो अपनी बहनों का नाम भी लेना चाहोगी आप?
1: हाँ जी मैम, मेरी दोस्त बेस्टी रुकैया फातिमा और अफरोज फातिमा है, सिस्टर और मेरी नजमा अप्पी, राबी अप्पी, लाइबा काजमी और खुशी मैम। थैंक
0: ठीक है, थैंक यू,
1: यू
0: सुनवाते हैं
1: मैम,
0: प्यारा गाना।
1: बाय बाय।
0: बाय, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगा सकते हैं। फिलहाल अभी गाना सुनते हैं, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, बहुत प्यारा गाना है।

0: हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी के साथ है आप और शो का नाम है हेलो फरमाइश। अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना राहत फतेह अली खान जी, साथ में डोल्चे कुमार जी की बड़ी खूबसूरत सी सुरीली आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक सुना। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि उनकी फरमाइश क्या है आज यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश,
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, गजराज लोधी बात कर रहा था, रेल लाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी बहुत अच्छे, इस वक्त खेतों में हैं, काम कर रहे थे सोयाबीन में जो दवा डाल रहे थे इल्ली प्रकोप की।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ, तो आपका रेडियो भी सुन रहा था मैं।
0: अरे वाह, खेतों में काम करते करते रेडियो भी सुन रहे हैं आप। हाँ मुझे अभी आपके यू नो बैकग्राउंड से पक्षियों की आवाज आ रही है, चिड़िया भी बोल रही हैं, कुछ गुमसुम बातें कर रही हैं अपने आप में, आपस में।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी जी जी, तो बताइएगा सर कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: मौसम हमारे यहाँ भी धूप है। धूप छाव का दौर चल रहा है, मतलब कभी धूप आ जाती कभी छाव आ जाती है।
0: हाँ जी, सेम पेंच मुरादाबाद का भी ऐसा ही मौसम है।
1: बाकी बरसात तो है नहीं हमारे यहाँ।
0: ओके, हो जाएगी क्योंकि मानसून है तो बारिश भी हो जाएगी सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: बताएगा आज आप क्या सुनना चाहेंगे सर?
1: एक राजस्थानी गीत है वो सुनना चाहता हूँ मैं आज।
0: जी जी बताएगा।
1: थाने काजल यो बना लूं।
0: ओके, तो आज एमपी से राजस्थान जाने का कैसे मतलब जहन में आया?
1: तो वो तो मैं पहले गया था ना, तो मुझे ध्यान आ गया था, मैंने कि चलो ये गाना सुनते हैं।
0: अच्छा, नहीं राजस्थानी ट्रैक भी बहुत अच्छे लगते हैं।
1: हाँ अच्छे लगते हैं ना, उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती मुझे राजस्थानी।
0: हाँ वहाँ पे बोलते हैं ना खम्मा घड़ी राम राम सा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात,
0: घड़ी खम्मा। और लाइक वहाँ का जो दाल बाटी चूरमा है वो बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ वो बहुत प्रसिद्ध है।
0: हाँ प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। एमपी का पोहा जलेबी फेमस है ना मध्य प्रदेश का?
1: एमपी का तो दाल बाफले फेमस है।
0: अच्छा, और जलेबी पोहा?
1: हाँ वो भी फेमस है बिल्कुल।
0: हाँ जी, तो खाने पीने की बातों के साथ साथ सुनवाते हैं गाना आपको। धन्यवाद कॉल करने के लिए सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ओके नमस्कार।
0: नमस्कार, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक राजस्थानी। एंड आप भी कोई गाना सुनना चाहते हो, चाहे पंजाबी हो या फिर हिंदी गाना हो या फिर राजस्थानी हो, गढ़वाली ट्रैक हो, जो आपका मन चाहे गाने वही यहाँ पर प्ले होंगे। बट आपको कॉल लगाना है, नंबर है 9837 8986 8986। तो चलिए सुनते हैं बिना किसी देरी के शानदार से गाना।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सभी सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और अभी आपने प्यारा सा गाना सुना, आकांक्षा शर्मा जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज, राजस्थानी ट्रैक। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी पसंद भी क्या है आज। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश।
1: जी मैम।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप?
1: गुड आफ्टरनून जी मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैम?
0: हाँ जी, आई एम गुड। अपना नाम बताइएगा।
1: जी मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं इंजीनियरिंग करवाने मुरादाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: जी, और अभी कहाँ पर हैं आप?
1: मैम अभी घर पे, एक्चुअली बारिश हो रही थी तो इसलिए मैं घर पे रुका हुआ था।
0: अच्छा, बारिश हो रही है?
1: हाँ जी मैम, बहुत अच्छी बारिश हुई, मैंने आधा घंटे से अभी।
0: अच्छा, आधा घंटे की बारिश अभी भी हो रही है या फिर रुक गई है?
1: मैम बहुत हल्की हल्की हो रही है अभी।
0: अच्छा, अभी हल्की हल्की हो रही है, ओके। तो बताइएगा सर, इतने खूबसूरत मौसम में आप घर पर हैं, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम एक गाना है, मूवी का नाम है कस्ता कॉटेज।
0: हाँ जी।
1: और
0: ओके, ठीक है। इतना ज्यादा हैप्पी है कि सर लिरिक्स भी थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, बट कोई बात नहीं है, आपकी दिल की बातें मैम तक पहुंच गई हैं और वो भी बहुत खुश हैं। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए दोस्तों, अमित वर्मा जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक बेपनाह प्यार है आजा, और ये डेडिकेट करते हैं अपनी मिसेस को। एंड मैम भी सुन रही हैं इसे राइट नाउ रेडियो को। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये गाना, एंजॉय करते हैं सब मिलकर। मैं लौट कर आती हूँ इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए, यूं ही मुस्कुराइए और हाँ मुझे कॉल भी लगाइए, मुझे इंतजार है आपके कॉल का। नंबर मैं आपको अगेन बता देती हूँ, 9837896896।

0: दिल्ली के 7% मेकिंग चार्जेस।
1: उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियाँ अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: दोस्तों अभी आपने सुना बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, श्रेया घोषाल जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, बेपनाह प्यार है आजा। और अभी हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी भी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: अंशुल सेन, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैं।
0: जी बताइएगा।
1: साजन का घर।
0: साजन का घर मूवी का गाना सुना है आपको?
1: मूवी का नाम है साजन का घर, बादल सावन आया बादल छाए।
0: ओके, आप क्या करते हो, अभी कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? नाइन्थ में पढ़ाई करते हैं आप? ओके चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से स्टडी करो और ये प्यारा से गाना सुनो। थैंक यू कॉल करने के लिए। वैसे एवरीवन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जब भी आप बात करें ना, तो अपने बैकग्राउंड में आपके रेडियो चल रहा है तो उस रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, या फिर आप थोड़ा सा रेडियो से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि आपकी जो वॉइस है ना, वो एकदम प्रॉपर क्लियरली आए, साफ आए, ताकि सुनने में थोड़ा यू नो अच्छा लगे और समझ में भी आए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। वरना आवाज़ ही क्या होता है, रिपीटेड होती हैं, एंड पीछे से मेरी आवाज़, यहाँ से मैं बोल रही हूँ, पीछे से दोबारा से मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। मैं सुनवाती हूँ आपको प्यारा सा गाना।

0: बिल्कुल दोस्तों, सावन आते ही ऐसा हो जाता है, बादल छा जाते हैं आसमान में और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। कहीं तेज बारिश होती है तो कहीं हल्की बूंदाबांदी होती है और सावन का इतना पावन महीना चल रहा है। आज सावन का सातवां दिन है और सावन के गीत भी बड़े खूबसूरत हैं, एक से बढ़कर एक। तो अभी अपने अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: जी हेलो फरमाइश मैम।
0: हाँ जी सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं विजय सिंह बात कर रहा हूँ मैम, आपके छोटे से गांव मोहम्मदपुर बस्तौर।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: अच्छे हैं मैम, आप बताइए मैम कैसे हैं?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आप बताइएगा, आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मुझे कुछ गाना सुनना है, सावन झूम के फिल्म का टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, टाइटल ट्रैक सुनना है आपको?
1: जी, जी।
0: ओके, तो सुनवा देते हैं बिल्कुल, और आप भी झूमिएगा इस गाने पर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, विजय जी की पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, आया सावन झूम के। एंड तब तक आप भी मुझे कॉल लगा सकते हैं, शायद आपका भी कॉल लग जाए, है ना? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा ना, थोड़ी मेहनत करनी होगी भैया। अब आप चाहते हैं कि गर्मा गर्म खाना मिल जाए और मेहनत भी ना करें, तो ऐसा नहीं होता है, है ना? मेहनत करनी पड़ती है ना। तो फटाफट से कॉल लगाओ अगर आप चाहते हैं अपना फेवरेट गाना सुनना, तो उसके लिए कॉल लगाएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 9837 8 9 6 8 9 6, और सुनिएगा ये प्यारा से गाना।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
4: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। और अभी आपने टाइटल ट्रैक सुना, आया सावन झूम के लता मंगेशकर जी साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर के साथ, वो भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी है, उनके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं डायरेक्टली कि कौन है, कहाँ से है मोहतरमा, क्या उनका नाम है, उन्हीं से जानते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो दीदी, आदाब
0: जी। आपको भी आदाब, क्या नाम है आपका?
1: जी दीदी, कहते हैं आपकी दोस्ती हमारी सुरों का साज है, आपकी दोस्ती हमारी सुरों का साज है, आप जैसे दोस्त पर हमें नाज है, अब चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी में दोस्त जैसे आज है ऐसी ही रहेंगे।
0: अरे वाह, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत सी लाइनें आपने कही हैं। शबनम जी, कैसे हाल है आपके?
1: हमारे दीदी बहुत अच्छे हाल है, आप बताइए आप कैसे हो, सभी स्टाफ के लोग कैसे?
0: हाँ जी, ऑल गुड। हमारे सभी प्रेजेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं। और आप बताइएगा, आपका ब्यूटी पार्लर कैसा चल रहा है अभी? आप मेकअप आर्टिस्ट हैं?
1: जी दीदी, काम तो अच्छा चल रहा है दीदी, अब शादियों का सीजन आ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका जो शो आता है, आपकी आवाज मीठी सी गूंजती है, हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: और हमें आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लगती है शबनम जी, जो आप हंसकर बातें करती हो ना।
1: जी दीदी,
0: वो ही गाना है ना, तुम जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती हो, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है ना।
1: जी दीदी, कहते नहीं है किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का दीवाना पसंद है, किसी को दिल का नजराना पसंद है, आपको आपको पसंद हो तो बता देना, हमें आपका मुस्कुराना बहुत पसंद है।
0: अरे वाह, क्या बात है यार, अमेजिंग, सुपर, आपने तो कमाल ही कर दिया शबनम जी। हमने दो शब्द क्या कहे, आपने तो बदले में इतने सारे वर्ड बोल दिए, कमाल कर दिया, मोस्ट वेलकम। बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है प्रेम प्रतिज्ञा, उसमें एक गाना है शीशे की आंख बिसल के, और दीदी सभी स्टाफ के जो लोग हैं वो सभी श्रोता जो हैं सभी को सुनवाना चाहती हूँ।
0: ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया,
1: थैंक यू दीदी,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं शबनम जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक। और आप भी सुनना चाहते हैं कोई गाना तो बिना किसी देरी के मुझको कॉल लगाना है आपको, तो आप जल्दी से कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896, 9837-8968-96-896, ये हमारे स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिस पर आपको कॉल लगाना है और खुशी के साथ कनेक्ट हो जाना है। तो चलिए अभी सुनते हैं फिलहाल ये खूबसूरत सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे आपसे भी बातचीत।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने प्यारा सा ट्रैक सुना किशोर कुमार जी की खूबसूरत सी आवाज में, फ्रॉम द मूवी प्रेम प्रतिज्ञा से. और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से. हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: जी अच्छे हैं, आप सुनवाएं.
0: जी मैं भी ठीक हूँ सर. अपना शुभ नाम बताइएगा.
1: जी मोहम्मद रिजवान.
0: जी रिजवान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सिरसमा दोराहा
0: से बात कर रहे हैं जी. बताइएगा, खैरियत से हैं आप?
1: जी अब तो अच्छे हैं, ठीक हैं.
0: जी चलिए, हम दुआएं करते हैं आप और जल्दी से स्वस्थ हो जाएं. बताइएगा, आज कॉल किए हैं आपने सर, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आदमी खिलौना मूवी का गाना बताया है,
0: जी
1: बुलबुल को भी जो दिल से किसी ने पुकारा होगा.
0: ठीक है सर, सुनवा देते हैं गाना आपको. शुक्रिया आपने कॉल किया.
1: ठीक है
0: जी तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत. आप भी मुझे कॉल लगाइएगा. हमारा मोबाइल नंबर है 9833789689.

0: Hey, hi everyone. Good evening. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त खुशी. और अभी आपने सुना है खूबसूरत से गाना और बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से क्योंकि वो भी इंतजार कर रही हैं. हेलो फरमाइश. हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश मैम, अस्सलाम वालेकुम.
0: जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका?
1: मैम मैं रामपुर से शबनम जी बात कर रही हूँ.
0: जी बताइएगा कैसी हैं शबनम जी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो और
0: जी
1: आपका मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं.
0: सब बहुत ही अच्छे हैं शबनम जी. आप बताइएगा कैसा मौसम है आपके साइड का?
1: मौसम तो दीदी धूप हो रही है
0: अच्छा धूप हो रही है.
1: जी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब धूप हो रही है.
0: अच्छा अभी धूप निकल गई है. ओके तो बताइएगा शुभनम जी आज कॉल किया है आपने काफी दिनों के बाद. क्या सुनना चाहती हैं आज आप?
1: दीदी एक गाना सुनना चाहूंगी मैं, तू दोस्त नहीं मेरी जान है, और ये गाना मैं लायबा आपकी और अशोक फातिमा जी को डेडिकेट करना चाहूंगी.
0: ठीक है सुनवाते हैं प्यारा से गाना. थैंक यू कॉल करने के लिए.
1: ओके बाय.
0: बाय. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक. फ्रेंड्स सच में बहुत प्यारे होते हैं दोस्त और अच्छे सच्चे दोस्त हर किसी को नहीं मिल पाते. बहुत लकी होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं. अगर आपके पास अच्छे और सच्चे दोस्त हैं ना तो उनके साथ वक्त बिताया करो यार. काम ठीक है, बिजी रहना भी ज़रूरी है, बट इतना भी बिजी मत हो कि दोस्तों को ही टाइम ना दे पाओ. हाँ देखिए थोड़ा सा जब हम दोस्तों के साथ बैठते हैं बातचीत करते हैं एंड उससे क्या होता है ना, जो हमारा माइंड है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाता है, हैप्पी फील करते हैं. और जब हैप्पी फील करते हैं तो सारी चीज़ें हैप्पी हैप्पी होती हैं. चलो अभी गाना सुनो, मैं लौट कर आ रही हूँ.

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफ एम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफ एम मुरादाबाद।
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
4: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया,
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. खुशी है आपके साथ. और दोस्तों, सावन के पावन कांवड़ यात्रा के बीच हरिद्वार पहुंचे शिव भक्तों के स्वागत का एक खूबसूरत नजारा सामने आया है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया. मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कांवड़ यात्रियों पर बरसाया गया हर फूल उनकी भक्ति, मेहनत और आस्था को सम्मान देने का प्रतीक है. हरिद्वार में इस समय बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव और बोल बम की जयकारों से पूरा वातावरण भक्ति में नजर आ रहा है. तो दोस्तों, हमारे शिव भक्तों कांवड़ यात्रियों के सम्मान में उत्तराखंड सरकार की ओर से खास पहल देखने को मिली है. हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा ने इस पूरे माहौल को और भी भक्ति में बना दिया है. सच कहें तो ये फूल सिर्फ फूल नहीं बल्कि भोले के भक्तों की आस्था और उनके जज्बे को सलाम है. एंड ये अपडेट आपको हमने बता दी है और समय भी आपको बता देते हैं एवरीवन. वक्त वह है 4:30 और बात करती हैं अभी अपने अगले कॉलर से. कौन हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं? हेलो फरमाइश.
1: हेलो फरमाइश.
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर. अपना शुभ नाम बताएगा.
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर एमपी
0: से. जी बताएगा, कैसे हैं आप सर?
1: बस ठीक है मैम, बस आपका शो का इंतजार कर रहे थे मैम.
0: अच्छा,
1: लग गया तो अभी शो का इंतजार खत्म हो गया मैम.
0: हाँ जी, मतलब आप कॉल लगा रहे थे और फाइनली कॉल लग गया है, बातचीत हो रही है. कैसा लग रहा है आपको बताएगा?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैम.
0: तो एमपी से हमारे सेकंड कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. नहीं, थर्ड, आज आप तीसरे कॉलर हैं जो एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं. बताइएगा क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाने तो बोला दिल देता है रो रो लो आई.
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं सर. तो चलिए एवरीवन सुनवा देते हैं सर की पसंद का प्यारा सा ट्रैक. लौट कर आने वाले हैं हम इस प्यारे सी गाने की उस पर. आप भी मुझे कॉल लगाइएगा अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो. बस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा और चेहरे पर इतने प्यारे से फेस पर भी क्यूट से स्माइल रखिए. अच्छे लगते हैं आप मुस्कुराते हुए.

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ। और अभी आपने सुना ही प्यारा सा गाना पंकज उदास जी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश। आपको भी जय श्री राम। मैम क्या नाम है आपका? नीतू जी लाइन पास से बात कर रही है। मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा, आप कैसी हैं मैम? जी बताइएगा, क्या कर रहे थे आप? अच्छा, अभी बैठकर शो सुन रहे थे, सोच रहे हैं कि चाय बनाए या नहीं बनाया।
1: चाय तो नहीं बन रही।
0: ओके, चाय पीते हैं आप?
1: नहीं,
0: अच्छा मॉर्निंग में ही पीते हैं आप? भी मेरी तरह है। हाँ, एक टाइम ही चाय पीते हैं। मॉर्निंग में तो चाहिए होती है ना?
1: बिल्कुल।
0: दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं आप। जी बताइएगा, आज क्या सुनना चाहती हैं मैम? अपनी पसंद का। ओके ठीक है, हम आपको ना नीतू जी अपनी पसंद का एक प्यारा सा गाना सुनवाते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा ये प्यारा ट्रैक। ठीक है, थैंक यू। इतना धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? आज खाना नहीं खाया आपने?
1: नहीं खाना खाया।
0: हाँ, अभी लगा कि एनर्जी है, वरना धीरे धीरे बोल रही थी। खुशी जी, आप अपनी पसंद का गाना ही सुनवा दीजिए। मुझे लगा मैम ने आज शायद कुछ खाया नहीं है, बट अभी लग रहा है कि हाँ कुछ खाया है। तो चलिए नीतू जी, मैं अपनी पसंद का गाना सुनवाती हूँ। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा ट्रैक, एंड फाल्गुनी पाठक जी की बड़ी खूबसूरत सी आवाज। सावन का महीना है, तो इस सावन का गाना भी सुन ही लेते हैं, और आपको भी पसंद आएगा ये तो मुझे यकीन है।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद।

सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी है आपके साथ और एवरीवन, आपका फेवरेट शो चल रहा है हेलो फरमाइश। एंड आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं ना अपने पसंद का, तो फिर इतना क्यों सोच रहे हैं आप, फटाफट से जो फोन आपके हाथ में है ना, इसी पर आप हमारा ऑफिशियल नंबर डायल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जल्दी कॉल लगाइएगा और अपना फेवरेट कौन सा गाना है जो आप सुनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर प्ले करने के लिए तैयार हूँ, बस आपको कॉल लगाना है। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा आप।
1: जी, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप।
1: जी बढ़िया है, बस मौज आ रही है आपसे बात हो, दिल खुश हो गया।
0: जी थैंक यू सो मच सर, बताइएगा क्या सुनेंगे आज आप।
1: जी आज मैं फिल्म का नाम है सच्चाई, गाने के बोल हैं 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन।
0: ओके, तो ये गाना सुना देते हैं।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में गाना है ये।
0: जी जी जी, और आप गुनगुना भी रहे थे, तो आप एक बार ये थोड़ा सा गुनगुना दीजिए सर।
1: 100 बरस की जिंदगी से अच्छे हैं, अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन, जिंदगी की हर खुशी से अच्छे हैं प्यार के 2-4 दिन।
0: ठीक है, बहुत अच्छा आपने गाया है।
1: अब मैं जरा नाम ले दूं अपने परिवार के।
0: हाँ बस दो ही नाम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं।
1: जैसे मीना मुन्नी, पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा, आकाश।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, मना करने के बाद भी चीटिंग किया आपने सर, गलत बात।
1: नामों की बराबरी मैंने बोल दिया बस।
0: ओके चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक। तो एवरीवन, आप भी कॉल लगाइएगा, शायद आप भी हमारे को शुरू की बन जाए लास्ट लकी कॉलर, तो कुछ भी हो सकता है, फटाफट से ट्राई कीजिएगा, मैं इंतजार कर रही हूँ। और फिलहाल अभी गाना सुनिएगा।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आपने सुनाई प्यारा से गाना मोहम्मद रफी साहब साथ में आशा भोसले जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, ये खूबसूरत गाना। और अभी बात करते हैं अपने लास्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बताइए।
0: हाँ जी मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: आपके घर परिवार में सब?
0: हाँ जी सब बहुत ही अच्छे हैं, आप बताइएगा सर, आपके यहाँ पर सब ठीक है?
1: सब बढ़िया है।
0: जी बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: आपकी मर्जी का।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं अपनी मर्जी का एक प्यारा से गाना अपनी पसंद का। थैंक यू कॉल करने के लिए, मोस्ट वेलकम। चलिए एवरीवन, हिमेश रेशमिया जी का एक बहुत ही प्यारा गाना है जो कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, मुझे यकीन है, विश्वास है, क्योंकि ये गाना वो है जो इंसान ना डांस करना चाहे ना वो भी करने लगेगा, गाना इतना शानदार है। तो बिना किसी तरीके इस गाने को सुनते हैं और इस गाने के साथ साथ मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपको टुमारो मॉर्निंग, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने हर एक पल को एंजॉय कीजिएगा और अपनों के साथ रहिए, है ना? बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, कीप स्माइलिंग एवरीवन, सुनिएगा ये गाना, एंजॉय भी कीजिएगा। और हाँ बताइएगा भी कि ट्रैक आपको कैसा लगा। बताने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी सिम नंबर जिस पर आप कॉल कर रहे हैं इसी पर आपको मैसेज करना है, चाहे व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब मैंने इतनी सारी बातें कर ली है, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा सा विराम भी देती हूँ। एंड रीना जी भी इंतजार कर रही है, खुशी सब तुम ही बोलती रहोगी तो मुझे क्या बोलने का मौका नहीं दोगे, तो मैंने इनको मौका दे दिया है, वरना पता चला कि वो गुस्सा कर रही है, तो गुस्सा नहीं अच्छा होता है, इसलिए हम उनको मना लेते हैं। चलो ये गाना सुनो आप।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आज जरीना के साथ एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी श्रोता। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है भाई, तेरा स्टार मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। राघव के भाई अगर डांस की बात की जाए तो क्या ही कमाल का लड़का है, यानी कि डांस तो इसका रग रग में भरा हुआ है। आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है श्रोताओं, इवनिंग मस्ती शो शुरू हो चुका है, यानी कि दो घंटे आप सभी के साथ रहने वाले हैं। और समय की बात करूं तो 11 यानी कि 5:11 हो चुके हैं। तो श्रोताओं बस आपने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आज देश दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो चेंज हुई है। और साथ ही साथ बॉलीवुड की गलियों में भी चलेंगे कि किनका आज बर्थडे है और कौन सी मूवी है वो रिलीज होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। और सच बताऊं आज का यानी कि मुरादाबाद के आसपास एरिया में तो बारिश हो रही है, जमा जम के बारिश हो रही है, लेकिन हमारे मुरादाबाद में भैया वेरी हॉट वेदर है। मतलब पता नहीं हो रहा है कि सावन का महीना जब शुरू हुआ था बस पहले दिन बारिश हुई, उसके बाद तो इंसान तरस गए, यार थोड़ा रहम कर दो। पर रहम ही तो नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। अब तो पता चल रहा है भैया, लग रहा है कि बहुत तड़ाके वाली गर्मी है। और मतलब आपको एक हफ्ते से बारिश बता रखी है, लेकिन बारिश सिर्फ मुरादाबाद के आसपास एरिया में बारिश हो रही है, मुरादाबाद में बारिश नहीं हो रही है श्रोताओं। चलिए फिलहाल एक गाने सुनते हैं, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल आपने कहीं नहीं जाना है, सुनते हैं जी, क्योंकि सुबह सुबह तो आप ऑफिस में रेडी होकर जाते हो, लेकिन जब वापस आते हो ना तो वो वाली हालत खत्म हो जाती है। जो एनर्जी सुबह होती है भाई, सुबह जाते हैं लेकिन आप ऑफिस से आते समय एनर्जी डाउन हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ जी एनर्जी डाउन बिल्कुल नहीं करना है, बस आर्जरीना के साथ कनेक्ट रही एनर्जी और भी हाई लेवल की हो जाएगी आपकी। चलिए।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: जी कतई माफ नहीं करेंगे, क्योंकि भैया सच बताओ ये न्यू गाने, यानी कि मुझे लगता है कि अब तो गाने ना कम हो गए, क्योंकि देखा जाए तो ये 90s का गाना है, यानी कि ममता कुलकर्णी इस गाने में, यानी कि उस टाइम तो भाई राणा जी भी पूरे सवाब में थे, पूरे जोश में थे कि आ क्या बात है, ढिंचे ढिंचे वाला, लेकिन अब मतलब थोड़ी वाइब कम आ रही है इसमें, तो आप ही बता दीजिएगा कि आपको ये नया वर्जन अच्छा लगता है या फिर 90s वाले जो वर्जन है वो अच्छा लगता है, यानी कि 1995 में आई थी वो, ये जो गाना रिलीज हुआ था राणा जी मुझको माफ करना, वो पसंद है आपको या ये वाला सबसे ज्यादा पसंद है? आपके साथ आरजे रीना कनेक्ट हो गई श्रोता, और समय की बात करूं तो 5:20 हो चुके हैं, यानी कि शाम के इस वक्त ज्यादातर ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है और सड़क और ट्रैफिक भी अपने पूरे शबाब में है, ऊपर से सावन का महीना चल रहा है, जगह जगह कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, ऐसे में अगर आप घर लौट रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह पालन करिए, जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में ओवरटेक करना, रेड लाइन तोड़ना या फिर गलत दिशा में गाड़ी चलाना आपके साथ दूसरे के लिए भी खतरा बन सकता है, और जब आप गलत डायरेक्शन में गाड़ी चलाते तो देखिए ट्रैफिक तो फिर तो लगनी लगनी है, यानी कि भीड़ तो लगनी लगनी है। अगर रास्ते में कांवड़िया आपको दिख जाए तो उनका सम्मान करिए, सावधानी से वाहन चलाइए, याद रखिए कुछ मिनट की देरी मंजूरी है लेकिन सुरक्षित घर पहुंचना उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए धैर्य के साथ अपने घर पहुंचिए, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, हेलमेट जरूर पहनिए और मुस्कुराते हुए इस सफर का आनंद लीजिए और घर निकलिए। और भैया जहाँ जहाँ बारिश आ रही है उनके तो बल्ले बल्ले हैं, लेकिन जहाँ बारिश नहीं आ रही है भैया क्या कह सकते हैं, यानी कि इतनी गर्मी, बाहर निकलने के बाद पता चल रहा है भैया कि कितनी गर्मी है, यहाँ ऑफिस में रहने पर तो लगता है कि हाँ ऐसी चल रही, तो हाँ अभी जहाँ ऑफिस का वेदर है वैसे ही बाहर का वेदर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आप ऑफिस से निकलते हो तो अब आपको पता चलता है कि हाय रब्बा गर्मी कितनी ज्यादा है। चलिए जी, फिलहाल आप कहीं ट्रैफिक पे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप भीड़ में हैं तो, ताकि जो भी श्रोता उधर से आने वाले हैं थोड़ा बच सके और इस ट्रैफिक से उनको भी थोड़ी सी राहत मिले और घर अपने आराम से पहुंच जाए। चलिए फिलहाल गाने सुनते हैं।
1: हिंदुस्तान से राजकुमारी गुलगुलू ग्लोरिया किया जाए।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ अब कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:27 हो चुके हैं, और अब हम बात कर लेते हैं यानी कि फूड प्राइस के बारे में।

0: ग्रोसरी तक हर चीजें भैया महंगी होती जा रही हैं। और वहीं अब मैं बात करूं दाल की, तो पिछले महीने से लेकर अब तक यानी कि 8 रुपए की बढ़ोतरी, और वहीं तेल की बात करूं तो 6 रुपए महंगा हुआ है। जी हाँ, यानी कि सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर शाम रात के डिनर तक के हर चीजें अब महंगी हो गई है। तो बस इसमें क्या करना है, आपने थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखना है, क्योंकि देखिए जब महंगाई नहीं थी तभी भी इंसान के घर में राशन आता था, और महंगाई हो गई तभी भी इंसान के घर में राशन आता ही आता था। बस हमें ये दिख जाता है कि यार महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कैसे किया जाएगा। जब देखिए महंगाई नहीं थी तभी भी सोचते थे, और महंगाई हो गई है तभी भी सोचते हैं। तो बस इन्जॉय करिए लाइफ को। और आगे हम बात करने वाले हैं आज, यानी कि आज की तारीख की बात करूँ तो 5 अगस्त, और 5 अगस्त को क्या स्पेशल डे मनाया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं श्रोताओं। फिलहाल आप सभी से एक ही बात कहेंगे कि रेडियो की सुई आपने बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। और टेम्परेचर की बात करूँ अभी मुरादाबाद की, तो 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यानी कि बस बादल है वो थोड़ा सही है, उसके बाद तो भाई गर्मी तो है ही, और बारिश होने का तो नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं भगवान जी रूठ गए हैं, नज़र लग गई है मुझे ये लगता है, क्योंकि सावन से पहले तो जब देखो दूसरे तीसरे दिन बारिश आ जाती थी, वो भी झमाझम वाली बारिश आती थी, लेकिन अब भगवान जी रूठ गए हैं। मुझे लगता है कि भोले बाबा को ना एक लोटा नहीं दो दो लोटा आपको जल चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो भी भाव के साथ, तभी वर्षा हो पाएगी, अदरवाइज वर्षा नहीं होने वाली है जी। चलिए पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ, एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: This is the Google AI.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोता। और समय की बात करूँ तो 5 बजकर यानी कि 38 मिनट हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट। और अब हम बात करते हैं यानी कि आज है 5 अगस्त, आज बात करते हैं भारत के इतिहास के एक खास अहम फैसले की। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकांश विशेष आर्टिकल को हटाने का निर्णय लिया था। अनुच्छेद यानी कि 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ विशेष अधिकांश प्राप्त हुए थे। इस फैसले के साथ ही राज्य का पुनर्गठन किया गया। इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इस फैसलों को लेकर यानी कि देश भर में अलग अलग प्रक्रियाएं देखने को मिली। समर्थकों का मानना था कि इसके विकास, निवेश और देश के बारीकी हिस्सों के साथ बेहतर एकीकरण को बढ़ावा मिले। वहीं कुछ लोगों ने इसके राजनीतिक, संवैधानिक और क्षेत्रीय प्रभावों को लेकर अपनी चिंताएं भी व्यक्त की थी। यह निर्णय भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसका चर्चा आज भी विभिन्न मंचों पर होती है। सो आज का यानी कि जो इतिहास का पन्ना है वो बहुत खास, यानी कि 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय लिया गया था इस दिन। श्रोताओं चलिए फिलहाल अगला गाना भी बहुत ही शानदार है, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करेंगे और भी ढेर।

0: गुरु जी ये चिट्ठी मिली है जी। हाँ चल
1: मेरे। ओए यो कौन है?
0: ठाके ले जूंगी
1: तन्ने के मन है।
2: लो जी अब थारे सामने पेश है हरियाणा के घने फेमस कलाकार भोला शंकर लागणी ग्रुप।

0: चला आज तो मजे आ गए रे, बना दूं।
1: कहा था ना ठा के ले जाऊंगी।
2: Here is how I created a layout just for scalping on Dex T3. Let me show you how I did it. Scalping में हर एक सेकंड मैटर करता है, इसीलिए टर्मिनल भी।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
5: What an idiot.

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो देखिए समय हो चुका है यानी कि 5:51, और अब हम बात करने वाले हैं बुजुर्गों के लिए। यानी कि माँ बाप पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब उम्र ढलती है तो कई बार वही माँ बाप अपने ही बेटे से कहती हैं कि बेटा किराए के लिए पैसे दे दो, डॉक्टर के पास जाना है या फिर कहीं और जाना है। तो ऐसे में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, चाहे आप सफर में जा रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि ऐसे में यानी कि जो सरकार ने फैसला लिया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं उनके लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधाएं दी जाएगी। तो यह सिर्फ एक योजना नहीं है बल्कि उन माताओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता देने की कोशिश है कि किसी माँ को मंदिर जाने, इलाज करवाने या रिश्तेदारों से मिलने के लिए हर बार बेटे से किराए के पैसे मांगने की मजबूरी कम हो जाएगी और नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ, माँ बाप एक सहारा हमारे लिए बनते हैं, और वो क्या बच्चे किस लिए, हर कोई यही चाहता है ना कि जब बच्चे हैं तो हमें बुढ़ापे में हमारे सहारा बनेंगे। जब देखिए पूरी जिंदगी माँ बाप लगा देते हैं बच्चे के परवरिश में, उसे पढ़ाने लिखाने में, शादी करने में, हर चीज, लेकिन जब वही समय आता है तो उस टाइम बहुत से होते हैं कि मेरे माँ बाप के साथ देते हैं, बहुत से चेंज हो जाते हैं, बहुत से वृद्धाश्रम भेज देते हैं कि तुम वृद्धाश्रम चले जाओ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उन्हीं की प्रॉपर्टी पर हम जी रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और इसी अब देखिए जितनी भी माताएं हैं 60 वर्ष से जो अधिक है, जिनकी एज 60 प्लस हो गई है, वो रोडवेज में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। आप जहां घूमना मायके जाना है, भैया भाई के घर जाना है, वैसे भी रक्षाबंधन पर तो फ्री ही रहती है, तो अब तो आप सभी के लिए हमेशा के लिए फ्री हो गया है। खूब एंजॉय करिए और अब पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, बस सीधा बोलिएगा मैं जा रही हूँ, अपनी पोटली उठाइए और निकल जाइए, बस दो झोला अपने साथ रखिएगा। चलिए आते एक और प्यारे से गाने के बाद, उसके बाद लौट कर आएंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईश रानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरब और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स की प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।
3: हे, यू आर ट्यून्ड इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया श्रोता। फिलहाल तो वेदर ने नींद चुरा लिया भैया, और टेम्परेचर की बात करूँ तो 31 डिग्री सेल्सियस, यानी कि मुरादाबाद में बारिश नहीं हो रही है लेकिन आसपास एरिया में बारिश हो रही है। और अब मैं बात करूँ अगर वेदर की, तो देखिए फिलहाल तो दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 6:09 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है आर्जेरीना के साथ, और अब यानी कि आज की तारीख 5 अगस्त और कल है 6 जुलाई। 6 जुलाई में भी यानी कि बहुत से जगह बारिश बताई गई है, यानी कि 52 जिलों में आंधी तूफान और झमाझम बारिश की, मतलब बारिश आने की संभावना जताई गई है। और साथ ही साथ मैं बात करूं ये कानपुर नगर, कानपुर और लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और साथ ही साथ जालौन में बहुत से जगह हैं जो कि बारिश बताई गई है, बारिश की संभावना जताई गई है। और साथ ही बताऊं तो मुरादाबाद के आसपास एरिया में भैया पूरा दिन बारिश हो रहा है, लेकिन पता नहीं मुरादाबाद में क्यों बारिश नहीं हो रही है। अरे भगवान को थोड़ा प्रश्न करिए, उनसे विनम्र विनती करिए कि भगवान जी प्रकट हो जाइए, थोड़ा सा हमें भी गर्म से थोड़ा राहत मिल जाए। यानी कि कल भी बारिश बता रही है भैया मुरादाबाद में, लेकिन सोचिए मत यहाँ नहीं आ रही तो और कहीं नहीं आ रही, आसपास एरिया में बारिश आ रही है श्रोताओं। और साथ ही साथ जो कुछ मैसेज हैं उनको भी शामिल करेंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप, लक्ष्मी कश्यप, संतोष कश्यप, और इनका कहना है कि हम आपके प्रोग्राम में शामिल। और साथ ही साथ बात करूं तो हेलो गुड वाली इवनिंग है रीना जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए।

आपने बोला है साई मंडी या साई बंद, क्या है सर ये आप थोड़ा बताइए थोड़ा अच्छे से, क्योंकि इनका कहना है कि उस तरफ बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, ये विक्की सागर जी कनेक्ट होते हैं। चलिए जी, अच्छी बात है कि आसपास एरिया में बारिश होनी चाहिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो हेलो रीना मैम, गुड वाली इवनिंग है, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप सुनाइए कैसे हैं। और इनका कहना है कि चाय पी लीजिए। ललिता कश्यप जी कनेक्ट हो गई हैं और इनका कहना है कि मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, वो तो सुबह से ही हो रहा है, हवाओं के साथ बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, मैं सो रही है। और इनका कहना है कि मैम 6 अगस्त है और हाँ वो कभी कभी हो जाता है, जुबान से ना स्लिप हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कल यानी कि 6 अगस्त को बताया जा रहा है कि बहुत 52 जिलों में यानी कि बारिश आने की संभावना जताई जा रही है श्रोताओं, बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और ये नवीन नगर के साइड रहती हैं, उस साइड रहती हैं नवीन नगर मुरादाबाद में, तो इनका कहना है कि दोपहर में इधर बारिश हुई थी। ओके जी, फिलहाल भगवान को कहिए कि इधर लाइन पार में भी बारिश हो जाए भैया, बहुत ज़रूरत है एकदम, सच बताऊँ तो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और साथ ही साथ अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे श्रोताओं, जो कि बहुत ही शानदार है, उसके बाद कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:18 हो चुके हैं और आज की तारीख यानी कि 5 अगस्त, और साथ ही साथ यानी कि बात करूँ तो कांवड़ यात्रा की, जिसमें गर्भवती महिलाएं, जो महिला है वो कांवड़ लेने जाती हैं, लेकिन बीच में ऐसा होता है कि अचानक उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, जहां पर पुलिस हमारी जो तैनात है सभी कांवरियों की सुरक्षा के लिए, तो उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद यानी कि 2 जुड़वा बेटे हुए उनके, और दोनों जुड़वा बेटे का नाम यानी कि एक का नाम गणेश, एक का नाम कार्तिक रख दिया गया है। और सभी का कहना है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है, तो उनके बेटे के ऊपर ही आपके 2 बेटे हुए हैं, तो इसीलिए गणेश और कार्तिक नाम रखा जाए। यानी कि देखिए, आपके सुरक्षा के लिए पुलिस जो कर्मी है वो तैनात है, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें ये देखा गया कि आपस में ही कांवड़िया भिड़ने लगे हैं, यानी कि लड़ाई करने लगे हैं, बस थोड़ी सी बाइक में टक्कर लगी उसके बाद लड़ाई शुरू। तो मुझे लगता है कि देखिए, लड़ाई ना करें, क्योंकि आप भगवान के पास जा रहे हैं, आस्था से आप कनेक्ट हो रहे हैं, और आस्था से कनेक्ट होते हैं तो इसमें लड़ाई बिल्कुल नहीं करनी होती है। कोई बात नहीं, देखिए हो जाती है, जब इतनी भीड़ भाड़ रहती है तो थोड़ी बहुत बाइक में टक्कर लगे जाती हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा बस देखिए, गुस्सा आज के टाइम में, आजकल के जो जैन जी हैं वो गुस्सा नहीं सहन कर सकती भैया, उनको गुस्सा इतना ज़्यादा आता है ना कि भाई उनको लगता है कि सामने वाला है क्या, मतलब मेरे आगे वो किसी को नहीं समझते हैं। तो देखिए, फिलहाल तो आप भोलेनाथ की नगरी जा रहे हैं और आपको भी पता है कि महादेव यानी कि जितने शांत है उतने भाई उनको क्रोधित भी उतने ज़्यादा होते हैं, तो बस इसे जितना वो शांत रहते हैं इसे शांत माहौल के साथ आप अपना सफ़र है वो चलते रहिए और हर हर महादेव बोलते रहिए, क्योंकि थका हुआ इंसान भी जब हर हर महादेव का जयकारा लगाता है ना तो उसकी सारी थकान अपने आप छू मंतर हो जाती है। और चलिए, कुछ मैसेज आए हैं, जरा उनको भी शामिल कर लेते हैं। ललिता जी का कहना है कि मैडम बादल बहुत तेज है, यानी कि देखिए वही बात है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, यानी कि बादल तो बहुत तेज छा जाती हैं, यानी कि काली काली घटाएं आ जाती हैं लेकिन बारिश नहीं होती हैं। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं, मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है कि मैम 5 अगस्त के बाद अपने 6 अगस्त आती हैं। बिल्कुल जी, लेकिन 6 जुलाई आपने बोला है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम आपका शो ध्यान से सुन रहे हैं, आप श्रोताओं की परीक्षा लेना चाहती हैं क्या? जी जी बिल्कुल, हम यही देखना चाह रहे हैं कि भैया आप शो ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। फिलहाल कल 6 अगस्त को भी बारिश बताई जा रही है, लेकिन मुरादाबाद के आसपास एरिया में और साथ ही साथ 52 जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है श्रोताओं। तो ऐसे में जहां पर काफी ज्यादा काफी तेज बारिश हो रही है, तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे अपनी जरूरतमंद जो चीजें हैं अपने साथ रखिए, जैसे कि मेडिसिन हो गया, ये अपने साथ रखना आपको बहुत जरूरी है। फिलहाल एक भोलेनाथ के गाना सुनेंगे और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने शो में श्रोताओं, क्योंकि देखिए जब भोलेनाथ की बात होए और भजन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो सकता है कि भैया भोले भंडारी के जो गाना ना होए, और ये गाना भी बहुत ही शानदार है, बहुत प्यारा भजन है। चलिए फिलहाल एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं।

Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 6:31 हो चुके हैं श्रोताओ। और देखिए, एक खास जानकारी, एक खास अपडेट जो मेरे पास है, आप सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सरकार से ये अपील की है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जिन गाड़ियों का यानी कि वैध वर्थ पार्टी इंश्योरेंस नहीं है उन्हें पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। ये नियम है वो बहुत ही जल्द शुरू कर दी जाएगी श्रोताओं। और इसमें देखिए, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम परेशान हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी एक ऐसा नियम पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर यानी कि बात करने के लिए कहा है और ये व्यवस्था यानी कि शुरू करने के लिए कहा है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि लोगों को परेशान करना नहीं, बल्कि सड़क हादसों में पीड़ित लोगों को समय पर मुआवजा दिलाना है। इसीलिए अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया है तो जल्द ही इंश्योरेंस कराइए, अदरवाइज आपको पेट्रोल और डीजल तो नहीं मिल पाएगा भैया, परेशान हो जाएंगे आप। याद रखिए, गाड़ी चलाने से पहले सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, इंश्योरेंस भी उतना ही जरूरी है। सुरक्षित रहिए और नियमों का पालन भी करना बहुत जरूरी है। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भैया देखिए, इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता, इसमें हमारा ही घाटा घाटा है। यानी कि पहले भी नियम शुरू हुआ है, हो चुका है, जिससे यानी कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेंगे। लेकिन भाई साहब, इतने महान होते हैं इंडिया के पब्लिक, जो हेलमेट पहनने से पता नहीं उनको क्या क्या कुछ घट जाता है या क्या हो जाता है, या फिर इचिंग होने लग जाती है आपकी सर में, क्या होता है। यानी कि सिर्फ ये हमारी सेफ्टी के लिए है, आप हेलमेट पहनते हैं तो बहुत से हैं वो नहीं पहनते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि चलो यार निकल जाते हैं, फिर पेट्रोल पर जाके घंटों घंटों लाइन लगाना पड़ता है, ऊपर से वहां पर चेंज करते हैं, किसी से मांगते हैं यार प्लीज एक मिनट के लिए हेलमेट दे दो, पेट्रोल डीजल भरा जाएगा अदरवाइज नहीं भरवा पाएंगे। तो आप वहां पे तो जाके किसी और से मांग रहे हैं, आप अपना भी तो लेकर जा सकते हैं, खुद पहनकर भी तो जा सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहे। लेकिन नहीं, बस दो कदम की दूरी है, आ जाएंगे, लेकिन कब सेकंड का घटना झकझोर कर रख दे इंसान को पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा जो नियम है, जो रूल है, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है शुरू। और साथ ही साथ रणवीर जी जेठालाल जी कहते हैं कि ये दुनिया ये नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, ये दुनिया सिर्फ ये देखती है कि तुम उसके कितने मतलब के हो। रीना मैडम जी, हमारी तरफ से बारिश, इनके तरफ बारिश हो रही है, क्या बात है जी। और इनका कहना है कि

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना एंजॉय कर रहे हैं श्रोताओं। देखिए जब ऐसे ऐसे गाने बजते हैं ना तो भैया हर कोई बैठा हुआ इंसान भी खुद झूमने लग जाता है या अपने आप पर काबू नहीं कर पाता है कि बस उनके दिल से एक ही बस आवाज आती है कि यार डांस करो, एंजॉय करो इस पल को। और इंजॉय करना हर पल को बहुत जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। क्योंकि हम अक्सर ये सोचकर एंजॉय करते रहते हैं दिन को कि कोई बात नहीं, कल फिर अलग तरीके से इंजॉय करेंगे, अलग तरीके से जिंदगी को जिएंगे। अच्छा, जो काम हमने आज नहीं किया ना वो कल करेंगे, यानी कि पहले से हम प्लानिंग बना लेते हैं। मुझे लगता है कि प्लानिंग मत बनाइए, जिस काम को, जो काम आपको करना है, घूमना है, डांस करना है, आपको जो भी काम करना है आज करिए। पहले इस वक्त को एंजॉय करिए, फिर आने वाले वक्त के बारे में सोचिएगा। आपके साथ आपकी आरजे रीना कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 6:39 हो चुके हैं और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मैं आज फिर से कड़क म्यूजिक। आज बॉलीवुड की एक्टर का बर्थडे है जिन्होंने भाई सच बताऊं बॉलीवुड में धमाल मचा दिया। इनके जितने भी मूवीज है बहुत ही शानदार वाले हैं और एक म्यूजिक में प्ले करने वाली हूँ आप सभी के बीच। आपने इसको सुनना है, समझना है, पहचानना है कि आखिरकार गाने की क्या बोल है। और आज किन एक्टर का बर्थडे है, ये गाना उन्हीं का है। फिलहाल ये गाना बताऊँ तो अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में है, लेकिन ये फिल्माया गया है। चलो मैं ये भी बता देती हूँ आपको, करण अर्जुन मूवी से है ये, शाहरुख खान इनके साथ है। लेकिन एक्टर हीरोइन कौन है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही बताना है। और आज इनका हैप्पी वाला बर्थडे होता है जी श्रोताओं। तो चलिए हम आपको पहले इनका म्यूजिक सुनवाते हैं, अपने गाने का नाम बताना है और साथ ही साथ इस गाने में एक्टर हैं उनका भी नाम बताना है। और इस गाने को अक्सर हम गाते ही हैं चलते चलते।

सोचिए सोचिए श्रोताओं कि आखिरकार ये जो म्यूजिक मैंने प्ले किया है यानी कि गाने का क्या नाम है, और साथ ही साथ इस गाने में जो हीरोइन है उनका क्या नाम है, क्योंकि आज उन्हीं का बर्थडे होता है। आपने हमें मैसेज करना है, नंबर है 9837829689 पर मैसेज करना है। चलिए एक बार और म्यूजिक प्ले करते हैं।

चलिए जी, इतना ही इनफ है, आप सोचिए और बताइए कि आखिरकार गाने का क्या नाम है और इसमें एक्टर है जो हीरोइन है उनका क्या नाम है, आप चलिए सोचिए। फिलहाल के लिए गाना आप सभी के लिए।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो यानी कि 6:46 हो चुके हैं। और भाई, आज का जो कड़क म्यूजिक है वो बस सुनना है आपने और मैसेज करना है, गाने का नाम बताना है, प्लस इस जो गाने में हीरोइन है उसका भी नाम आपने बताना है। सोचिए और मैसेज करिए, क्योंकि अगली बारिश सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है। सुनिए, ध्यान से सुने, तभी समझ में आएगा आपको। तो इस गाना आज इनका हैप्पी वाला

चलिए गाइस, अब तो आप समझ ही जाएंगे कि भैया कौन है, क्या नाम है इस गाने का और कौन है इस गाने में हीरोइन। चलिए जी, सोचिए, फिलहाल अगली बारी सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेज की ही है और मैसेज शामिल करेंगे आप सभी के। देखना ये है कि भैया किनका हमारे पास राइट मैसेज आता है और कौन अभी भी है कंफ्यूज।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली इवनिंग है श्रोताओं। आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करो श्रोताओं, तो समय हो चुका है यानी कि 6:51। और आज का कड़क म्यूजिक भी बहुत ही शानदार। मैंने आप सभी से पूछा है, बस कहीं पजल होने की आपको जरूरत ही नहीं थी जी। चलिए सुनिए और उसके बाद

चलिए जी, बस इतना ही इन एफ ए श्रोताओं. और अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मैसेज आया है. इनका कहना है कि आज हैप्पी वाला बर्थडे है काजोल जी का. और जो गाना आपने प्ले किया है यानी कि जाती हूँ मैं जल्दी है क्या अच्छा. फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये बबलू सैनी जी कनेक्ट होते हैं मुंबई महाराष्ट्र से. और इनका कहना है कि जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, यानी कि काजोल जी का ये यानी कि नाम बताते हैं कि आज इनका बर्थडे है. और अगले मैसेज की बात करूं तो हाय दी, और ये हमारे साथ हर्षिता कनेक्ट होती है. और इनका कहना है कि आपकी हंसी बड़ी ही अच्छी लगती है.

साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो जेठालाल जी क्या बात है, अब तक आपने सुन के रिप्लाई किया है काजोल जी का बर्थडे ही और गाना है जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, गलत बात है जी, चीटिंग नहीं, बिल्कुल चीटिंग नहीं करना है, यानी कि विनर होती है ललिता कश्यप जी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आज इनका बर्थडे है, इनका जन्म यानी कि 5 अगस्त 1974 में हुआ था श्रोताओं मुंबई महाराष्ट्र में, और इन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत यानी कि 1992 से किया था बेखुदी मूवी से, लेकिन ये मूवी ब्लॉकबस्टर पर इतनी सफल नहीं हो पाई थी, इतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन जो उनकी अदाएं हैं इनका जो मतलब सराहना बहुत अच्छे से हुआ था, हर किसी ने इनकी तारीफ ही तारीफ की थी। उसके बाद इनकी मूवी आई थी यानी कि 1993 में बाजीगर, यानी कि बाजीगर मूवी ने इन्हें पहचान दिलाई, और इस मूवी में यानी कि ये थी शाहरुख खान के साथ, और इनकी मोस्टली बहुत सारी जो मूवी है शाहरुख खान के साथ ही है, और इनकी जोड़ी भी भैया एकदम खूबसूरत बताई जाती है यानी कि शाहरुख खान के साथ। साथ ही साथ इनकी एक और सुपर डुपर फिल्म आई थी जिनसे ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी, यानी कि 1995 में इनकी मूवी आई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसमें इन्होंने सिमरन का किरदार निभाया था और करोड़ों दिलों में ये राज करने लगी, यानी कि हर किसी का दिल जीत लिया इन्होंने। और देखिए काजोल जी ने बहुत सी ऐसी मूवी बनाई जो हर किसी के भाई देखने को मन नहीं करता है, और इनकी मूवी बड़ी लाजवाब होती है, यानी कि कुछ कुछ होता है और गुप्त इश्क प्यार तो होना ही था, ऐसे इनकी मूवी हैं और भी बहुत सारी मूवी हैं। आपकी जो इनकी मूवी अच्छी लगती है बिल्कुल जरूर देखिए, क्योंकि ये भाई वो एक्टर हैं जिन्होंने काम के करियर में जब इन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम

रखा तो इन्होंने पीछे हटके नहीं देखा। इनका एक ही बात कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। और ये थोड़ी उस टाइम सावली थी, तो सावली की वजह से मतलब हर कोई ये भी कहता था कि ये सावली है, ये है। लेकिन अब देखो भैया, ग्लैमर लगती है ये, इतनी धड़क बेधड़क बिंदास लगती हैं, बट इनकी मूवी माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये तो हर किसी ने देखा ही देखा होगा जी, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो नहीं देखा होगा। और ललिता जी का कहना है कि नवीन नगर में बारिश आ गई है। मुर्रा मैडम जी, ओके जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि नवीन नगर में बारिश आ गई है, नवीन नगर मुरादाबाद में। और फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी कनेक्ट होते हैं। रीना जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, साथ ही साथ गाने बहुत अच्छे प्ले कर रही हूँ। और अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, और इनका कहना है कि जाती हूँ मैं जल्दी है क्या, हीरोइन का नाम है काजल। अब आज की अगर मैं विनर की बात करूं तो ललिता जी विनर हो गई हैं। देखिए बारिश हो रही है आपकी इधर, तो चाय पकौड़े बनाइए और इधर भी पार्सल कर दीजिए। चलिए श्रोताओं, इसी के साथ मैं लेती हूं यहां से फुर यानी कि जाने की इजाजत। कल मिलेंगे आपके साथ, कनेक्ट होंगे यानी कि सेम टाइम सेम जगह ढेर सारी बातें करेंगे। श्रोताओं आप सभी से बस यही कहना चाहेंगे, आपके शहर का यानी कि सामुदायिक रेडियो है एफएम मुरादाबाद 89.6 जो आप सभी का प्यार मिलता है, और रेडियो एक दूसरे से ही सक्सेस हो पाता है। आप सभी का प्यार इसके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है।

0: 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्य प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी तथा कथित यौम इस्तेसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इस सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्सकॉप और गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24,625 पर रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में ईशा रानी, बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिहा, अनमोल खरब और श्रियांशी वलीशेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और ऋतिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
4: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
3: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
4: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी RJ रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खान पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार,
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं, तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही

0: विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुंचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहाँ हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेट बाइक चलाने पर सिर्फ चलान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इनवाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: हम वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है। और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो है अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18 प्लस होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18 प्लस होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
0: हाँ,
1: वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो,
1: हाँ,
0: गाड़ी हो,
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन,
1: हाँ, पॉल्यूशन, पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन, उसका डॉक्यूमेंट पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने आप उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था। तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने, अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है, अगर वो चीज ऑथेंटिक है सही है तो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है, तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है,
1: तो वो भी गैर कानूनी है।
0: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है, क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
1: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते ही हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
0: चाहते,
1: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहनने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी मैंडेटरी है, लिहाजा आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। और कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
0: बहुत से देखा होगा सर आपने, बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
1: 2 मिनट का काम होता है, लेकिन अगर जरा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही, तो आप क्या करेंगे?
0: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
1: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
0: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया, पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे, तो
1: सीट बेल्ट
0: दबने लग जाएगा।
1: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटीज डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग कुछ होती है, तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
0: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
1: सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है, तो लगानी चाहिए आपको।
0: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
1: देखिए, आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चलान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चलान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है, तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए। जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर

0: उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है तब मुझे आगे ड्राइव कर।
1: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
0: हाँ, वो जो ई चालान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चालान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर होगी, आपका चालान कट जाएगा उसमें,
1: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
0: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, ई चालान कट जाएगा आपका उसमें। तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चालान बचाने के लिए चीजें करनी, आप ये सोचिए मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
1: सो अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
0: देखिए, शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, गंभीर अपराध है। इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी। इसके कारण भारी, अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
1: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: देखिए, अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है, अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं। एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
1: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
0: देखिए, ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है, अधिकतर भी हमने देखा, तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है, और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए, आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए हैं, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की। तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
0: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस, उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है, ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
1: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
0: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओं, आपने बहुत ही शानदार गाना एंजॉय किया है और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना, जहाँ हम बात कर रहे हैं काम की। आज भी कई लोग बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए खुद को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, लेकिन जरा सोचिए अगर एक छोटी सी दुर्घटना हो जाए तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? आपके परिवार को। असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे दो कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेन जी है या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है। ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
1: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इस पे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते हैं ना, तो एक बार हैंड फ्री होके चलाते हैं।
1: हाँ, तो वो सब चीजें गलत हैं। वो एक स्टंट जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टंट वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टंट मारते
1: हैं। हाँ, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटें होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पे ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
1: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
1: इसपे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इसपे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
1: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन से आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए, अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं आप उनको कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
1: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहां सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है, उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
1: देखिए, घायल व्यक्ति है यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं, तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है, क्या सीसीटीवी फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते?
1: हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोलेंगे कि भी मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर डैश कैम है क्या?
1: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब

0: गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
1: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
0: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें। बस यही दो तीन चीजें हैं।
1: सर, जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
1: वो तो है सर।
0: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी लॉज है, उसको आप फॉलो करें।
1: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल ना करे और कभी भी शराब पीकर वाहन ना चलाए। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: ये होती रहती हैं गलतियाँ अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। होती रहती हैं गलतियाँ अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। मैं शायरा हूँ रूह से जनाब, मैं हर्फ से हिसाब, शब्दों से बवाल करती हूँ।
4: हेलो जी, हेलो, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मेरा नाम है RJ आनंद और इस वक्त आपने ट्यून इन कर लिया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 आनंद रेडियो। और जैसे कि मैंने बताया यार, जब भी रेडियो पे आनंद आता है तो उन्होंने कुछ स्पेशल लेकर आता है, और आज की ये खूबसूरत सी जो वाइब है ना, वो आपको मिलेगी किसके साथ? आनंद के साथ। एंड ऑफकोर्स अगर मैं आया हूँ तो कोई ना कोई स्पेशल बंदा मेरे साथ स्टूडियो में होता ही है, कोई ना कोई खास मेहमान, कोई ना कोई खास यूथ हमारे साथ होता है जो आपको ढेर सारी बातें बताता है, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता है। आज कौन क्या शेयर करने वाला है, ऑफकोर्स आपको पता लगेगा, बिकॉज आज की जो वाइव है फुल ऑन सेट होने वाली है। बिकॉज यार देखो, आज का दिन बहुत खास है, आज की तारीख बहुत स्पेशल है, और आज स्टूडियो की वाइव भी बहुत स्पेशल है। और आज आप ढेर सारी शेरो शायरी भी सुनेंगे, एंड इसके अलावा बहुत सारी बातें भी सुनेंगे, और आज का ये कॉन्वर्सेशन जो है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। कैसे कैसे बताऊंगा ना अभी आपको, लेकिन उससे पहले वेलकम करते हैं अपने प्यारे से गेस्ट का, जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है। कौन है ये? उनकी प्यारी सी आवाज में आपको हम सुनवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? सबसे पहले वेलकम टू FM मुरादाबाद, हाउ आर यू?
3: हाय आनंद, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है प्रांजल हिंदुस्तानी, और पहचान मेरी सिर्फ इतनी है कि होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। होती रहती हैं गलतियां अक्सर मुझसे, बड़ा मुश्किल है कि मलाल करती हूँ। मैं शायरा हूँ रूह से जनाब, मैं हर्फ से हिसाब, शब्दों से बवाल करती हूँ।
4: क्या बात है, वेरी नाइस। आते ही जो है इन्होंने वम फोड़ दिया है बॉस, तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कॉन्वर्सेशन कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि शेरो शायरी के साथ साथ ना मुझे लग रहा है खाना कुना थोड़ा कम खा के आई है, इसलिए आवाज थोड़ी अंदर से बाहर नहीं आ रही है। मैं जान सकता हूँ मोहतरमा आपका नाम क्या है? बड़ी प्यारी आवाज है आपकी।
3: तो मेरा नाम प्रांजल हिंदुस्तानी है।
4: प्रांजल,
3: प्रांजल हिंदुस्तानी।
4: हिंदुस्तानी क्यों लगाया पहले तो मुझे यही जानना है। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने हिंदुस्तानी क्यों लगाया?
3: हिंदुस्तानी लगाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद रहा है हमेशा से, और वो ये था कि मुझे कभी भी जातिवाद पर, जो कि 1945 से पहले जो चीजें हमें कभी पता भी नहीं थी, हमें उन चीजों में, उन डिविजन्स में बांटा गया, तो मैं इन छोटी मोटी चीजों पर विश्वास नहीं करती कि मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें बांटने का काम करती हैं जातिवाद, धर्म, ये सब हमें बांटने का काम करते हैं।
4: करेक्ट।
3: और सबसे बेहतरीन अगर कोई पहचान मेरी, मेरे पास है, तो वो एक हिंदुस्तानी की है, और मुझे ये नाम हमेशा से बहुत प्यारा था, और फिर मैंने इसको अपना लिया।
4: क्या बात है, वेरी नाइस। मतलब वो कहते हैं ना, जो यूनिक काम करते हैं ना, उनकी पहचान भी यूनिक ही होनी चाहिए, और हम आज इनके नाम को डीकोड करेंगे डेफिनेटली यहाँ पर। वेल प्रियांजल, वेलकम टू FM मुरादाबाद वंस अगेन। आपको स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है पहले ये बताओ?
3: स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ की वाइब बहुत पॉजिटिव ऑरा है, एंड सबसे ज्यादा अच्छी बात है कि आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है।
4: थैंक यू। मुझे लग रहा है कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर है भाई, आज पूरा ऑरा वोरा सब कुछ पढ़ने वाली है। मैं डर रहा हूँ कि मेरी कुंडली ना पढ़ लें, ऐसा तो नहीं होगा ना?
3: ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
4: ऑल राइट, ऑल राइट,
3: बस इतना है कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन।
4: सेम हियर यार, मुझे भी ना आध्यात्मिक की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी में हम कूट कूट के बिलीव करते हैं, और इसीलिए शायद मेरी और आपकी वाइब मैच कर रही है, ये भी हो सकता है, मे बी, है ना?
3: दिस कैन बी अ रीजन।
4: करेक्ट। तो प्रियांजल, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ मुरादाबादीज को, यू नो, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूंगा, तुम इस स्टूडियो में आ तो गई हो, यहाँ माइक पे आज बैठी भी हो, आरजे वाली फील आ रही है या नहीं?
3: आरजे वाली फील आने में तो अभी बहुत टाइम है।
4: ओ, मतलब क्या मेरी चेयर वेयर चुरा के तो नहीं भागने वाली?
3: नहीं,
4: भाई
3: नहीं, ऐसा
4: कभी
3: नहीं,
4: मैं बाहर और ही अंदर
3: करने वाले
4: हूं। ऐसा तो नहीं होगा ना?
3: नहीं, मुरादाबाद के काफी लोगों को आपका, आप पर बहुत भरोसा है, वो उन लोगों की आप आदत बन चुकी है उनको सुनना,
4: ये बात तो
3: मैं उनसे ये चीज नहीं छीन सकती बिल्कुल भी।
4: देखो, मैंने प्रियांजल को पैसे नहीं दिए, सच बता रहा हूँ, इसने अपने मन से बोली ये बात। एंड एक काम करते हैं, प्रियांजल को थोड़ा और हैप्पी करते हैं, एक बढ़िया सा गाना चलाते हैं। ये बताओ आप कौन सा गाना सुनना चाहोगी, और हमारे लिसनर्स को कौन सा गाना सुनाओगी अपना फेवरेट?
3: लेट्स स्टार्ट विद आशिकी 2 का तुम ही हो।
4: अच्छा, ब्यूटीफुल ट्रैक, टाइटल ट्रैक है यार, इतना प्यारा गाना है। मूवी देखी है?
3: बिल्कुल देखिए।
4: क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसीलिए तुम ही हो, मुझे लगता है माइक को देख के तो नहीं बोल रही है तुम ही हो, कभी इसकी भी तमन्ना हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
3: कुछ भी हो सकता है।
4: करेक्ट। वेल गाइस, एक काम करते हैं, बातें कम और गाने ज्यादा होंगे, और कॉन्वर्सेशन भी ऑफ कोर्स होती रहेगी आपके और मेरे साथ, और साथ में प्रियांजल भी है स्टूडियो में मेरे साथ। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, कहीं मत जाइए, रेडियो की सोई बिल्कुल मत घुमाइए, डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक इस गाने के उस पार।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल। आशिकी टू गाई टाइटल ट्रैक सुन के ना सच बता रहा हूँ, मुझे श्रद्धा कपूर की वो प्यारी सी शक्ल याद आ रही है, बड़ी प्यारी सी लगी थी यार मुझे श्रद्धा इस गाने में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आदित्य रॉय कपूर भी बहुत ही डैशिंग लगे थे नो डाउट। वैसे इसमें एक मेरे फेवरेट रेडियो जॉकी है और मेरे बहुत अच्छे कनेक्टिविटी में भी है, उन्होंने भी इस मूवी में जो है डेब्यू किया था। एंड ऑफकोर्स कौन है वो उनके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा वेरी सून। वेल प्रियांजल वेलकम बैक वंस अगेन, आपको कैसा लग रहा है, आप सो तो नहीं गई ना?
1: इतनी हाई एनर्जी है इस स्टूडियो की, इतनी हाई एनर्जी है आप,
0: और इतना बढ़िया गाना था,
1: इतना बढ़िया गाना था, सोने का कोई मतलब ही नहीं है।
0: एग्जैक्टली, सो प्रियांजल मेरे साथ स्टूडियो में है एंड प्रियांजल के बारे में थोड़ा सा मुरादाबाद को बताना चाहूंगा। मैंने ही खुद बताई, मुझे भी नहीं बताया टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो प्रियांजल थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को और मुझे भी बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करती हो, मुरादाबाद में क्या चल रहा है राइट नाउ, क्या कर रहे हो आप?
1: सो जैसा कि आप जानते हो कि मेरा नाम प्रियांजल हिंदुस्तानी है, मैंने बीटेक किया है आईएफटी यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, एंड उसके बाद हमने अपना कॉर्पोरेट जर्नी शुरू किया। बट पैरेलली हमने काफी किताबें भी लिखी हैं। मेरी जो पहली बुक है वो द वॉर्म हग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो कि अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड क्या होता है ना, हमारी लाइफ में हम जब अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, हमारी लाइफ में बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर है कि हम अपने आप को छोटे स्तर पर ध्यान देते हैं, सबको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इंसान हमारी लाइफ में जरूरी है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हम खुद, हम उसे अंडर वैल्यू करते हैं। एंड मेरी बुक वही आपको बताती है कि वेन यू नो टॉक टू योर सेल्फ, यू नो द वाउंड्स दैट You have, and उन जख्मों को आपके सिवा कोई दूर नहीं कर सकता,
0: 100%.
1: आपके दर्द को आपके सिवा कोई समझ नहीं सकता।
0: True.
1: तो that is why मेरी बुक का टाइटल है The Warm Hug of Understanding। मतलब जब आप मेरी बुक फर्स्ट चैप्टर से सेवेंथ चैप्टर तक पढ़ते हो ना, तब आपको लगेगा कि आप अपने आप को एक हग दे रहे हो, यू नो यूर काइंड ऑफ हगिंग योर सेल्फ। क्योंकि कई बार ऐसे लोग भी मैंने जिंदगी में देखे हैं जिन्हें लाइफ टाइम किसी ने कभी हग ही नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को इस तरीके से मतलब समझा ही नहीं गया, उन लोगों को पढ़ा ही नहीं गया कि उनकी एक्चुअल वॉइस क्या थी, वो लोग क्या थे, पर जीवन में आने वाले दुखों ने दर्दों ने उनको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इट्स लाइक कि मेरी नियति कुछ थी पर मैं हूँ कुछ और क्या। सो व्हेन दैट इज व्हाई आई थॉट टू आई हैव यू नो एनकाउंटर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल ऐसे जो रहे हैं हमारे साथ में भी, कि यू नो सो उन लोगों के लिए ये बुक समर्पित है। एंड तब मैंने लिखा था कि डर लगता है जिंदगी से, डर लगता है मुझे सबसे, डर लगता है मुझे जिंदगी से, डर लगता है मुझे सबसे, कभी कभी तो लगता है कि दुख और तन्हाई ही मेरी सहेली है, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी ही एक पहेली है। किस किस से छुपूं, किस किस से मुंह छुपाऊं, किस किस से बचूं, किस किस से मुंह छुपाऊं, कभी अपने आप को सहारा देकर मैं खुद को समझाऊं। समाज का रुख बदल दिया इन दरिंदों ने, हर लड़की का सुख छीन लिया इन हैवानों ने, बदलना होगा अब हर लड़की को, दिखाना होगा अब हर जालिम को, बहुत ले लिया माँ दुर्गा का रूप भी हमने, दिखाना होगा रूप माँ काली का इन हैवानों को। विद दिस नोट, ये मेरी पहली कविता थी, मेरी लाइफ की पहली कविता थी, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ डर था, और डर का एंड भी महाकाली पे हो रहा है तो प्रॉपरली डर भी नहीं था, बट एक डर, आप सोचिए एक 12-13 साल के बच्चे के मन में उन न्यूज को देखकर एक डर पैदा होता है, जिससे उसको लगता है कि क्या ये दुनिया सच में सेफ है मेरे लिए। और आज जिस तरह से रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आज जो एनवायरमेंट हमारे देश का हो चुका है, आनंद क्या आपको लगता है कि हमारे देश के 10, 11, 12, 13 साल के बच्चे बच्चियां क्या सेफ फील करती होंगी, किस फ्यूचर की तरफ वो लोग देख रहे हैं? एंड हाउ कैन वी प्रोमिस टू देम कि जब आप बड़े हो जाओगे तब यू विल बी हैप्पी? हाउ कैन वी? हम लोग बच्चों को इस दुनिया में ले तो आते हैं, पर ये दुनिया क्या सच में उनके रहने लायक है? क्या हमने छोड़ी है? बी इट पॉल्यूशन, बी इट रेप केसेस, बी इट एनीथिंग, हर चीज आज इतनी ज्यादा क्वेश्चनेबल हो गई है कि कुछ भी नहीं है जो सेफ है। आई गेस मैं आपको बोर नहीं कर रही हूँ?
0: इट्स नॉट अ बोर, बट एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन एंड रियल टॉपिक जिसपे तुम बात कर रही हो, और मुझे भी ऐसा लगता है। वेल गाइस, आज का हमारा ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, डोंट वरी, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। वो जस्ट एक अपने दिल की थॉट थी जो उसने शेयर करी है। मुझे लगता है कि ऑफकोर्स हर लड़की को राइट है अपनी बात बोलने का, हर किसी को एक मंच मिलना चाहिए जहां वो अपने दिल की बात रख सके। एंड मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन थी, एक अलर्ट मैसेज था जो मुझे लगता है सबको चाहिए जो तुमने दिया। और मुझे ये भी लगता है कि ये बात सोचने पे ऑफकोर्स मजबूर करती है हम सभी को। बाकी और शोज में डेफिनेटली होगा, लेकिन अभी प्रियांजल हमारे साथ है। हम लोग आज कुछ और यहाँ पर सेशन करने जा रहे हैं अभी, लेकिन कब करेंगे? एक गाने के बाद एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। एक गाना होगा मेरी पसंद का, उसके बाद वी कम बैक। सो डोंट गो एनीवेयर, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। एक बहुत ही प्यारा गाना भी आपने सुना आनंद के साथ। प्रियांजल मेरे साथ स्टूडियो में है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद। एंड प्रियांजल ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें करी हैं। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका लग रहा है, मुझे देखने बड़ी छोटी सी बच्ची लग रही है, लेकिन इनके कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं बाबूजी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया, इन्होंने किताब भी लिख डाली, सोचिए इन्होंने क्या नहीं किया। और भाई साहब हम एक इधर बैठ के बस गाना ही चलाए जा रहे हैं, लेकिन खैर ये भी अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है। हर चीज हर कोई नहीं कर सकता प्रियांजल, राइट?
1: दैट्स राइट। बट जो आप कर रहे हैं मुझे वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है लोगों के।
0: वाओ, कैसे? बट कैसे?
1: ऐसे क्योंकि लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोग आपको रोज सुनते हैं, इतने सारे लोगों की इतनी सारी उम्मीदें जब आपके ऊपर होती है तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। हर दिन एक सा नहीं होता, कभी हमारा मन होता भी है काम करने का, कभी नहीं भी होता है। बट जो आप कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मुझे उस चीज के लिए स्पेस ही नहीं रह जाता। आई यूज टू 100% एवरी डे, विच मैटर्स अ लॉट, विच सेज अ लॉट अबाउट व्हाट यू डू। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट इट।
0: थैंक यू सो मच। कोई तो है जो बिना पैसे के इतना पसंद कर रहा है? बाकी सब लोग तो पैसा मांगते हैं आप उनसे कि हम आपकी तारीफ तभी करेंगे। इस जोक सपाट में मजाक कर रहा हूँ। प्रियांजल आजकल का प्यार ना बड़ा ऐसा वाला हो गया कि मतलब जैसे ताजा ताजा फूल खिला, तोड़ा तो मामला खराब है ना, ऐसा वाला। मतलब अभी प्यार हुआ, थोड़ी देर बाद ब्लॉक भी हो गया है,
1: काफी सारे
0: एक्सपेक्टेशन। और यू नो ऐसा लगता है कि आजकल ना अट्रैक्शन ज्यादा होता है प्यार कम, बट लोग अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं यार, और थोड़ी देर के बाद फिर वो उनका दिल टूट जाता है, फिर उनको रोना धोना भी नहीं आता। एक टाइम था जब प्यार के लिए लोग दूसरे के लिए मरते भी थे और रोते भी थे बहुत ज्यादा, उनके लिए चिट्ठियां लिखी जाती थी। आजकल तो खैर ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आजकल के प्यार को लेकर तुम्हारी क्या सोच है? यू कैन टेल मी, मुझे जरा बताओ। आप भी आज के जमाने के हो, हम भी आज के जमाने के, आप क्या सोचते हो?
1: हम बिल्कुल आज के जमाने के हैं, पर प्यार के बारे में जो मेरी सोच है वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल है। आई एम अ वेरी
0: सेम हियर, सेम हियर।
1: मुझे तो वही लगता है कि अगर किसी पे दिल आ गया तो आ गया, फिर कहीं नहीं जाएगा।
0: वेरी नाइस।
1: तो उसपे मैंने कुछ लिखा था कि मेरे सिवा भी दुनिया देखती है, आप इन आंखों को बेईमान क्यों नहीं कहते।
0: वाह।
1: ये दो लाइंस लिखी थी मैंने कि अगर किसी एक इंसान पर आपका दिल आ गया तो यू नो इट शुड बी फाइनल।
0: करेक्ट।
1: जिंदगी तबाह हो जाए बस वही रहना चाहिए,
0: और मजा भी उसी में है।
1: उसी में मजा है।
0: आप अलग अलग चीजें ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है जो प्यार है ना वो सच्चा है, और सच्चा प्यार कभी भी खराब नहीं जाता है।
1: बिल्कुल
0: है ना। और जो कहते हैं जो पहली मोहब्बत होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म आपका साथ देती है।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आजकल की जनरेशन में वो प्यार की कमी है।
1: प्यार की कमी है, पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन प्यार को जिस तरीके से पढ़ पा रही है, समझ पा रही है, वो पहले की जनरेशन के मुकाबले थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे, क्योंकि आज की जनरेशन मेंटल हेल्थ में भी उतनी ज्यादा जागरूक है ना, कि वो एक दूसरे के इमोशंस को, फीलिंग्स को समझते हैं। आई नो कि काफी लोग मजाक बनाते हैं कि जेन ज़ी हमेशा ऐसी ऐसी टर्म्स
0: लेके आते हैं। मुझे सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, बट मुझे जैसे लगा कि यार प्यार जो है ना वो ओल्ड स्कूल है, मतलब पुराने वाला प्यार जो था वो बहुत ही बढ़िया वाला था, क्योंकि वो जेन्युइन वाला था। आजकल का प्यार मुझे थोड़ा सा ना मतलब ऐसे वो अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग देता है, प्लस ट्रस्ट तो है ही नहीं। मैं सच बोलूं तो मतलब आपका क्या मानना है? जैसे अभी आप कह रहे हो कि आज का प्यार जेन्युइनली बहुत ज्यादा पहले से बेटर है,
1: really? हाँ।
0: थोड़ा सा बताओ मुझे।
1: मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश दिल से करते हैं, ऐसा नहीं है।
0: वो चैट जीपीटी की हेल्प भी लेते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, वो इंस्टाग्राम की हेल्प लेते हैं, गूगल पे जाके पूछते हैं।
1: इवोल्यूशन हर जगह जरूरी है, और अगर ए हमारी लाइफ में आ रहा है हम उसका यूज करें, दैट इज वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन के लोग सिर्फ बेंचिंग या यू नो ऐसा ब्रेकअप करके दूसरे से पैचअप कर लिया, ये एक हिस्सा है इस समाज का जहाँ पे ऐसा हो रहा है, पर आज भी ऐसे लोग हैं जो दिल से मोहब्बत करते हैं।
0: 100% आई एग्री विद यू। है मुझे ऐसा लगता है प्रियांजल, अगर मैं ऐसा हूँ जो दिल से प्यार करता हूँ तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे।
1: बिल्कुल होंगे,
0: हमें सिर्फ ढूंढने की जरूरत है और उनको तराशने की जरूरत है। मुझे लगता है अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं ना आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया अच्छी नहीं हो जाती, बट ऐसा है, अगर आप अच्छे हो तो आपकी पूरी दुनिया अच्छी है। वो कहते हैं ना अगर आपके नजरिए नजरें अच्छी है तो नजरिए अपने आप बनेंगे, एक कहावत भी है ना। तो मैं तो खैर बिलीव करता हूँ, लेकिन आजकल के प्यार के बारे में जो आपने बोला ये खैर मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी कि आजकल का प्यार पहले के प्यार से ज्यादा स्ट्रांग है। वेल गाइज आपका इस पे क्या कहना है? डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896, दिस इज माई ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पे आप मुझे बता सकते हैं। प्यार की ढेर सारी बातें चल रही है, तो प्यार वाला गाना केसरिया ट्रैक लेकर रहा हूँ आपके लिए, अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही प्यारा गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे और जल्दी से लौट कर आएंगे।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास UP कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
4: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
3: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
5: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
6: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।

0: अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
1: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहाँ के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहाँ खुश है।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
2: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
3: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
4: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा, जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ये ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। ये भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रूपये पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अखिल और आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक अखिल संग। अगले एक घंटे आज हम बात करेंगे दिल की मुस्कुराहट की और उन लम्हों की जो जिंदगी को खूब खूबसूरत बना देते हैं। तो साहब, कल जो हमारी बातें हुई थी कुछ रह गई थी अधूरी कि मुस्कुराहट क्यों है इतनी ज़रूरी। मुस्कान किसी की पहचान नहीं होती, खुशी हर पल मेहमान नहीं होती। जिंदगी में गम भी आते हैं ज़रूर, पर हंसी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। तो आज हमें जो है ना, हम जितनी भी आज बातें करेंगे खूब अपनी हंसने की और थोड़ी दिल से जुड़ी हुई बातें, क्योंकि मौसम भी हो रहा है मस्त, थोड़ी सी बूंदाबांदी तो हो गई है, रिमझिम रिमझिम। आप लोग भले ही इस समय गाड़ी में हो या फिर घर में हो सुन रहे हो, मगर जो हवा चल रही है ना भाई इस समय ठंडी ठंडी, उसका आनंद ही कुछ और है। तो ज़रूरी नहीं कि एसी हमेशा ऑन रखना है गाड़ी का, कभी कभी शीशे नीचे उतार के बाहर की भी हवा ले ली जाती है। चलिए आज अपने पहले कॉलर से हम बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार अखिल सर, कैसे हैं?
0: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है। लंबी है मंजिल है पास है किनारा, लंबी है मंजिल है पास है किनारा, दोस्त की है एसएमएस हमारा, भूल गए नंबर और नाम हमारा अखिल भाई, भूल गए आपको रिहान भाई को प्यारा।
0: नहीं नहीं रिहान भाई, आपका नाम और नंबर अभी हम नहीं भूले हैं, आपका नंबर जैसे ही मिलता है देखिए खुद ही उठा लिया हमने एकदम।
1: बिल्कुल बिल्कुल राय, क्यों कल की मेहनत बिल्कुल खाली चली गई हमारी।
0: क्यों ऐसा क्यों?
1: चार कॉल है करीब, चार कॉल में एक कॉल नहीं उठाई थी आपने, बस लंबा टाइम कर दिया आपने।
0: नहीं साहब, अब होता है क्या है, जैसे आप हमारे स्टेशन के चाहने वाले रेडियो स्टेशन के, ऐसे ही आपको ही पता है कितने श्रोताओं के कॉल आ जाते हैं उससे, और कैसे कैसे हम बिजी हो जाते हैं।
1: हाँ ये बात है यार, आपने बात ही कह रहे हैं आप।
0: तो आज कौन सी शायरी सुनाएंगे आप बढ़िया सी? और
1: सारी आपको सुनाई पड़ेगी, ए हवा उधर जाती होगी दिल का हाल उन्हें सुनाती होगी, ए हवा उधर जाती दिल का हाल उन्हें सुनाती होगी, आपने दिल को चुभ लेगा रेहान भाई की याद आती होगी।
0: अरे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, मतलब जो भी दिल पे हाथ रखेगा उसे रिहान भाई की याद आएगी या सिर्फ रिहान की याद आएगी?
1: बिल्कुल राइट, क्यों हमेशा के लिए जिंदगी जब तक जिंदगी रहेगी जब तक याद रहेगी आपको।
0: ये तो है, रिहान भाई का नाम तो याद रहेगा। और रिहान भाई इस समय कर क्या रहे हो, छत पे हवा के मजे ले रहे हो, क्या कर रहे हो उस समय?
1: अरे इस टाइम पर अभी कम से कम 6:30 बजे से बारिश, अब बारिश रुकी है, 1.5 घंटा पूरी बारिश हुई है।
0: तो अब जाके बारिश रुकी है, तो बारिश रुकने के बाद क्या किया जा रहा है? मजे ले रहे हैं आप? तो ये बताइए रिहान भाई, दिन में कितनी बार हंसी के ठहाके लग जाते हैं आपके?
1: दोबारा एक बार बताइए।
0: कितनी बार दिन में हंसी के ठहाके लग जाते हैं आपके?
1: अरे हंसी की जब हंसी आती है तब रुकती है, हंसी रुकती है
0: जब भी हंसी आती रुकती नहीं है।
1: और
0: तो हंसी जो है, कभी हमें भी बात बताओ कि जिसमें कभी कभी आपकी हंसी नहीं रुकती, क्या ऐसा आपके साथ हो गया जो हंसी रुकी नहीं आपकी?
1: जैसा कोई दोस्त मिल गया है नहीं आता है, मतलब रेहान भाई वो पार्टी करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगी, ये कर दो तो हंसी तो जरूर आएगी।
0: हंसी तो आ ही जाती है रिहान भाई, जब कोई एकदम अचानक दोस्त आके कहता है हाँ भैया आज पार्टी कर दे यार, बहुत टाइम हो गया तूने पार्टी नहीं करी।
1: आज दोस्त आज पकौड़े का इंतजाम कह रहे यार, पकौड़े तो आपने बंदे बारिश लोग पकौड़े।
0: सही है सही है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए रिहान जी, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: इनका नाम है निगाह है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: क्या बात है, तो आप सावन के झूलों ने आपको ही बुला लिया?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही है।
1: मैं कहना चाहता हूँ अखिल भाई, मैंने जरा थोड़ा बहुत गौर न करी, जो मैंने पहले ही बताया था आपको, तो मस्ती गुरु बना लो ना आप, जो मतलब मस्ती ऐसी गुरु बना लो जो मतलब मैसे रहेंगे और गाने आते रहेंगे और मेरी आवाज मेरी पहचान सकते हैं?
0: आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं, हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे बना रखा है इस समय एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, आप एक बार चैनल हमारा फॉलो कर सकते हैं उसमें। व्हाट्सएप पे आप जैसे ही डालेंगे ना, जिसमें चैनल पता चल जाते हैं, चैनल्स आप सर्च करते हैं तो आप जैसे ही डालेंगे एफएम मुरादाबाद 89.6 आपको अपना एफएम मुरादाबाद का चैनल नजर आ जाएगा, उसमें हम खूब बातें भी कर रहे हैं, अपडेट भी करते रहते हैं।
1: तो आप बता रहे हैं, मगर पहले से नहीं बताया था।
0: चलिए साहब, कभी कभी कुछ देखा आप बताया तो हंसी आ गई, नहीं आ गई।
1: और मैं कहना चाहता हूँ, सामान का मैंने चल लिया अखिल भाई।
0: हाँ जी,
1: मतलब सामान का मैंने ये चल लिया है, जैसे लोग कांवर कांवर निकलते हैं, कांवर लोग रस्ते में छोड़ते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: और थोड़ा सोच समझ के लोग निकलना चाहिए, और यहाँ गाड़ी अगर जा भीड़ हो वो भीड़ से थोड़ी हटे और कांवर को निकलना दे।
0: हाँ,
1: आते
0: पहली पहली जो प्रिफरेंस है वो भाई पहले कांवर को निकलने दें, उसके बाद अपनी गाड़ी थोड़ी साइड से चलाएं।
1: दे, दे, दे, दे, दे,
0: और गाड़ी दे, बिल्कुल भी तेज स्पीड में बिल्कुल भी नहीं चलाएं इस समय। अगर जो भी गाड़ी, क्योंकि हाईवे पे अगर आप चला रहे हैं तो अमूमन हर कोई स्पीड पे चलाता है, कोशिश करें कि थोड़ी सी स्पीड कंट्रोल में करके चलाएं।
1: वैसे भी क्या बोलते हैं, जो पुलिस वालों को दिक्कत ना पड़े, जो मतलब पुलिस कुछ भी ना कहे, और थोड़ा अपने अपने हाथ से चलाए और कामर वालों को करना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात कही रियान भाई, प्रशासन इस समय बिल्कुल बहुत तेज और बहुत ही एक्टिव है और बहुत ही अच्छा सहयोग दे रहा है। कांवर ये सब आराम से, कहते हैं ना, जैसे उन्हें अपने मंजिल पे पहुंचना है वो पहुंच रहे हैं।
1: जी, आप तो मुरादाबाद से, मुझे ऐसा लग रहा दिल्ली से मुरादाबाद तक भी आए हुए थे, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा,
0: चलिए रियान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, और इसी बहाने आपकी शायरी सुन के थोड़ी बहुत तो हंसी आई हमें।
1: थैंक यू
0: रियान जी। तो श्रोताओं, ये जुड़े थे हमारे साथ, रिहान साहब कह रहे हैं कि आपका कॉल मिलता नहीं है, आपका कॉल लगता नहीं है, आप बहुत ही वेटिंग में लगते हैं। हाँ जी, कभी कभी लिसनर्स हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है साहब, हर एक के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा जब वो अपना समय भी हमें दे रहा है। तो चलिए सुनते हैं रिहान साहब की फरमाइश पे गाना और आते हैं इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद। तब तक आपकी भी अगर कोई फरमाइश है और आपका कोई गाना है या कोई शायरी है जो आप सुनाना चाहते हैं आज, आप तो 9837896896 पे ज़रूर कॉल करें, हम वेट कर रहे हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हमारे पास मैसेज आया है नेहा जी का लखनऊ से, कहती है ऑफिस का स्ट्रेस बहुत था लेकिन घर जाके बच्चों के साथ हंसी मजाक करती हूँ तो सारी थकान दूर हो जाती है। क्या बात कही नेहा जी आपने। और इस समय मेरे ख्याल से लखनऊ में भी थोड़ी बहुत तो बारिश हो ही रही होगी, थोड़ी बहुत नहीं तो अच्छे से तो हो ही रही होगी। बच्चों की जो हंसी है ना, दुनिया की सबसे खूबसूरत थेरेपी है। जब जाओ और बच्चे एक बार आपके पास पहुँचें और कहें मम्मा मम्मा आप क्या लेके आई हो, तो कुछ ना कुछ तो टॉफी वॉफी निकाल के या कुछ चुपचाप एक सरप्राइज गिफ्ट दे के, और जब उनके चेहरे पर आ जाती हंसी वो आ जाती मस्त। मगर कभी कभी फरमाइश ना पूरी हो तो उनको मनाना भी पड़ता है यार, वो भी एक अलग ही मज़ा है। रोहित जी कहते हैं आशियाना MDA से, मैं रोज़ कॉमेडी वीडियोस देखता हूँ, मूड फ्रेश हो जाता है। क्या बात है रोहित जी, आप जो हैं बहुत बढ़िया काम करते हैं। और कॉमेडी जो है ना, मतलब इतने आजकल कॉमेडी शोज़ और इतने कॉमेडी के आजकल वीडियोस आती रहती हैं, हर अगर आप स्क्रॉल करते हो रील पे तो कोई ना कोई कॉमेडी का सीन आपका चलता रहता है, आपका पूरा माइंड रीड कर लेते हैं रील्स और जो भी आप ऐप पे देख रहे होते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर, और आपको उसी तरह की वीडियो और कॉमेडीज भी आपके पास आनी चालू हो जाती हैं। तो अच्छी बात है, थोड़ी सी हंसी चलनी चाहिए। और कभी कभी तो जो आप वीडियोज देख रहे हैं कॉमेडी की, लोग अप्लाई भी करना चालू कर देते हैं अपने ही घर में, अपने ही फैमिली दोस्तों के साथ वो कॉमेडी वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा, कहते हैं ना, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है इसी बहाने। एक हमारे साथ लिसनर अभी जुड़े हैं, चलिए करते हैं उनसे बात और देखते हैं वो क्या लेके आते हैं मुस्कान चेहरे पे। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका?
1: सर मैं जिला रामपुर ग्राम जहांगीरपुर से आपका नेम स्वता मोहम्मद इशरत आपसे बात कर रहा हूँ। सर
0: इशरत जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप रामपुर में, कैसा मौसम है?
1: सर रामपुर में तो 3 घंटे लगातार बारिश हुई है, काफी सुहाना मौसम हो गया सर, काफी अच्छी बारिश हो गई है देखा जाए तो 3 घंटे में।
0: 3 घंटे एकदम झमाझम हो गया है
1: जी सर, जितने भी धान है इस टाइम फूली है।
0: चलिए साहब बहुत बढ़िया, तो कहीं पानी वानी तो नहीं भरा है, आप तो आराम से हो सही जगह?
1: हाँ सर हम तो आराम से हैं, अब दिन में जाकर देखेंगे खेतों में कितना पानी हुआ कितना नहीं।
0: सही है सर,
1: बारिश सही है।
0: तो आज कोई ऐसी ही एकदम झमाझम वाली शायरी भी सुना दीजिए।
1: कहते हैं कि दर्द दे गए सितम भी दे गए, दर्द दे गए सितम भी दे गए, जख्म के साथ दो मरहम भी दे गए, दो लफ्जों से कर गए अपना मन हल्का और हमें कभी न रोने की कसम दे गए।
0: क्या बात है, क्या खूब कही है ईश्वर जी, बहुत बढ़िया। ईश्वर जी एक बात बताइए, कभी आपने जाने अनजाने में किसी अनजान को, किसी अनजान शख्स को स्माइल पास करी है? कि होता है ना कि भाई हम जानते तो है नहीं, तब भी उसको देख के पता नहीं ऐसा लगा, और कुछ आपने स्माइल पास करी कभी?
1: बिल्कुल सर, जैसे मुझे कोई बंदा अच्छा लगता है, मतलब आदत अच्छी लगती है तो मैं काफी करता हूँ।
0: सही है, तो वहाँ से भी ऐसी स्माइल से जवाब आ जाता है या कोई और स्माइल आ जाती है आपके पास?
1: सर वो देखते हैं, मुंह को देखते हैं कि स्माइल क्यों कर रहा है बंदा, क्या वजह है, ये मेरा जानने वाला है क्या है, मतलब दूसरा बंदा मतलब सोच नहीं पाता है,
0: कंफ्यूज हो जाता है।
1: वो देखता तो है सही करके चेहरे को, स्माइल क्यों कर रहा है, अभी बोझ नहीं पाता सर। सर वो ये सोचना पड़ जाता है या तो ये मेरा जानने वाला है, फिलहाल यही सोचता दूसरा बंदा,
0: हाँ तो थोड़ी देर तक तो वो यही सोचता रहता है कि कहीं ना कहीं तो मैंने इसे देखा, कहीं ना कहीं तो ये कोई मेरे को जानने वाला ही होगा।
1: जी जी सर, मेरी आदत अच्छी, मैं दोस्त बनाता रहता हूँ, वो जानने वाला हो या अनजान हो, मेरी आदत अच्छी, मैं चाहता हूँ सबसे हंसना बोलना खुशी से रहना, नए नए दोस्त बनाना।
0: तो आप जो है ऐसी स्माइल पास करते रहते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: सही है सर। ईश्वर जी बहुत ही बढ़िया है, बस देख के आराम से, कहीं कहीं कहीं सामने से स्माइल ज्यादा आया तो ये नहीं कि हमें भी स्माइल पास करते थे।
1: हाँ तो जैसे हमने स्माइल कर दी और दूसरे बंदे ने कर दी तो फिर उसमें बात आगे बढ़ जाती है, एक तरफ सही नहीं रहती ना वो।
0: सही कह रहे हैं सर, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लगा आपने आज जरा बात जो हमने पूछी आपने पूरा खुल के उस पर जवाब दिया।
1: जी सर,
0: तो कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप स्माइल के साथ?
1: सर आज मूवी का नाम है सिर्फ तुम, सर इसमें बहुत ही प्यारा सॉन्ग है कि एक मुलाकात जरूर ये सनम, सर आज के शो में यारा सॉन्ग प्ले कर देना, ये वाला सॉन्ग आपको डेडिकेटेड सर, आप आइए आपको टाइम चलाएंगे गर्मा गर्म।
0: चाय? हाँ साहब, चाय तो गर्म ही पिलाना, ठंडी मत पिलाना। ना कोल्ड कोल्ड कॉफी पिला देना साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय गरम गरम पिलाई जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: ठीक है साहब, धन्यवाद ईश्वर जी आज जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा।
1: ओके नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये थे ईश्वर जी, कह रहे हैं कि साहब मौसम हो रहा है ठंडा, आप आइए जल्दी, हम आपको पिलाएंगे चाय गर्मा गर्म। तो जरूर साहब आएंगे, रामपुर भी आएंगे और जरूर गर्म गर्म चाय पियेंगे। अभी तो जरा स्टूडियो में थोड़ा धमाल मचा लें, आपकी पसंद का गाना बजा लें, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमारे पास शायरी आई है गुलफाम जी की, क्या बात है गुलफाम जी। गम कितने भी बड़े क्यों ना हो, मुस्कान कभी छोड़ना मत, ये वो चिराग है दोस्तों जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। गुलफाम जी, जिगर कॉलोनी। क्या बात है गुलफाम साहब, आपने बहुत ही बढ़िया शायरी लिखी है। चलिए साहब, आपके पास भी कोई ऐसा नगमा या ऐसी कोई बात हो जो हमसे करना चाहें, तो 9837896896 पे ज़रूर कॉल करें या फिर मैसेज करें। कॉल एक बार में नहीं उठे तो ज़रूरी नहीं दोबारा नहीं उठेगी, दोबारा भी कॉल करें और मिलाते रहें, हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए सुनते हैं बढ़िया से गाना, सिर्फ तुम मूवी का एक मुलाकात है ज़रूरी सनम, और आते हैं इसके बाद अपनी मुलाकात करने वाली दिल से दिल तक वाली।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: पवन करे शोर,
1: शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: एक बार फिर से स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सावन का महीना है, पवन करे शोर, ये इस गाने की फरमाइश थी दिलजीत कोहली जी, शगन कोहली जी, माधव कोहली जी और रीना कोहली जी। तो पूरा मजा लीजिए सर, सावन का महीना है, पवन तो शोर करेगा ही करेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे, बातें करते हैं। हमारे पास मैसेजेस आए हुए हैं आज खूब सारे, क्योंकि मौसम ही ऐसा है इस समय कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिल की बातें तो निकल ही रही हैं। और आप लोगों को एक बार फिर से बताएंगे कि फ्यूजन्स एंड फैशन 9 अगस्त को मिगलानी सेलिब्रेशन पे एक एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तीज और रक्षाबंधन की एग्जीबिशन कम सेल है, फ्री एंट्री है, सुबह 11:30 बजे से है, जहाँ पे आपको मिलेगा खूब सारे स्टॉल्स जहाँ पे आप कर सकते हैं शॉपिंग और गिफ्ट्स भी ले सकते हैं अपने लवेबल्स के लिए। आने वाले हैं रक्षाबंधन, तो करिए तैयारी और पहुँच जाइए एक ही जगह जहाँ पे मिल जाएगा सारा सामान आपको। ट्रूप एंड आइसक्रीम वहाँ पे फूड पार्टनर्स हैं और खूब बढ़िया बढ़िया आपको आइसक्रीम भी मिलेगी। हमारे पास मैसेज आया है, सर हाय अखिल सर, गुड वाला इवनिंग है, जान गए आप कौन हैं, कश्यप जी, ललिता कश्यप जी, कैसी हैं आप, पूरी उम्मीद है मस्त होंगी और इस समय बारिश का आनंद भी ले रही होंगी, आप कैसे हैं, आपकी आवाज़ का बोलने का अंदाज़ बहुत प्यारा है, धन्यवाद ललिता जी। सर मेरी छोटी बेटी है जो मुझे हर समय कुछ ना कुछ चुलबुलाती रहती है और जब मैं उसे मारने चाहती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है, होता ही है बच्चों को, तो मतलब आप वो शैतानी नहीं करे तो फिर बच्चे कैसे हैं। बहुत अच्छा बचपन दिखाई देता है मुझे और मैं उसकी पिटाई नहीं कर पाती हूँ और हंसने लगती हूँ। तो बिल्कुल सही कहा आपने लीता जी कि जब भी छोटे बच्चों को आप कभी भी कुछ डांटते, कितने भी आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन पर कंट्रोल कर लें, कहीं ना कहीं अंदर से इतनी हंसी आ रही होती है कि बताओ इसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा मैंने डांट दिया, और फिर बाद में हल्का सा रियलाइज भी होता है यार गलत डांट दिया, मगर उसका मज़ा ही कुछ और है जब बच्चा एकदम सीरियस लेके आपको सुनने लगता है ना और अंदर से हंसी आ जाती है यार मैं कहीं गलत तो नहीं डांट रही हूँ उसे, हो जाता है ऐसे। सर हमारा गाना सुना दीजिएगा, आपने कल सुनाया नहीं था, पक्का पक्का ललिता जी आज आपका गाना ज़रूर हम सुनाएंगे। हमारे साथ हमारी कॉल पे भी जुड़े हुए हैं हमारे लिसनर, चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं। हेलो दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप अपना नाम बताइए और इस समय कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताइए। तो इस समय कैसा मौसम हो रहा है साहब वीरपाल जी?
1: मौसम में सर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदे आ रही हैं और वैसे बारिश तो सर नहीं हो पा रही है, बस ये थोड़ी थोड़ी मौसम मस्त है वैसे, ना तो गर्मी है ना सर्दी है, मीडियम अच्छा है।
0: बहुत बढ़िया, तो कोई शायरी सुनाएंगे आज?
1: हाँ सर सुनाएंगे जरूर, आज ही आओगे तो शायरी सुना देंगे आपको।
0: तो जरूर जरूर जरूर शुरुआत कीजिए कोई बढ़िया सी शायरी की।
1: शायरी है सर, दिल इस दौर में लगाया नहीं जाए, किसी को भी हम सफर बनाया ना जाए,
0: क्या बात
1: है, जख्मों पर नमक छिड़कते हैं यहाँ, जख्मी दिल किसी को भी दिखाया ना जाए।
0: क्या बात कही है, क्या बात कही आपने, बहुत ही बढ़िया और एकदम कहते हैं ना दिल से छूने वाली शायरी कह दिया आपने। तो भी अरे सर जरूर जरूर, छोटी सी शायरी है तो जरूर सुनाइए सर।
1: जा रहे थे सैर कर रहे, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ जंगल ही जंगल, एक तरफ शमशान थे, शमशान में बनी थी हड्डियाँ और जब हड्डियों में ठोकर लगी तो हड्डियों के ये बयान थे, वो चलने वाले जरा चल संभल कर, हम भी गर्मी इंसान थे।
0: क्या बात कही है साहब, बिल्कुल सही बात कही है और बिल्कुल कहते हैं टू द पॉइंट कही है कि भाई साहब चलना है तो संभल के चल लो, हम भी एक समय में इंसान थे जो आज यहाँ दफन हो गए। सर जिंदा दिल रहना चाहिए, एकदम हंसते रहना चाहिए और आप जो हंसी है ना आपकी भले ही रुक रुक के है मगर हंसी सर बिल्कुल एकदम झकास है। आज वीरपाल जी हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने सभी लिसनर से जिन जिन की कॉल आ रही है, और हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि कभी आपने किसी भी अनजान व्यक्ति को देख के, किसी भी अनजान शख्स को देख के कभी स्माइल किया है आपने, और सामने से स्माइल मिली है आपको?
1: नहीं सर, मैंने सिर्फ एक को ही, बस, और किसी को नहीं।
0: तो सर आपने जब एक को ही स्माइल करी तो वहां से स्माइल आई थी, नहीं आई थी आपके पास?
1: हाँ सर, बात हुई थी और दस साल हम एकदम क्लब फ्रेंड रहे थे, उसके बाद में सर बिछड़ गए, फिर बिछड़ गए तो बस।
0: तो फिर क्या करें, फिर बिछड़ने के बाद मिले नहीं?
1: नहीं सर, फिर नहीं मिले सर।
0: चलिए साहब, आपने 10 साल भी इतनी प्यारी सी स्माइल अपने साथ रखी और इतना, कहते हैं ना, साथ में रखा और मुस्कुराहट के साथ वो आपने 10 साल निपटाए, बहुत ही अच्छे, मतलब यादगार रहे आपके पास, मेमोरीज तो हैं सर।
1: पिताजी ने, पिताजी समझते तो थे यार ये कोई टेंशन है, इसलिए वहाँ मुझे बिजी कर दिया, ये 5 कंटेनर बनवाए थे वहाँ, बोले तेरा ये काम है, देखिए कंटेनरों को जो है अपनी फिलिंग करो और जो है भेज दिया करो।
0: अच्छा, तो आप कंटेनर्स, कंटेनर का काम करते हैं?
1: हाँ, 5 कंटेनर ले रहते हैं, ये शेयर गुप्ता है, कोल इंडिया है, जानको है, इसमें माल जाता है, तो मुंबई जाए या तमिलनाडु रोड जाए, कहीं भी जाए वो भेज देता हूँ अपने बंदे।
0: बहुत ही बढ़िया वीरपाल जी, बहुत बढ़िया, और हमें समय देने के लिए और भी शुक्रिया, क्योंकि आप अपने व्यस्त समय में जब आप FM सुनते हैं और कॉल मिलाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम आज भी जो हैं लोग जो हैं दिलों में, दिल से अपनी बातें निकालते हैं और FM के द्वारा साझा भी करते हैं। बहुत ही दिल चाहिए, बहुत ही बढ़िया, कहते हैं ना, एक समय का उपयोग आपने किया हमारे साथ, धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए भी। सर हो जाता है ऐसे, ऐसे मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, अगर नहीं सुनूं मैं अपने पसंद का गाना तो नींद ही नहीं आती है। धन्यवाद वीरपाल जी। तो ये थे आज वीरपाल जी, जिनके साथ बात करने में भी कितना मजा आया, आप लोगों को भी मुझे पूरी उम्मीद है सुनने में ही, कैसे अपना उन्होंने बताया कि मैं मुस्कुराहट मैंने एक अपने प्यारे शख्स को दी और 10 साल तक उस मुस्कुराहट के साथ, कहते हैं, रहे उसके साथ, और भले ही चाहे अंजाम कुछ भी रहा हो मगर कुछ होती हैं बातें, कुछ मुस्कुराहट ऐसी होती हैं जिन्हें आप समझना नहीं चाहते या फिर अपने दिल से जुड़ी हुई होती मुस्कुराहट, तो उस स्पेशल पर्सन के लिए वो ही, जैसे उसका ख्याल आया तो वैसी ही मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आ गई, तो बहुत बढ़िया। एक बढ़िया सा गाना करते हैं प्ले, थोड़ा सा आज के समय का और मस्ती भरा, आप लोग भी कहीं ना चिपके रहें गाड़ी की सीट से और सीट बेल्ट जरूर पहन के रखें और कॉल करें 9837896896 पे, जहां करेंगे आपकी दिल की बात, कोई ऐसी मुस्कान हो साहब तो हमें जरूर बताएं 9837896896। ये दोबारा नंबर इसलिए बोला है कि एक कॉल और हम लेंगे लास्ट, उसके बाद करेंगे बाय बाय, गुड नाइट, तब तक के लिए सुनिए ये गाना बढ़िया वाला।

0: भी आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपको आपकी घटिया शायरी की कसम। आप ईमान से बोलिए, ये शारदा देवी का असली बेटा है?
1: अरे नहीं यार, ये उसका असली बेटा नहीं है।
0: वही मैं जब से बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग चाट गए सब लोग। मैं

एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। और दोस्तों, कुछ गाने जो होते हैं ना, सिर्फ गाने के लिए नहीं, मतलब सुनने के लिए नहीं, देखते समय में बड़ी हंसी छूट जाती है। ऐसी ये गाना था, धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हुआ है पक्का, जिसे फरमाइश की थी ललिता कश्यप जी ने। और इसमें जो कादर खान साहब का एक्ट था ना इस गाने के दौरान, वो खूब हंसाने वाला था और चुलबुलाने

0: वाला था। जरूर अगर आप लोग कभी देखेंगे तो आप भी इसे पूरी फॉर श्योर है कि आप लोग भी उसे एंजॉय करेंगे। हमारे पास अभी मैसेज आया है रामपुर से शबनम जी का, और उन्होंने हमें मैसेज किया है, जान से ज़्यादा चाहते हैं आपको, हर खुशी से ज़्यादा मांगते हैं आपको, अगर कोई कहे प्यार की हद होती है तो उस हद से भी ज़्यादा चाहते हैं आपको। क्या शायरी लिखी है आपने, इतना बढ़िया आपने, कहते हैं ना नगमा बोला है ये। तो पूरी उम्मीद है शबनम जी आप जहाँ भी हैं इस समय खूब आनंद ले रही होंगी मौसम का, और खूब मस्त रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। हमारे साथ एक कॉलर हमारे जुड़े हुए हैं, चलिए करते हैं उनसे कुछ बात। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: भाई साहब
0: क्या कर रहे हैं आप?
1: आपका प्रोग्राम सुनना है साहब, गाने सुनना है, आपकी बातें सुनना है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप, बढ़िया बढ़िया।
0: तो उस्मान जी, इस समय मौसम कैसा हो रहा है आपके ऊपर, मतलब आपकी छत के ऊपर?
1: गजब का हो रहा है ना, ठंडा मस्त वाला हो रहा है,
0: मस्त वाला हो रहा है।
1: मैं मोहम्मद उस्मान साकिब अल्लाह की जारत के पीछे नदी पे थे, मोहम्मद उस्मान और सागुप्ता।
0: सर ये आपका एड्रेस एड्रेस ऐसा याद हो गया कि कहीं कभी तो मैं कहीं आ ही ना जाऊं किसी दिन आपके यहाँ एड्रेस पे, इतना मेरे को याद हो गया। कोई मुझसे मेरा एड्रेस पूछे तो मैं ये एड्रेस ना बोल के आपका वाला एड्रेस बोल दूंगा।
1: आप आएंगे तो वो बाहर आएंगे।
0: कोई शायरी सुनाइए बढ़िया सी। साजन पिक्चर का भी गाना सुना देंगे, अभी इतनी बढ़िया शायरी भेजी थी शबनम जी ने, ऐसी कोई एक शायरी आप भी सुनाइए आज।
1: सुनाते हो सर?
0: हाँ जरूर बताइए।
1: ये बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू ना खफा है सर, चिंता एक कोई टूट गया है तेरे चुप हो जाने से।
0: क्या बात है साहब, क्या बात है, आपने बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल दिल से निकाली हुई बात कह दी, कौन टूट गया है जो बिल्कुल चुप हो जाने से। क्या बात है उस्मान जी,
1: याद कर रही है ये तरसी हुई निगाहें, देखे हुए किसी को जमाना हो, जमाना गुजर गया है।
0: आज आपने मौसम के साथ मौसम के हिसाब से ही सुना दिए शायरी अटक अटक के। मगर बहुत बढ़िया बोली है, बहुत बढ़िया आपने क्या कहते हैं शायरी बोली है और बहुत अच्छा लगा। तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: ये साजन का गाना सुनना चाहते हैं सर।
0: किसके लिए सुनना चाहते हैं आप ये गाना?
1: ये सब हम सबके लिए सुनना चाहते हैं, और सागुप्ता है और मोहम्मद उस्मान है।
0: चलिए साहब, सभी के लिए ये डेडिकेट है। और आपका मैं एक बात कहना चाहेंगे, आप गाने जो जब भी आप कहते हैं फरमाइश करते हैं, बहुत ही अच्छे गानों की फरमाइश करते हैं।
1: हम तो हमने हर रेडियो के श्रोता है हम।
0: हाँ सर, हम भी रेडियो के ही श्रोता हैं, आज हम रेडियो से ही बोल रहे हैं और हमें अच्छा लगा।
1: दिल्ली हुआ, विविध भारती हुआ, ऑल इंडिया हुआ।
0: धन्यवाद साहब, धन्यवाद। तो अभी सुनते हैं आपकी फरमाइश, फिर हम एक कॉल लेते हैं और खूब करेंगे दिल से दिल की बात। और आज अच्छा लगा उस्मान जी, आपने हमसे इतनी बात करी और दो दो शायरी सुनाई, बहुत ही बढ़िया लगा। तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ उस्मान जी, जो एड्रेस तो आप सब लोगों को भी याद हो गया होगा, मैं क्या बोलूँ इनका एड्रेस। और हमारे पास मैसेजेस आए हैं, बिजनौर से हमारे पास मैसेज आया है, सर जी मेरा कॉल आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। अरे सलमान अख्तर जी बिजनौर से, सलमान अख्तर जी हम कॉल सभी का रिसीव करने की कोशिश करते हैं, मगर जिसका जैसे पहले उठ जाता है, जैसे ही आ जाता है हम ज़रूर उठाएंगे, अभी नहीं तो बाद में उठेगा, मगर आप इससे बेफिक्र रहें, कॉल आपका ज़रूर उठेगा। चलिए तब तक एक लेते हैं छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक और इसके बाद एक कॉल और उठाएंगे, क्या पता आप ही का हो। 9837896896 पर

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हंसते रहो तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं, मुस्कुराते चेहरे दिलों में घर बन जाते हैं। जिंदगी का असली खजाना पैसा नहीं होता, खुशी बनाते वाले ही सबसे अमीर कहलाते हैं। तो खुशी जो है आप बांटने जाइए और खूब अमीर बनिए खुशियों के लिए। और बात करते हैं हमारे मैसेजेस जो आए हुए हैं। प्रिया जी का मैसेज आया है गजरौला से, क्या बात है, गजरौला से है आज हमारे पास मैसेज आया है। मैं और सुबह मिरर के सामने स्माइल करती हूँ, दिन पॉजिटिव शुरू होता है। अच्छा, मैं हर सुबह मिरर के सामने स्माइल करती हूँ, दिन पॉजिटिव शुरू होता है। तो क्या बात है प्रिया जी, आपने कहते ना पॉजिटिव बिगनिंग एंड पॉजिटिव एंडिंग। तो मिरर के सामने स्माइल करते हैं और जब खुद को इतना पॉजिटिव आप कर लेते हैं, एनर्जी अपनी इतनी पॉजिटिव कर लेते हैं, तो पूरा दिन सच में स्माइल करते हुए मस्ती से जाते हैं। हम पे मैसेज आया है इमरान का जयपुर से, हम पूरी फैमिली डिनर के बाद जोक शेयर करते हैं। क्या बात है इमरान जी, और कहते हैं ना मुस्कुराते हुए फैमिली टाइम यही कहलाता है कि जब आप अपना मुस्कुराते हुए और जोक्स भी अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हैं तो और क्या बात है। चलिए हम अपने लास्ट लिसनर को लाइन पे लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज क्या बात करेंगे वो। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संघ, कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका और कहां से बात कर रहे हैं?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: आदाब सर।
0: आदाब जी, आदाब। तो फातिमा जी, क्या करती हैं आप और इस समय इतनी जो मुस्कुराहट आप जो दे रही हैं उसका कोई राज है, क्या है ऐसी बात, क्या बात है?
1: आपके लिए तो सरप्राइज है सर।
0: सरप्राइज है अभी आपको एक शायरी, आप शायरी से शुरुआत करें, सरप्राइज तो हम बाद में देखते रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं फातिमा जी, क्यों नहीं बात करेंगे। क्या बात है फातिमा जी, आज हम एक सभी से, अपने सारे लिसनर से जो जो हमसे कॉल पे बात कर रहे हैं उनसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी किसी अनजान व्यक्ति को, किसी अनजान शख्स को स्माइल दी है या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको स्माइल दी है तो आपने क्या रिएक्ट किया है?
1: सर, दोनों ही हुए मेरे साथ।
0: तो दोनों में क्या हुआ है आपके साथ, जरूर बताएं हमें।
1: क्या है ना, मतलब ऐसा होता है ना, जिस इंसान को किसी अजनबी को हम स्माइल देते हैं वो हमारे घर तक पहुंच जाता है।
0: ओके।
1: और कभी कभी ऐसा भी होता है, कहीं हम जाते हैं, मतलब जैसे कि हम अपने दोस्त से मिलने जा रहे हो तो कोई अनजान इंसान मिल जाए हमको, तो कभी कभी उनकी बातों से ऐसा लगता है
0: दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं तो स्माइल जरूर देते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: बहुत ही बढ़िया। तो
1: हम हर किसी को स्माइल देते हैं।
0: आप हर किसी को स्माइल देते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम दिल के बहुत ही।
0: सही है सही है, आप ऐसी ही स्माइल बांटते रहें, मुस्कुराहट बांटते रहें, कम से कम सामने वाले के चेहरे पे कुछ तो मुस्कुराहट आती रहे इसी बहाने।
1: हम गम में क्यों ना रहें, लेकिन सर हम औरों को खुशी देते हैं।
0: क्या बात है, तो कोई एक शायरी सुना दीजिए अब, वो भी खुशी और मिल जाएगी सभी हमारे श्रोताओं को।
1: अगर तकलीफ में होती तो सजदों में दुआ करता, मगर तकलीफ में होती तो सजदों में दुआ करता, मेरे खातिर सनम

0: क्या बात है, क्या बात है, इतनी बढ़िया शायरी आपने सुनाई है। और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप? ये पहले तो ये बताइए, शायरी आपने डेडिकेट किसे करी है?
1: ये मतलब सर, ये लाइव को
0: लाइबा को आपने डेडिकेट करी है शायरी? सही,
1: क्योंकि वो मेरी दोस्त भी है,
0: तो
1: मेरी जानती
0: लाइबा
1: है।
0: जी, आज आपकी दोस्त आपके साथ कॉल पे है, तो आप अपने दोस्त के लिए भी कोई कुछ बोलेंगी, इसका जवाब देंगी आप नहीं देंगी?
1: बिल्कुल, आप दोगे सर, अपनी साइड से दोगे जवाब।
0: मैंने तो इतनी सारी शायरी सुना दी है आज, इतनी सारी हंसी की बातें हो गई हैं, तो मेरे तो सारे जवाब पहुंच गए। आप कोई जवाब देंगी नहीं देंगी
1: मैंने भी
0: अपनी
1: सर
0: सहेली को?
1: आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर आपको याद हो मैं आपको याद दिलाने आई हूँ। 40
0: क्या प्रॉमिस किया था?
1: डेज का आपने मुझे चैलेंज किया था, आई बोला था कि जब 40 डेज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको आपकी कही हुई बात को ऑन एयर बोलूंगा।
0: 40 डेज का चैलेंज? मैं पता नहीं, मेरे को वो याद नहीं आ रहा, 40 डेज पहले कोई ऐसा चैलेंज हुआ था या नहीं हुआ था।
1: हाँ सर बिल्कुल, आपने बताया था आप सिंगिंग करेंगे, आई थिंक आप भूल गए।
0: तो अभी वो 40 डेज पूरे नहीं हुए हैं लाइवा जी, कम से कम 30 डेज ही हुए हैं अभी।
1: आप
0: अभी टेन
1: कंटिन्यूज कर रहे हैं
0: टेन डेज बाद वो आपका चैलेंज पूरा होगा फिर।
1: ना।
0: ठीक, 15 अगस्त को
1: वैसे
0: आपका,
1: आज आपने
0: पंद्रह
1: भी मेरा
0: अगस्त
1: ही
0: को
1: क्वेश्चन
0: पंद्रह
1: है।
0: पंद्रह अगस्त को आपका वो चैलेंज पूरा होगा, और हम 15 अगस्त को एक बढ़िया सा गाना गाएंगे।
1: पक्की बात है, मैं 15 अगस्त को कॉल करूंगी सर।
0: पक्का पक्का लाइवा जी। अभी आप बताइए, अभी आप
1: ऑन
0: कौन सा
1: एयर
0: गाना
1: अभी
0: सुनना चाहेंगी?
1: सर जो सर मेरे फ्रेंड ने बताया है, त्रास मूवी का जी।
0: अच्छा, वो तस्वुर का आलम।
1: आपकी
0: जरूर जरूर जरूर,
1: याद है
0: धन्यवाद धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने कॉल करी और हंसी की बातें करी, और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खूब सारी मुस्कुराहट बांटते भी रहिए और FM पे कॉल करते रहिए।
1: बिल्कुल सर, ये तो हमारा काम है।
0: धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए आज के लिए।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू लाइवा जी एंड फातिमा जी। तो दोस्तों, हमारे साथ दोनों दोस्त जुड़े थे, उन्होंने खूब सारी बातें करी, खूब सारी मुस्कुराहट बखेरी और अपनी कहानी की फरमाइश भी करी। तो चलिए, इससे ज़्यादा खूबसूरत एंडिंग और क्या होगी, जब दोस्त मुस्कुराते हुए बात करते हैं और अपने दिल की बात भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ है, और याद रखिए, मुस्कुराना मुफ्त है लेकिन इसका असर अनमोल है। अगर आप खुश हैं तो किसी और को भी खुश कीजिए। मैं हूं आपका अखिल, आपसे इजाजत लेता हूं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे दिल से दिल तक अखिल संग। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल रखिए। आपके इतने लवली लवली मैसेजेस आए हैं, मैंने जिन जिनको शेयर किया है सभी का धन्यवाद। जिन लोगों का मैं मैसेजेस शेयर नहीं कर पाया हूँ, उन लोगों को भी बहुत बहुत प्यार और खूब सारी मुस्कुराहट की वजह। हम पे एक शायरी जो मैं अभी शेयर करना चाहूँगा, मैं उस बेवफा को कभी माफ़ नहीं करूँगा, रखूँगा नंबर उसका फ़ोन में लेकिन कभी कॉल नहीं करूँगा। बहुत कस्में खाई थी उसने झूठी मेरी, साथ निभाने की मैं अपनी बातों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुलजार दूंगा, अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा। धर्मेंद्र कश्यप जी हैं लाइन पर मुरादाबाद से। क्या शायरी लिखी है आपने, थोड़ा सा प्यार और गुस्सा आपका झलक रहा है, मगर यही तो बात है साहब, दिल की बात ऐसी ही तो निकल के आती है। और एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि सर, नवीन नगर में बारिश हो रही है बहुत बढ़िया वाली, तो संभल के जाएंगे साहब, रेनकोट नहीं लेके आए तो कोशिश करेंगे, थोड़ा सा रुक के जाएंगे मगर ज़्यादा भीगेंगे नहीं, क्योंकि कल फिर आना है आप लोगों के बीच, खूब सारा मस्ती करने, धमाल करने और मुस्कुराहट बखेरने। चलिए साहब, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और सुनते हैं बढ़िया सा गाना जिनकी फरमाइश है लीविया और फातिमा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नशे से जड़ गई कुड़ी, नशे से जड़ गई।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
0: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
1: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
0: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
1: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण, किसान की उन्नति।

आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।